0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
2: जी हाँ,
3: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
5: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
4: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यहीं चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
5: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज DMR हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें DMR हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं अमिताभ के साथ शो है मेरा खास मुलाकात। आज खास मुलाकात में एक विशेष बातचीत है, यानी कि योगा को लेकर। योगा हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बता दूं कि आपको भारत और भारतीय संस्कृति में योग का प्रभाव और महत्व तो जग जाहिर है। यूं तो सदियों से अपने देश में आम और खास सभी लोग योग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा के रूप में विकसित और पल्लवित होने के बाद आज योग जिंदगी जीने में एक नई कला के रूप में देखा और समझा जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय योग को योगा डे के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। तो आइए आज हम योगा डे पर बात करेंगे,
1: जिससे लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि हमारे जीवन में योगा का कितना महत्व है और हमारी लाइफ स्टाइल को जीने में हमारा योगा क्या हेल्प करता है।
0: मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि योगा क्या है और क्यों करना चाहिए।
1: सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने मेरे से ये पहले ही। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि योगा अब से नहीं, प्राचीन कालों से चलता हुआ आ रहा है, और हमारे जितने भी वैदिक काल में आप देखेंगे तो योगा का वर्णन किया गया है, जिसमें हमें योगा के बारे में बताया गया है। योगा कर्मेशु कौशलम, मतलब कि कर्मों की कुशलता ही क्या है, हमारा योग है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं वही हमारा क्या है, वो एक योगा है। हमारे जितने भी ऋषि हैं, वेद पुराण हैं, उनमें सभी में हमारे योगा का वर्णन बताया गया है। और सबसे पहले हमारे जो योगा का वर्णन किया गया था वो भगवान शिव ने किया था, जो कि माँ पार्वती को बताया गया था।
0: मैम, मेरा दूसरा सवाल है कि योगा करने का कोई निर्धारित समय है या फिर किसी भी टाइम कर सकते हैं?
1: देखिए, योगा करने का एक निर्धारित समय होता है। अगर हम सुबह प्रातः काल उठकर योगा करते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए काफी लाभदायक होता है, क्योंकि हम और आप अच्छे से जानते हैं कि सुबह के टाइम में हमारा जो वातावरण होता है वो काफी शुद्ध होता है। इसलिए हमें योगा जो परफॉर्म करना चाहिए वो हमें सुबह के वातावरण में ही अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में काफी सारे लाभ मिलते हैं, जैसे हमारे स्वास्थ्य को लेकर, हमारी बीमारियों को लेकर और हमारे लाइफ स्टाइल को लेकर। जैसे आप और हम जानते हैं कि आजकल का लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है। इस बिजी शेड्यूल में हमारे लिए योगा बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, उनके लिए कोई ऐसा योगासन बताएं जो शाम को अपनी जिंदगी में शामिल कर सके।
1: देखिए, वैसे तो योगा जो आसन्स होते हैं, हम एज ए ऑफिस वर्क के लिए भी कुछ ऐसे आसन्स होते हैं जो हम सिटिंग पोज में ही बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप बहुत बिजी जीवन जीते हैं, तो और मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो कंप्यूटर वर्क पे करते हैं, तो कंप्यूटर वर्क से क्या होता है, उनकी आंखों पे भी स्ट्रेस पड़ता है और उनके माइंड पे भी स्ट्रेस पड़ता है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जिनको हम अपनी चेयर पे बैठे बैठे भी परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर वो और अच्छा अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, अगर उन्हें सुबह के टाइम वक्त नहीं मिलता तो वो शाम को अपना योगा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन योगा परफॉर्म करने के लिए एक बहुत बड़ा रूल होता है कि हमें खाने से 2 घंटे पहले हमें परफॉर्म करना चाहिए। जैसे अगर हम खाना खाने वाले हैं आधे घंटे बाद और उससे पहले हम योगा करते हैं तो वो हमारी लाइफ को हेल्दी की जगह अनहेल्दी बना दे। तो इसलिए हमें, अगर योगा परफॉर्म करने वाले हैं तो उससे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 2 घंटे पहले, खाना खाने से 2 घंटे पहले तक हमें योगा अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए। चाहे आप अपनी लाइफ में कितना भी बिजी हो, लेकिन कम से कम अपनी लाइफ में 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम निकाल के हम दिन में योगा परफॉर्म कर सकते हैं।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार।

0: तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें ग्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
5: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम सोच बदलो में। जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोताओं, आज सोच बदलो प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाज के उन छोटी छोटी बातों को जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं अकेला आपका साथ नहीं दे रहा हूँ, मेरा साथ निभाने के लिए कुमकुम मेरी प्यारी सी दोस्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। हेलो कुमकुम, आप कैसे हो?
6: हेलो आनंद, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छे हैं।
5: बिल्कुल, हम जब अपने श्रोताओं से बात करने आते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी ज्यादा टेंशन चल रही हो, लेकिन यहाँ स्टेशन में आके सब भूल जाते हैं और सब मधुर मधुर हो जाता है। क्यों, सही कहा ना?
6: बिल्कुल, मैं जिस टेंशन के साथ आई थी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मुझे दिक्कत क्या थी।
5: यार यही तो रेडियो की एक पावर होती है कि आप जो मर्जी मतलब जो है सोच लो, लेकिन जैसे माइक ऑन, बटन ऑन, आपकी टेंशन छू मंतर, मतलब ऐसा लगता है कि एक नया जन्म ले लिया है हमने थोड़े टाइम के लिए, करेक्ट?
6: या बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम नहीं है, कुछ नए जनरेट हो गया है।
5: एब्सोल्युटली सही कहा। सो चलिए श्रोताओं, आज जो है इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाएंगे और आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में, सोच बदलो प्रोग्राम में, मोबाइल की दुनिया या रिश्तों की दूरी।

0: दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से वेलकम बैक करते हैं आपका। मैं आनंद और मेरे साथ है कुमकुम। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। सोच तो हमारी बदलेगी दोस्तों, जब हम प्रयास करेंगे छोटी छोटी चीजों को बदलने का तो सोच तो बदल ही जाएगी। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। दोस्तों, आज हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन क्या दिलों में दूरी बढ़ रही है? घर में सब साथ बैठते हैं लेकिन बातें कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। तो आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। मैं यानी आनंद और मेरे साथ कौन है जी?
1: कुमकुम, आप सभी की प्यारी दोस्त
0: जी। तो कुमकुम बताओ जरा, अभी जैसे मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि आजकल जो है ना, हर घर में हर हाथ में मोबाइल है और साथ में बैठे हैं फिर भी दिलों में दूरियां हैं, उसका रीजन मोबाइल ही है क्या?
1: हाँ जी, राइट। हमारे बीच बातचीत कम हो चुकी है। सास बैठी है, ससुर बैठे हैं, या मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे से बातें करने की जगह अपने फोन में घुसे रहते हैं, जिसे लोग देखते हैं कि हाँ, एक साथ होने के बाद भी, एक कमरे में होने के बाद भी आपस में एक फोन की वजह से कितनी दूरियां हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, सही कहा कुमकुम जी ने, और ये मुझे लगता है कि हर घर की कहानी हो गया है मोबाइल। मोबाइल जब से आया है ना, बहुत सारे फायदे तो हुए हैं मोबाइल आने के, बट कहीं ना कहीं जो रिश्तों में गर्मियां थी, जो अपनेपन का एक एहसास था, वो भी कम हुआ है। और आज इसी प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे इस मोबाइल से और रिश्तों में जो एक दूरियां बनी है मोबाइल के आने की वजह से, क्या सच में ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है? क्या सही में मोबाइल आने से हमारे आपस के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहे हैं? इसी पर मैं और कुमकुम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओ, आप सुनते हैं जिसे आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक परिवार था, मम्मी खाना बना रही थी, पापा ऑफिस के काम में मोबाइल पर व्यस्त थे, बेटा गेम खेल रहा था और बेटी रील देख रही थी। दादी ने कहा, अरे कोई 5 मिनट भी मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से कुछ देर बाद घर की बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी और तब सब एक दूसरे से बात करने लगे। हंसी मजाक हुआ, पुरानी बातें हुई और दादी मुस्कुराकर बोली, देखो असली नेटवर्क तो दिलों का होता है। जी हाँ श्रोताओं, तो ये कहानी नहीं है, दरअसल ये हमारे और आपके जीवन की एक सच्ची घटना है। और आज सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए मैं और कुमकुम जी आपसे इसी विषय पर बात कर रहे हैं। लगातार ये मोबाइल आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं मेरे और आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है हमारे रिश्तों पर। साथियों, आप क्या सोचते हैं इन बातों से, आप जरूर हमें बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। हमारा इंस्टा हैंडल आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से, आप मुझे ढूंढ सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल आईडी आप फॉलो करें FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। श्रोताओं, आगे और भी बातचीत हम जारी रखेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी कि एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद मैं और कुमकुम पुनः आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
0: नमस्कार दोस्तों, एक बार आपके साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल और रिश्तों की दूरियों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल और के आने से चीजें, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अच्छी हुई हैं। नो डाउट टेक्नोलॉजी हमारी यूज के लिए बनी है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज वेरी अमेजिंग। बट कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्तों में गर्माहट थी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कम होती जा रही है और उसकी वजह क्या मोबाइल है? मुझे तो ऐसा लगता है हाँ, अगर मोबाइल है तो फिर हमें अपनी सोच बिल्कुल बदलना चाहिए। वैसे कुमकुम आपका क्या मानना है, क्या सच में मोबाइल हो सकता है रिश्तों की दूरियों की वजह?
8: हाँ जी जरूर हो सकता है, क्योंकि जब हम एक साथ बैठे होते हैं और उसके बाद भी आपस में बातें ना करके, आपस में टाइम ना दे के हम मोबाइल चलाएं, तो वो हमारी रिश्तों में दूरी ही लाता है। आनंद आप खुद ही सोचिए जरा, क्या आपने भी कभी परिवार के साथ बैठकर मोबाइल का उपयोग किया है, मोबाइल को समय दिया है?
0: अच्छा ओके ओके, मतलब कुमकुम मुझसे ये पूछना चाह रही है कि क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठते हुए मोबाइल का इस्तेमाल किया है? करेक्ट। देखिए मोबाइल का इस्तेमाल तो ऑफ कोर्स करते हैं यार, क्योंकि आजकल ना 95% जो काम हो गए हैं ना, सब मोबाइल पे हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सारी चीजें डिजिटली प्लान हो गई हैं, सो ऑलमोस्ट हर एक चीज, हर बंदा मोबाइल से ही सरवाइव कर रहा है, नो डाउट। बट सी, अगर हम परिवार के साथ, हम लंच पे हैं, डिनर पे हैं या ब्रेकफास्ट पे हैं, फिर हम किसी और मीटिंग के लिए बैठे हैं अपने परिवार के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परिवार के साथ हैं तो फिर हमें परिवार को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने का जो टाइम है ना, वो एक अलग सेट कर सकते हैं हम। बस यही सोच बदलनी है श्रोताओं हमें, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसका एक पैरामीटर सेट करो कि आपने कब मोबाइल देखना है। और मैं तो कहता हूं, अगर आप देख भी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आपके परिवार के साथ बैठना है तो अपने परिवार के साथ बैठ के अच्छी अच्छी चीजों पे आप बात कर सकते हो। बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और आजकल मोबाइल के आने से एक चीज तो है यार, जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो अपने लोग हैं ना, मतलब एक ही फैमिली में 10 लोग हैं, अपने अपने रूम में बैठे हैं, मम्मी को अगर आवाज लगानी है तो वो अब व्हाट्सएप करके बोलती हैं, बेटा नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, बेटा लंच रेडी है, नीचे आ जाओ। एक टाइम था जब हमारी माँ किचन से आवाजें मारा करती थी और हम भागे चले आते थे। मान लीजिए श्रोताओं, या कुमकुम आप ही मान लो, अगर एक दिन के लिए फोन बंद हो जाए तो आप अपने दिन को कैसे सेलिब्रेट करोगे? क्या करना चाहोगी अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, पूरा फोन बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, बिल्कुल हम बिल्कुल फ्लैशबैक में चले जाएं, एकदम पुराने जमाने।

0: की छाओं में बैठना चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, तो मैं उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहूंगी।
1: बहुत बढ़िया। और अगर मुझे ये मौका मिलेगा सच में श्रोताओं, तो मैं तो अपनी नानी के घर भाग जाऊंगा अपना बैग पैक करके। मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को नानी के घर पे जाना छुट्टियों में बड़ा अच्छा लगता था। आजकल तो खैर बड़ा जमाना डिफरेंट हो गया, नानी दादी के घर तो कोई जाना ही नहीं चाहता है, सबको दिल्ली मुंबई और सारे मेट्रो सिटीज में भागना है। आई नो दैट अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिलती है, लेकिन श्रोताओं रुकिए जरा, फिर से थमिए, सोच बदलने की जरूरत है। सब कुछ वैसा के वैसा ही है, बस जरूरत है एक चीज की, वो है मोबाइल से डिस्टेंस की। और सबसे जरूरी चीज पता है क्या है दोस्तों, भावना जी, आजकल जो मैं देखता हूँ लोगों में, स्पेशली मम्मी पापा में ये चीज नोटिस करता हूँ मैं, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, आई एम श्योर दोस्तों आप भी ये चीज नोटिस करते होंगे, नहीं किया है तो जरूर करिएगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी पापा को बस में ट्रेन में डिस्टर्ब करते हैं, तो ना मॉम डैड उन्हें चुप कराने के लिए सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो बच्चे मोबाइल पे वीडियो गेम देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं क्या देख रहे हैं, फैमिली को पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर उन्हें करने दो। मतलब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि स्टिल हम फ्री हो जाएं और बच्चे जो देख रहे हैं देखने दो। तो भाई मैं तो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सामने खुद मम्मी पापा फोन चला रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि इवन कई बारी हम किसी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां मम्मी का मेकअप खराब ना हो जाए, बच्चा उसे परेशान ना कर दे, मम्मी खुद फोन का इस्तेमाल करने लगती है या बच्चों को पकड़ा देती है फोन। तो गाइज फोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, ये फोन ही है जो आपकी और मेरी जिंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों का भी अंत कर रहा है ये मोबाइल। तो भैया मोबाइल फोन को चलाना है जरूरी, लेकिन डिस्टेंस के साथ मेंटेन करना भी जरूरी है। फिलहाल श्रोताओं बातचीत तो चलती रहेगी, अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, हम पुनः लौटेंगे इस प्रोग्राम में, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सोच बदलो प्रोग्राम आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। कुमकुम और आनंद के साथ आप बने हुए इस प्रोग्राम में, और बाकी अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें साझा कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से ऑफिशियल आईडी मिलती है, प्लीज फॉलो कीजिए, वहां पर आके आप बताइए आपको हमारे स्टेशन्स के प्रोग्राम कैसे लगते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। चलिए रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, उसके बाद फिर पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को सुन के वाकई में ही आनंद आ गया और मैं तो फ्लैश बैक में चला गया। आपको पता है कुमकुम, एक समय होता था जब लोग कहते थे अरे भाई चुप कर यार, कितना बोलेगा, और आज की डेट में लोग बोलते हैं अरे भाई कुछ तो बोल यार, चुप क्यों है, क्यों मोबाइल की दुनिया में घुसा रहता है हर टाइम, थोड़ी तो बात कर लिया कर, है ना। एक टाइम होता था जब मम्मी बोलती थी कितनी बकवास करता है, कभी तो शांति से चुप बैठ जाया कर, और आज की डेट वो है जब मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ी बातचीत तो कर लेकर, क्या 24 घंटे फोन में ही लगा रहता है। कुछ कहना चाह रही थी हमारी दोस्त कुमकुम आपसे, और साथियों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो कुमकुम आप कुछ कह रही थी, कुछ बताने की बात कर रही थी।
1: मैं कुछ अपने श्रोताओं को प्रेरणादायक संदेश देना चाहूंगी।
0: प्रेरणादायक संदेश तो मैं भी लेना चाहूंगा।
1: या ऑफकोर्स, जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल हमारे लिए आजकल कितना जरूरी है, हर वर्क में यूज होता है, तो मोबाइल हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए, बच्चों से खुलकर करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा घर में टाइम, एक बार तो टाइम बनाना चाहिए पूरे दिन में जो लिखा हो कि हाँ नो टाइम मोबाइल। याद रखिए रील्स कुछ सेकंड की खुशियां देती हैं, लेकिन आपके अपने लोग पूरी जिंदगी का सहारा बनते हैं।
0: तो क्या क्या बात है। हाँ तो आगे बोलो,
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आगे।
0: देखो कुमकुम, आपने बहुत अच्छी, बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल वाली बातें रख दी हैं, थैंक यू सो मच। और सच में ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे लगता है कि रील्स सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी तो देती है, लेकिन एक्चुअली खुशी जो हमें मिलती है वो अपनी फैमिली के साथ बात करके, हमें अपने रिलेटिव के साथ बात करके मिलती है। दोस्तों वो कहते हैं ना, आजकल नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन कोई अगर अपना बुलाए तो बस सिंपल सी आवाज निकलती है अभी बिजी हूं बाद में आऊंगा, ये वाली बात तो 100% आपके साथ भी होती होगी। मोबाइल ने भाई सबका टाइम चुरा लिया है कुमकुम, पापा फोन पर, मम्मी रील्स पर, बच्चे गेम्स में, एक ही घर में रहते हुए भी सब अलग अलग दुनिया में व्यस्त है ना। कहीं ना कहीं ये जो व्यस्तता है बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोताओं सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें मोबाइल का भी इस्तेमाल करना है और हमें अपने परिवार को भी पूरा वैल्यूएबल टाइम देना है। उसके लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। सोच बदलने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जब आप अपने घर पर हो तो अपने फोन को थोड़ा साइड में रखें। अगर आपको पता है कि आप बेवजह का समय अपने फोन पर दे रहे हैं तो वही टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने परिवार से बातचीत करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में ना जो रिश्तों में गर्माहट है वो बहुत जरूरी है। और रिश्ते कहीं ना कहीं आजकल इसलिए भी खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बातें तो फोन पे ही हो जाती हैं, थोड़ी सी देर में बात हुई उसके बाद तुरंत डिलीट हो गई, अभी पता चला अभी नाराजगी थी अभी ब्लॉक हो गई चीजें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को ना एकदम से इन्होंने खेल बना के रख दिया है। स्पेशली आजकल तो ये व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सबसे मनहूस मेरे को लगता है स्नैपचैट। भाई सच बता रहा हूँ, इतने तगड़े तगड़े फिल्टर आते हैं ना, समझ में नहीं आता लौंडा लौंडिया कब बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सब चीजें जो है ना मत करो भाई, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज यार एक समय सीमा बना लो हर चीज की। सबसे जरूरी चीज है अपने परिवार को स्पेशल क्वालिटी टाइम देना, क्यों कुमकुम, सही कहा मैंने। हाँ तो बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों अब हम दोनों आपसे लेंगे जाने की इजाजत, और इतना ही कहना चाहेंगे जाते जाते, सोच बदलोगे तो इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो बस आप ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, अपना शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये वही शहर है जहाँ की मूंग की दाल बड़ी फेमस है, ये वही शहर है जहाँ का पीतल बहुत पॉपुलर है, और ये वही मुरादाबाद है जहाँ का अपना सामुदायिक रेडियो आज आपके साथ है। तो जुड़े रहिए दिल से दिल तक, और आज रात का खाना अगर परिवार के साथ खा रहे हो तो ध्यान रखिए मोबाइल को थोड़ा सा जो है स्पेस दे दीजिएगा। बाकी मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो अभी चलें फिर कुमकुम।
1: जी हाँ चलते हैं।
0: बिल्कुल, तो कुमकुम भी अपना थैला उठाकर जाने को तैयार है और मैं भी अपना बैग लेकर बाहर निकलने को तैयार हूँ। तो सोच बदलो क्योंकि अपने लोग ऑनलाइन नहीं आसपास होने चाहिए। याद रखिए कोई भी चीज अगर होती है नेगेटिव वाली तो ऑनलाइन की दुनिया के लोग नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके करीबी लोग आएंगे। तो इसलिए अपने करीबी लोगों को स्पेशल समय दीजिए। अभी के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और बजाते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए सफर पर।

0: आजा।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

0: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
5: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
4: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
5: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
4: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: नमस्कार, मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज मुरादाबाद, और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अखिल, और मेरे साथ है प्राची। प्राची, कैसे हो आप?
2: मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मैं हमारे लिसनर्स भी बढ़िया होंगे।
6: आज ये शो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
2: हाँ अखिल, जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं पर सिर्फ सेल्फी के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं।
6: बिल्कुल सही बात, और कुछ लोग करियर चूज करते हैं सिर्फ चाचा जी के कहने पर अपने।
2: तो फिर आज का हमारा टॉपिक है करियर कंफ्यूजन से करियर क्लैरिटी तक।
6: मुरादाबाद के दोस्तों, याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं।
2: अखिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, तो आप ये कहना चाहेंगे?
6: मेरे हिसाब से सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ 3 चीजों को लिखो अपने पास, मुझे क्या करना पसंद है, दूसरा मैं किस चीज में अच्छा हूँ, और तीसरा मार्केट में किस चीज की डिमांड है।
2: और अखिल, मुझे लगता है कि एक चीज और ऐड हो गई है आजकल की लाइफ में, करियर प्रेशर से ज्यादा डेंजरस आजकल कंपैरिजन प्रेशर बन गया है। लोगों बच्चों में कंपैरिजन, और कि मम्मी पापा की कंपैरिजन रहती है बच्चों को, वो कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों से, तो इससे बच्चों के लिए जो पूरा एटमॉस्फेयर बन गया है बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
6: बिल्कुल सही बात कही। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, शर्मा जी का भाई हमारे पड़ोस में, वो IIT में है।
2: अच्छा।
6: पर हाँ, पर जो एक और पड़ोसी है मिश्रा जी, उनका जो बेटा है उसका टैलेंट थोड़ा सा यूट्यूब पे, मतलब वो इस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, और कई चीजों पे जैसे आजकल फूड ब्लॉगिंग है, कभी बिजनेस को लेके किसी कोई मोटिवेशनल ब्लॉगिंग है, तो वो इज लाइक अ गुड स्पीकर। वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे आके अपने आप को दिखाऊं, मगर क्या है, बगल में शर्मा जी का बेटा जो है वो IIT में लगा हुआ है, तो ये बात रहती है सुबह सुबह, यही चर्चा रहती है कि भाई मेरा बेटा तो IIT के उसमें है और तुम्हारा बेटा देखो ये फालतू की चीजें कर रहा है, तो यहाँ पे लोग कंपैरिजंस में आ जाते हैं।
2: हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पेरेंट्स का तो ये फेवरेट डायलॉग बन चुका है कि पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो, फिर अपना पैशन फॉलो कर लेना, जैसे पैशन कोई वीकेंड पिकनिक हो।
6: बिल्कुल सही कह रही है प्राची जी। चलिए, हम तो इस बात पे बात करते ही रहेंगे, अभी सुनते हैं बढ़िया सा गाना।

0: मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉल करता है, नाम है राहुल।
1: मैं बीकॉम कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा फ्यूचर क्या है।
0: राहुल पहले ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है।
1: मुझे पसंद है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया भी पसंद है। अच्छा राहुल, तो तुम डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करो।
0: आजकल ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक लिमिटेड नहीं रह गया है।
1: डेटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, रेडियो जॉकी।
0: पर हाँ, अगर रेडियो जॉकी करना है तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा।
1: सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने अखिल। वो लिसनर्स, आप हमें बताइए कि आप किस करियर फील्ड को चूज करना चाहेंगे। आप हमसे बातें कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर 9837896896। तो सुनते रहिए हम अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़। हमारे इस कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है।
1: तो आज अखिल आप क्या लेकर आए हमारे लिसनर्स के लिए?
0: मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ टैलेंट सिर्फ ब्रास तक लिमिटेड नहीं है।
1: वैसे ये तो सही कहा, क्योंकि हमारे मुरादाबाद के लोग बहुत सारी फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं।
0: यहाँ के यूथ ना स्टार्टअप तो शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी, फूड आउटलेट्स भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चालू कर रहे हैं।
1: अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो 2026 के लिए कुछ आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ। होम बेकरी, डिजिटल सर्विस एजेंसी, ट्यूशन सेंटर, फूड कार्ट विद हाइजीन कॉन्सेप्ट।
0: लेकिन प्लीज हर गली में ना मोमोज मत खोल देना यार। जहाँ भी जाओ ना, जिस गली में जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ बुद्धि विहार में, तो कहीं ना, मतलब वो जो अपना परशुराम चौक है और उससे थोड़ा आगे चलते हैं जब अपना हनुमान उसकी तरफ, जो हनुमान जी का पार्क है अपना, तो वहाँ पे भी भाई मोड़ पे भी वहाँ पे ही मोमोज वाला मिल जाता है। थोड़ा और आगे चला तो वहाँ पे भी एक शॉप पे मोमोज वाला है। तो प्लीज प्लीज प्लीज हर गली में हर जगह ना मोमोज नहीं होना चाहिए।
1: बस प्लीज आप ज्यादा मोमोज की बात मत करिए, बस मेरा बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का।
0: तभी ये इसलिए कह रहा था मैं, हर जगह मोमोज नहीं होने चाहिए। कम्युनिटी को ना सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोकल से खरीदो और लोकल को बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है आजकल के समय।
1: तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि लोकल से मोमोज खरीदो और लोकल को बहुत बढ़ाओ। फिलहाल दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ। बस दोस्तों आपको ऐसे आइडियाज मिलते रहेंगे एफएम मुरादाबाद पर, और आप भी हमें भेज सकते हैं हमारी मैजिकल नंबर 9837896896 पर। और रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज। आपके अपने ही कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं और प्राची लेकर आए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी।
1: तो चलिए शुरू करिए आप।
0: एक छोटे से गांव का लड़का 3 बार एग्जाम में फेल हुआ।
1: लोग हंसते थे, कहते थे तुमसे नहीं होगा,
0: लेकिन उसने हर फेलियर का फीडबैक बनाया और आज वो अपना बिजनेस चला रहा है।
1: दोस्तों, फेलियर का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।
0: लाइफ में गिरना अलाउड है, मगर रुकना अलाउड नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल आपने। तो दोस्तों, लाइफ में आप रुकिए मत, चलते जाइए, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे।
0: मगर वहाँ रुक जाना जहाँ पे आगे गाड़ी रुकी हुई हो, क्योंकि MDA में ना इस समय अच्छा खासा जाम मिलता है PAC से लेके किले तक। तो बहुत आराम से गाड़ी चलाना भाई साहब, सीट बेल्ट जरूर पहनना।
1: पर दोस्तों टेंशन मत लेना, ये जाम शाम छट ही जाएगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हो प्राची। प्राची को तो जैसी शाम होती है ना, या प्राची का जहाँ भी कोई गोलगप्पे वाला स्टॉल दिख जाता है, प्राची की तो गाड़ी अपना भी वहाँ रुक जाती है।
1: फिलहाल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। और अगर आपके पास भी है कोई मोटिवेशनल कहानी, आपकी दोस्तों की, आपकी अपनी जिंदगी की कहानी, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर जो है 9837896896।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: वेरी नाइस.
1: क्या सुना क्या मामा?
2: क्या
1: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस.
2: अरे सुनाई कहाँ दिया ये नालायक विवेक.
1: अरे
2: बैटरी लाना ही भूल गया.
1: क्या यार विवेक?
0: अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो? आपको लाने को बोला था ना बैटरी.
1: कोई काम सब तो मैं ही करूंगा ना. मामा तू लाओ इधर. चलो मामा जल्दी लगाओ.

0: तो दोस्तों ये जो गाना है ये सिर्फ आपकी मम्मी के लिए डेडिकेटेड है। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: तो श्रोताओं हम एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुरादाबाद याद रखो, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते।
0: तो दोस्तों आज ही अपना गोल लिखिए और अब कल से एक्शन करना शुरू कर दीजिए।
1: अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो, कंफ्यूजन को क्लियर करो और कुछ भी मन की बात हो ना हमें जरूर मैसेज करो।
0: तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर के साथ 9837896896। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत। जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पॉल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पॉल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: आवश्यक सूचना, 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के

प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो, गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक है सुप्रभात, संडे की सुबह। कितने लोग हैं जो लाइव सुन रहे हैं हमें, जल्दी जल्दी मैसेज करेंगे आप। हेलो हेलो, नमस्ते जी। संडे की सुबह है, 10:25 से ज्यादा हो गया है इस वक्त, मैं स्टूडियो की घड़ी में देख पा रहा हूँ। 10:28 हो गए हैं जी। 17 मई है, बहुत ही खूबसूरत सा कह सकते हैं कि ये एक तो देखिये मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और ये वाइब भी बहुत अच्छी है, दिन भी बहुत बढ़िया है। रविवार है, संडे है, छुट्टी का दिन है, सब लोग अच्छे अच्छे से अपने घर पे कोई अच्छा ब्रेकफास्ट बना रहा है, कोई बढ़िया लेट आराम से सो उठ रहे कि भैया चलो आज संडे आराम से उठते हैं। हेलो, फिलहाल आप मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम कबूल कीजिए। मेरा नाम आरजे आनंद है और संडे को अक्सर आपको खुशी मिलती है, लेकिन आज वो छुट्टी पर है तो मैंने सोचा मैं पहुंच जाता हूं आपके एंटरटेनमेंट को, डबल एंटरटेनिंग देने के लिए, डबल डोज एंटरटेनमेंट का देने के लिए। तो मैं आपके स्टूडियो में हाजिर हो गया हूं, आपके रेडियो सेट पे हाजिर हो गया हूं। आप मेरे साथ ढेर सारी गुफ्तगू कर सकते हैं, बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं और हमारे साथ जो है अपना ये जो एक सिलसिला है बातों का, जो रावता है, इसको मेंटेन कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आनंद के साथ जुड़ चुके हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। तो अब हम क्या करेंगे, आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। फटाफट मुझे मैसेज करिएगा 9837896896। आप कुछ सुनना चाहते हैं, आप कुछ भी कहना चाहते हैं, बिल्कुल आप मुझे कह सकते हैं 9837896896 पर। ये मेरे स्टूडियो का नंबर है जो मैंने आपको बताया है, इस नंबर पे आप फटाक से मुझे मैसेज करेंगे और एक बढ़िया सा गाना हम सुनेंगे अपनी पसंद का, आप सभी को भी सुनवाएंगे, आपको बहुत बढ़िया लगेगा ये गाना। और इस गाने के बाद जब लौट कर आएंगे तो आपके संदेश होंगे, आप होंगे और हम होंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: जब आप बुलाएंगे हम तभी मिलने चले आएंगे बॉस।
1: बारिश होगी
0: शानदार की आवाज़
2: मिलेंगे जब
1: बारिश होगी।
0: भैया बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन फिलहाल तकड़ी धूप हो रही है बाहर। सूरज चाचू जो है निकल चुके हैं और अभी का जो टेम्परेचर वो 32 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है बॉस। नहीं भाई अब 33 हो गया है, मतलब हो क्या रहा है यार भाई, मुझे मारो। यस करंट टेम्परेचर जो है अगर मैं बात करूं वेदर की तो भैया 33 डिग्री सेल्सियस दिखा रहे हैं अभी, एंड ये जो है पाजी आगे और बढ़ सकता है, एग्जैक्टली 39 तक पहुंच सकता है भाई। अभी जो मिनिमम है वो 33 डिग्री है और जो मैक्सिमम है वो 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। बात करें अगर ह्यूमिडिटी की तो भैया 35% दिखा रहा है, यानी कि गर्मी जो है थोड़ी चिपचिपी रहने वाली है आज। तो ऐसे में जो है आपने अपना ख्याल रखना है और अपने परिवार का भी खास ख्याल रखना है मेरे दोस्त।

जिंदगी में सबसे ज्यादा इंसान वही धोखा देता है जिस पे आप यकीन करते हो पूरे दिल से। मैं बता रहा हूँ सच्चाई के साथ, नहीं मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, बस अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। ऐसा होता है यार, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। मतलब एक तो आप किसी को अपना पैसा दे दो भाई, आप जब शुरू में पैसा दोगे तो सामने वाले को भी मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है यार दे रहा हूँ, उसका हेल्प कर रहा हूँ, उसको भी अच्छा लगेगा कि मेरा हेल्प कर रहा है। लेकिन बाद में जब आप उससे वही पैसा मांगोगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, जो रिश्तेदारी है ना वो भी खराब हो जाती है इसी चक्कर में। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की मदद मत करो, मदद सबकी करो लेकिन सोच समझ के करो। संडे की सुबह है, आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप, आपकी फेवरेट रेडियो स्टेशन, आपके शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। 10:37 हो रहे हैं 17 मई की सुबह। हाँ जी, तो इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे अपने हालचाल बताओ जरा, मैसेज करो 9837 896 896। आई नो कोई काम पे पहुंच चुका है, कोई घर में अभी काम कर रहा है, कोई आज लेट उठ रहा है, कोई अपने संडे को सेलिब्रेट करने निकल गया है मुरादाबाद की दिल्ली रोड पे, और कुछ लोग निकल चुके हैं अपनी गागन रोड पे। तो भैया आप जहां भी जा रहे हैं आपको सल्यूट है यार, संडे है, अच्छे से एंजॉय करो। मेरे जैसे लोग तो मंडी से आ रहे हैं सब्जियां लेके कि भैया चलो पूरे हफ्ते भर की सब्जियां ले आते हैं, और अपने जो घर के छोटे छोटे काम काज है वो निपटा उपटा के आपन से बतियाने चले आए हैं आपकी छोटी सी रेडियो पर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। तो देखिए दिन आज बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारे खास विशेष दिन आज हम सेलिब्रेट करते हैं। आज 17 मई है, बहुत ही स्पेशल

दिन है और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर संदेश पहुंच रहे हैं सुबह सुबह। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज के विशेष तारीख की कुछ विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन जो घटित हुई उसके विषय में बात कर लेते हैं। 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, श्रोताओं आज ही के दिन। जी हां, और आज ही के दिन 1975 में जापान की महिला ज्योति श्रीमती जोन को तिबाई माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी आज ही के दिन। तो आज का दिन अपने आप में बहुत खास है।

और श्रोताओं, आज के दिन 1951 में 17 मई को पंकज उदास जी का जो है वो जन्म हुआ था, जो भारतीय प्रसिद्ध गजल के लिए काफी पॉपुलर हैं और बहुत ही आज भी उनकी आवाज में मतलब जब सुनते हैं तो सुकून मिलता है। तो प्रसिद्ध भारतीय गजल और पार्श्व गायक थे हिंदी सिनेमा के और भारतीय पॉप में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आज के दिन जन्म हुआ था पंकज उदास जी का सन 1951 को। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पंकज उदास। ऑफकोर्स उनके बहुत सारे गाने भी हैं और बहुत सारी गजलें जो हमें बड़ा सुकून देती हैं। प्रीति गांगुली का जन्म हुआ 1953 में। आज के दिन हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री और चित्र अभिनेत्री भी थी और काफ़ी पॉपुलर हैं हिंदी सिनेमा में, इनका आज के दिन जन्म हुआ। बाकी अगर बात करें एक और खास इंसान की तो इनका नाम है धीरेन्द्र वर्मा, जो हिंदी व्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। सन 1897 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन श्रोताओं। वहीं बात करें तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस आज मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस भी हम आज मना रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे 17 मई को। भैया स्वस्थ खाओ एंड बीपी कंट्रोल पाओ। जी हाँ, विश्व हाई बीपी दिवस आज मनाया जाता है। बीपी हाई, देखिए भाई साहब, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो पता तो नहीं लगती, लेकिन समय समय पर अपना बीपी जो है वो चेक करवाते रहना चाहिए। 17 मई की सुबह विश्व दूर संचार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मोबाइल इंटरनेट और संचार का संगम दुनिया को बना रहा है और भी उत्तम। जी हाँ, विश्व दूर संचार दिवस और ये जो हम डिजिटली प्रगति कर रहे हैं ना, इसको तो हमें सैल्यूट करना बनता है। देखिए बातें तो तमाम सारी मैंने आपको बता दी फटाफट खटाखट इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां दिल से दिल तक बात हो रही है। तमाम सारे श्रोता साथी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज जुल्फी। हाय जुल्फी भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जुल्फी भाई लिखते हैं। आनंद जी बिल्कुल सही कहा आपने, हम किसी की मदद करते हैं उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हमने क्यों किसी की मदद कर दी। 100% आई एग्री, लेकिन मदद करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत लोगों की मदद करना कभी कभी गलत बात हो जाती है यार, है ना। पता कैसे चले कि कौन गलत है कौन सही है, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है यार आज के समय में पहचानना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो बिल्कुल आप मदद कीजिए। आप जैसे भी करना चाहते हैं, आप जैसे सक्षम है वैसे जरूर मदद कीजिए। मदद करते रहिए, बहुत जरूरी है। हमारे पास गुलाम जलानी पाशा का मैसेज पहुंचा है। गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं ये। एंड हाय, माय नेम इज एंजल, मैं सूर्यनगर से बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंजल। हेलो आदरणीय प्रसारक आनंद जी को हमारा प्यार भरा आदाब, कबूल करें। जी बिल्कुल, हमने कबूल किया आपका आदाब। ये मुझे मैसेज में गाना लिखते हैं, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया है। जी जरूर, इस पे हम अभी गौर करेंगे और ये गाना भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे साहब। हेलो आरजी आनंद, गुड मॉर्निंग सर, आज सॉन्ग सुनवा दो, अभी तो मोहब्बत का आगाज है। क्या बात है, साबरीन जी ने मैसेज किया है मिलक से, वेरी नाइस। गौरव टीलर जी जुड़े हैं मेरे साथ नवीन नगर से, लिखते हैं आनंद भाई वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रहे हैं, आप आए बाहर आई, मुझे एक सॉन्ग सुनवा दीजिएगा। अरे वाह आनंद भाई, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, ओ बहुत ही प्यारा ये गाना है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। साथ में एक बड़ी सुंदर पिक्चर शेयर करते हुए लिखते हैं गौरव जी, एक बार किसी को माफ करके अच्छा बन जाना तो अच्छी बात है, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके कभी बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। बात तो बहुत ही अच्छी बोली है गौरव जी।

चलिए श्रोताओं, आप लोग भी अपनी पसंद के गीत मुझ तक पहुंचा सकते हैं और तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाऊंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुन रहे हैं संडे वाली ब्यूटीफुल वाइब आनंद के साथ। खूबसूरत गीत के बाद लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइए। आप क्या सुनना चाहते हैं व्हाट्सएप कीजिए 9837896896। बड़ी कमाल की बात अभी बताऊंगा आपको थोड़ी सी देर में।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

क्या बात है गौरव टीलर जी की रिक्वेस्ट पे बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप एंजॉय कर रहे थे आरजे आनंद के साथ। संडे का ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सेट पे। वेरी गुड मॉर्निंग है सभी श्रोताओं का, दिल से स्वागत है जी।

बहुत सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह। संडे का ये जो दिन है बहुत ही खास है, और इसे खास मैंने आप बना रहे हैं क्योंकि आपकी बातें और आपके मैसेज बहुत ही खूबसूरत की जो खूबसूरती में मतलब चार चांद तो लगाते हैं आपके संदेश, लेकिन आप लोग जब मैसेज करते हो ना सच में यार आनंद आ जाता है। आनंद को बहुत ही बेहतरीन मैसेजेस आपने किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यार एक टाइम था ना जब हम लोग बचपन वाला संडे बड़ा याद करते थे, यार संडे आएगा अपन जो है छुट्टी करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, वो जो संडे होता था ना उसकी फील अलग होती थी। आजकल के संडे का इतना इंतजार मुझे नहीं लगता कि लोगों को रहता है, बट हाँ जो मेरे जैसे वर्किंग लोग हैं उनको तो डेफिनेटली रहता है कि यार कब संडे आएगा, कब छुट्टी मिलेगी। और अब तो यार संडे में भी मंडे जैसी फीलिंग आती है जब हम काम पे आ जाते हैं, तो ऑल द वे

0: ऐसा होता है, अक्सर होता है यार। खैर आगे बढ़ते हैं, आप जो मुझे ये बताओ, गर्मियों का मौसम ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, मई अब जो आज 17 मई हो गई है, ठीक है, उसके बाद हम जून में प्रवेश कर जाएंगे, तो मई का महीना तो चल रहा है। मई जून में तो अक्सर बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं, और अभी मे भी बच्चों की छुट्टियां चल भी रही होंगी शायद। और बाकी गर्मियों के मौसम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत हमें पसंद होती हैं ना। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं गर्मियों के मौसम में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, गर्मियों के वेदर, गर्मियों का मौसम आती है आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ क्लिक करती है? जैसे गर्मियों में फलों का राजा आम होता है, मतलब गर्मियां मतलब आम, मेरे लिए गर्मी मतलब आम, मैंगो, आई लव मैंगो यार, गर्मी मेरे लिए मतलब लीची, आई लव दैट लीची, लीची मुझे बहुत पसंद है, आई लव दिस यार। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ गर्मियां आपके लिए क्या है, मुझे मैसेज करके बताना 9837898906। गर्मियां आते ही दिमाग में क्या क्लिक करता है, ठंडा पानी, ठंडी ठंडी हवाएं, या गर्मियों के गंदे मच्छर जो सोने नहीं देते हैं रात रात भर? व्हाट्सएप करिएगा मुझे 9837898906। विक्की सागर जी जुड़ गए हैं, लिखते हैं रेडियो वाला आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग, और साथ में लिखते हैं हेलो जी कैसे हालचाल है, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, और अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हैं आप लोग यार, दिल से थैंक यू। और विक्की भाई आप जब भी मैसेज करते हो मजा आ जाता है, आपके संदेश बड़े गजब के होते हैं। ये लिखते हैं आरजे आनंद सबसे प्यारा, पूरे मुरादाबाद पर छाया हुआ है आरजे आनंद। अरे नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल सर, ये तो आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया साहब, गाना हम आपका चला देंगे आप टेंशन मत लो। जुल्फी भाई मैसेज लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, मुझे गाना सुनना है पंजाबी वाला। रामपुर से भी मेरे पास मैसेज आया है हेलो जी गुड मॉर्निंग, रफत साहब मुझे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, आज का शो सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हमें एक गीत सुनवा देना हमारी पसंद का। जी जरूर आपकी पसंद हम शामिल करेंगे। एक और संदेश पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग माय नेम इज प्रणाली, वंडरफुल नेम प्रणाली, अच्छा नेम है। ये मुझे लिखती है आनंद जी सुबह सुबह आपको सुन के सच में बड़ा मजा आ रहा है, और कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो हमें पता नहीं था, आपको उसके लिए भी थैंक यू सो मच। कोई भी गाना अपनी पसंद का सुनवा दीजिएगा, बढ़िया सा। अच्छा जी भैया कुछ सारे बहुत सारे नहीं बहुत सारे बहुत सारी बोलूंगा, बहुत सारे लोग कॉल भी कर रहे हैं धड़ाधड़। तो यार देखो सुबह सुबह पाजी कॉल तो मैं नहीं रिसीव कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैं आपसे मैसेजेस के जरिए ही बातचीत कर रहा हूँ, तो आप भी हमें मैसेजेस पहुँचा सकते हैं, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि गर्मियाँ आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक करता है, कौन सा ऐसा वो गर्मियों का कह सकते हैं कि फल है, या क्या चीज़ है जो आपको गर्मियों की बहुत अच्छी लगती है? सर्दी आती है तो कलरफुल सब्जियाँ आ जाती हैं, कलरफुल कपड़े आ जाते हैं, गर्मियाँ आती है तो सब कुछ लाइट लाइट हो जाता है ना, खाने पीने की चीज़ें भी लाइट हो जाती हैं, तला भुना खाना, ऑयली मसाले वाले फूड्स, ये सब हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं, और बिल्कुल हमें करना भी चाहिए, है ना। तो ज्ञान की बातें कम, काम की बातें ज़्यादा, आज की सुबह आनंद के साथ। 11 बज चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, जी हाँ सुबह के 11 बज चुके हैं दोस्तों, कुछ एड ब्रेक के बाद में आता हूँ।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स, यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
7: हाय दया नन्ना जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: आपको पता है जो टेलीफोन है, टेलीफोन आप तो खैर मोबाइल फोन आ गए, जो पहला टेलीफोन था वो किसने किसको किया था आपको पता है? मैं बताता हूँ आपको, टेंशन मतलब आज का दिन बहुत खास है इसलिए भी, और बाकी ये गाने भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये गाने मेरी नहीं आप ही लोगों की पसंद पे चल रहे हैं। हाँ जी, ट्यून इन किया है आपने आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे है, आनंद के साथ संडे वाली वाइब एंजॉय कर रहे हैं आप और ये बेहतरीन गाने। अगर आप अकेले बाजार जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये गाना आपसे कुछ कहने वाला, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो भी कहेगा ना ये गाना कहेगा। बहुत प्यारा गाना है यार, अजय देवगन एंड सोनाली बिंद्रे पर पिक्चराइजेशन है गाने का, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गाने को गाया गया है।
1: अकेली न बाजार जाया करो,
0: नहीं नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ,
1: नजर लग जाएगी।
0: आनंद राज आनंद का लिरिक्स है, आनंद राज आनंद ही कंपोजर है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक उदित साहब ने गाया है, म्यूजिक भी आनंद राज आनंद का है और ये जो गाना चला रहे वो आनंद है।

0: असंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या बात है जी, नाचते रहिए और नचाते रहिए, झूमते रहिए, बहुत जरूरी है जी। संडे की सुबह है, 11:09 हो गए हैं और आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप। भाई मैंने सोचा नहीं था, मैंने जस्ट आपसे नॉर्मली पूछा था, आई वांट टू आस्क यू लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, कि आप मुझे बताओ गर्मियों का मौसम आते ही दिमाग में सबसे पहले कौन सी पिक्चर क्लिक करती है, क्या चीज है जो आपको एकदम से ना ऐसे मतलब टारगेट करती है, भाई गर्मी आएंगे मेरे को ये चीज, तो भाई मेरे को ये चीज पसंद है, मेरे को खाना पसंद है ठंडा, मेरे को पानी पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स मुझे पसंद है, नहीं भाई मुझे तो स्विमिंग पूल में जाना पसंद है, व्हाटएवर जो भी आपको लग रहा है, गर्मी आती क्या आपको अच्छा लगता है जानने की कोशिश कर रहा है आज ये लड़का स्टूडियो में बैठ के। और सच बताओ तो मुझे गर्मियों में ये हम जो हाफ टी शर्ट पहन के घूमते हैं ना, ये मेरे को बड़ी कूल लगती है, बड़ी कूल लगती है। सो वही मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ मेरे भाई, आप भी मुझे बता सकते हैं, दीदी जी आप भी बता सकती हैं मुझे मैसेज करके 9837 8968 9 6 8 9 6, बड़े प्यारे प्यारे संदेश आए हैं। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है? मेरे हालचाल बहुत ही बढ़िया है। हाय माय नेम इज शेफाली, गुड मॉर्निंग शेफाली जी, इनका मैसेज आया है मुझे गायत्री नगर से। शेफाली मुझे लिखती है, आनंद जी गर्मी आते ही ना मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, एंड मतलब मैं आपको सच बताऊँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सर्दियों में आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन गर्मियों में भी हम आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। अरे वाह, आपने मेरा नाम भी लिख दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमको। एक मैसेज और आया, गुड मॉर्निंग, हाय कैसे हाल चाल है? मैं बढ़िया जी, हेलो जी हेलो, अरे भाई कितनी बार हेलो लिखोगे, पैसे काट लूंगा मैं। ये मुझे मैसेज आया मयंक का, हाय मैं मूर्ति से मैसेज कर रहा हूँ। अरे व्हाट मूर्ति ब्रो, शायद हनुमान मूर्ति लिखना भूल गए ये पूरा। ये मुझे लिखते हैं, आनंद जी गर्मी आती है ना मुझे मैंगो बहुत पसंद है, बिकॉज मैं आम का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है यार, और मुझे ना बड़ी अलग अलग वैरायटी के मैंगो बहुत पसंद है खाने में, और मुझे मैंगो शेक भी बहुत पसंद है, और तुमने मेरे दिल की बात जो है आज छेड़ दी है। मुझे गर्मियों में जो है सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट गर्मियों में एक चीज है जो मुझे बहुत बुरी लगती है, वो है पसीना टप टप करके आता है। यार वो सबको बुरा लगता है, बिल्कुल कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते। गुड मॉर्निंग आनंद भाई, गुड मॉर्निंग, हाय दिस इज मी गुरप्रीत, हाय गुरप्रीत गुड मॉर्निंग। ये मुझे मैसेज करते हैं मुरादाबाद के कांट रोड से, गुरप्रीत ने लिखा है, आनंद जी गर्मियां आते ही ना मुझे सबसे ज्यादा जो बहुत ही ज्यादा मजा आता है जिस चीज में, वो चीज है हम जब कहीं भी बाहर से आते हैं फिर ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। ओहो हो, देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तुरंत अगर गर्मी से बाहर आ रहे हैं और तुरंत आके आपने टेम्परेचर ठंडे में आप सोच रहे हैं कि मैं बैठ जाऊँ या ठंडा पानी पी लूँ या मुंह पे ठंडा पानी डालूँ, तो ये सब गलतियां नहीं करनी है। कई बार हम लोग ऐसे जाने जाने में कर तो देते हैं, जैसे हमारा गर्म टेम्परेचर से मार रहे हैं और तुरंत हम एकदम ठंडे अगर टेम्परेचर में जाएंगे तो हमारी सेहत पर उसका असर पड़ेगा और हमारी सेहत बिगड़ भी सकती है श्रोताओं, तो इस चीज का जरा खास ख्याल रखें। आप गर्मियों का जरूर लुफ्त उठाएं, आनंद उठाएं, लेकिन उसके साथ ही साथ सावधानी भी बहुत जरूरी है। अगर आप गर्मी के मौसम अभी चल रहा है, आपको पता आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको बहुत तेज गर्मी लगी, तो थोड़ा ना नॉर्मल टेम्परेचर में ही रहें, बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें, उसके बाद ही आप जो है ठंडे एरिया में जाएं। अगर आप सोचने की बहुत गर्मी है मैं जाके तुरंत नहा लूं, ये प्लीज मत करिए, ये बहुत खतरनाक और घातक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हेलो रंजीत बात कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग आनंद जी, गुड मॉर्निंग रंजीत, इन्होंने लिखा है गर्मियां आते ही मुझे सबसे ज्यादा एक चीज पसंद है। अरे वाह क्या बात है, आपने जो लिखा है ना ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। ये लिखते हैं सर गर्मियां आते ही ना मेरे को एक चीज जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, भाई ये जो तुमने लिखा है ना दो बार एक चीज, मैं बता रहा हूँ ये जो आधा समय आपने मेरा खा लिया ना मैं इसका चार्ज लगा दूंगा आपके ऊपर। इन्होंने लेकिन बहुत ही अच्छी चीज लिखी है रंजीत जी ने, रंजीत जी थैंक यू सो मच, ये चीज आपने जो लिखी है ना इसका मजा ही कुछ और। ये लिखते हैं सर जब गर्मी आती है तो मैं हाथ का पंखा लाइट नहीं होती तो वो इस्तेमाल करते हैं और उसकी वाई भी अलग होती है। एक मैसेज और पहुंच गया बहुत प्यारा सा, गुड मॉर्निंग, हाय पूनम बात कर रही हूँ, मिट्टी के घड़े का पानी पीने में बहुत आनंद आता है आनंद जी गर्मियों में, आप भी जरूर ट्राई करिएगा, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया पूनम जी, जोरदार तालियां। ये आपने एक नेचुरल प्रोसेस बता दिया है और जो कि बहुत जरूरी है, हम सभी को इसको जरूर फॉलो करना चाहिए।

दोस्तों हम हर साल 17 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे, और ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है। श्रोताओं, बहुत ही स्पेशल डे होता है। जी हाँ, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 17 मई को। इसका महत्व क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, चलिए आपको बताते हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज मैं हिंदी में बता देता हूँ, आज विश्व दूर संचार और समाज सूचना समाज दिवस आज मनाया जाता है, यानी कि वो दिन जो हमें याद दिलाता है कि मोबाइल, इंटरनेट और रेडियो और कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुके हैं। जी हाँ श्रोताओं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर फ़ोन ना होता तो इंटरनेट ना होता तो हम अपनी इतनी सारी जो जल्दी जल्दी ये बातें हैं जो हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जो जल्दी जल्दी जो कनेक्टिविटी है एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, वो कैसे होता। पहले लोग चिट्ठियों का इंतजार करते थे और आज एक वीडियो कॉल और सारी दूरियां खत्म। तो आज का अपने आप में बहुत ही स्पेशल दिन है। और रेडियो की अगर मैं बात करूँ तो रेडियो वो आज भी दिलों को जोड़ने का सबसे प्यारा मीडियम है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, जहाँ आपकी दिल की बात मैं सुनता हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है रेडियो, एंड आई लव दिस रेडियो। आजकल हालांकि हम आरजेस को दिखना बड़ा आसान हो गया है, एक टाइम था जब हमारी आवाज़ से ही या हम आरजेस की आवाज़ से अपने दिमाग में और अपने जहन में एक पिक्चर बनाते थे, एक इमेज बनाते थे कि ये पर्सन ऐसा होगा, ये पर्सनालिटी ऐसी दिखती होगी, आवाज़ सुन के ही हम अंदाज़ा लगा रहे होते थे, है ना। आजकल तो क्या टेक्नोलॉजी ने सब कुछ जैसे बड़ा आसान बना दिया है यार। Yes, I'm talking about आज की सुबह वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी पे मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ आपसे। यार मेरे पास एक बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है, सोच लो अगर मैं आपसे सोच रहा हूँ पूछ लूँ। गर्मियों का सवाल तो है ही मेरे जहन में, मतलब यार आज इतना अच्छा दिन है तो मुझे लग रहा है अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ तो शायद आप इसका जवाब मुझे पहुँचा दोगे। मान लो दोस्तों, अगर एक दिन के लिए आपका मोबाइल बंद हो जाए तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होगी आपको, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, फेसबुक की, या जो लोग मुझे रेडियो पर सुनते हैं आपके थ्रू उसकी, किस चीज़ की कमी आपको महसूस होगी? मतलब जस्ट नॉर्मली आई जस्ट, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग देने को तैयार होंगे बिल्कुल, मुझे पता है। आप मैसेज करिएगा अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, एक दिन के लिए अगर मोबाइल बंद हो जाए तो कौन सी चीज़ है, कौन सी कमी है जो आपको सबसे ज़्यादा सताई है और आपको बहुत आप बहुत महसूस करोगे उस चीज़ को, प्लीज़ टेल मी। आप लोगों ने मैसेज किए हैं बहुत सारे गानों को लेकर, वो भी मैं शामिल करूंगा। मैं बात कर रहा था वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे की, जो हर साल मनाया जाता है आज ही के दिन, यानी कि 17 मई को। और भी बहुत सारे दिवस है जो हम आज सेलिब्रेट करते हैं, और हम गर्मियों की बातें भी कर रहे हैं कि गर्मी आते ही आपको सबसे ज्यादा क्या चीज़ है जो आपको कूलिंग का एहसास देती है, आप बताइएगा। मंसूरी कॉलोनी से मेरे साथ जुड़े हैं इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेहराज अंसारी, बाबू अंसारी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? संडे में आपको मॉर्निंग मसाला शो में सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड सॉन्ग भी बहुत अच्छे प्ले हो रहे हैं। एक सॉन्ग हमारा भी प्ले कर दीजिएगा, किशोर कुमार जी की आवाज़ है। बिल्कुल जी, ज़रूर ये गाना हम प्ले करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी हमें बता सकते हैं गर्मी आते ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है, गर्मियों की सबसे बेहतरीन चीज़ आपको क्या पसंद है। विक्की सागर जी लिखते हैं, रेडियो वाला आनंद, गर्मियाँ आते ही ना हमें आम का पन्ना पीना बहुत पसंद है, मैंगो का खाने का बहुत मन करता है और मैंगो का जूस हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी बात नहीं है कि गर्मियाँ अच्छी नहीं होती, गर्मियाँ भी अच्छी होती हैं भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। और लिखते हैं कि हर

इंसान का अपना एक जो है चॉइस होता है हर एक मौसम का। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन्होंने लिखा है, हर समय अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होता है, हर समय का मौसम बहुत प्यारा होता है, चाहे गर्मी का हो, बारिश का हो या ठंडी का हो, मतलब सारे मौसम अपने आप में बहुत प्यारे होते हैं। और इन्होंने जो ये आम की फोटो भेजी है ना मुझे खींच के, बॉस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, विक्की भाई आपको पाप चढ़ेगा, आपने खाली आम की ये टोकरियों की फोटो भेज दी है भाई, गलत बात है। इन्होंने किसी मैंगो की ठेली से पिक्चर क्लिक करके मुझे भेजी है, जहाँ पर ढेर सारे मतलब बहुत सारे येलो कलर के आम रखे हुए हैं, पूरी लदी हुई है ये स्टॉल मैंगो से, और बहुत ही खूबसूरत आम, बहुत ही प्यारे प्यारे मीठे मीठे आम मुझे नजर आ रहे हैं। इन्होंने पूरी फोटो शेयर कर दी है, देखिए श्रोताओं आज की सुबह लग रहा है कि आज मुझे मैंगो लेकर ही आने पड़ेंगे। मैं मंडी गया था, सब्जी लेकर आया हूँ, थैला लेके गया, थैला लेके सब्जी लेकर आया हूँ, लेकिन मैं मैंगो नहीं लेकर आया, मुझे लगता है लेकर आना चाहिए था यार। रामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो जी, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? रफत साहब, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। इन्होंने लिखा है कि ये लिखें, गर्मियों का महीना आते ही हमारे मन में तो रूबजा शरबत पीने का मन करता है, और रूबजा बहुत ही अच्छा होता है। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया, मतलब हम जब भी कहीं जाते हैं गर्मियों में अक्सर तो बहुत सारे रोड पर जो है रूबजा बट रहा होता है ना, मैं तो भाई रुक के पी लेता हूँ, मेरे को तो बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही मज़ेदार लगता है ठंडा ठंडा रूबजा, हो खुशबूदार, उसके पीने का स्वाद ही अलग होता है। हेलो आनंद जी, मेरा नाम निधि है, और गर्मियाँ आते ही ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ये ठंडा पानी, मुझे बहुत पसंद है, मैं ठंडा पानी बहुत पीती हूँ, और गर्मियों में जो है ना हमारे बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, हमारी सब्जियाँ भी ख़राब नहीं होती है, हम आराम से फ्रिज में रख देते हैं। अरे वो तो सर्दियों में भी नहीं होती मैम, कैसी बातें कर रहे हो, गर्मियों तो इनफैक्ट और ज़्यादा हो जाती है। एक मैसेज और मेरे पास पहुंच चुका है, एक गाना प्ले करिएगा। हेलो सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, अगर एक दिन के लिए हमारा मोबाइल बंद हो जाएगा तो मैं सबसे ज़्यादा अपना व्हाट्सएप मिस करूंगी, बिकॉज सब लोगों का स्टेटस देख पाती हूँ, वो नहीं देख पाऊंगी, लेकिन आपने नाम नहीं लिखा है अपना। एक मैसेज आया मुझे, दीवाना फिल्म का गीत सुनवा दीजिएगा। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल हैं? बहुत ही बढ़िया, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल एंड प्रियंका, मन्नत, गुरप्रीत एंड गुरशब्द मुझे मैसेज कर रहे हैं आज की सुबह। चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे गाने आपके लिए निकाल रहा हूँ, और इन अच्छे गानों के बाद वापस आएंगे तो आपसे और बातचीत करेंगे। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन, ब्यूटीफुल शो, शो तो आपको पता ही है जब भी आता है तो बढ़िया ही आता है। FM मुरादाबाद पे आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। ये गाना मेरी तरफ से आप सभी के लिए, ब्यूटीफुल सॉन्ग निकाल दिया है मैंने, ठीक है जी, बट ये गाना आप में से किसी ने पहुंचाया है, अभी बताऊंगा कौन है, किसने रिक्वेस्ट की इस गाने की। हंगामा मूवी का बहुत ही प्यारा गाना, अक्षय खन्ना पर पिक्चराइजेशन, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है,

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
9: कॉल 8826213131।
10: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
11: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
12: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
11: पर पापा।
12: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

ये गाना जो था ना, बहुत ही प्यारा किशोर कुमार की आवाज़। तो आवाज़ तो किशोर दा की थी बहुत प्यारी, लेकिन इस गाने को सुनने की जो रिक्वेस्ट आई थी वो आई थी हमारे पास मंसूरी कॉलोनी से इरशाद हुसैन अंसारी साहब की। बहुत ही खूबसूरत गीत साहब आपने भेजा, शुक्रिया। ये गीत सुन के हम भी जो है तरोताज़ा हो गए हैं। बज के 32 मिनट हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में, और हमारे साथ लगातार हमारे श्रोता साथी जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम के जरिए अपने दिल की बातों को साझा कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और ये मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है, इन्होंने ये तो नहीं लिखा, बस इन्होंने लिखा है हाय एक पंजाबी गाना सुना दो। जी बिल्कुल सुनवा दूंगा भाई। सुनो मिया सुनो, तुम हो दीवानी, गाना सुनना है मुझे क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को तो नहीं पता साहब। ये लिखते हैं नाइमुल अकरम, मेरे पास मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जी, हम आपको ये गाना सुनवाएंगे, आपने हमें बहुत प्यार से मैसेज किया है तो ज़रूर, और ये गाना भी काफ़ी ज़बरदस्त है। एक संदेश और पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, गर्मियां आते ही ना हमें सबसे अच्छा लगता है, वेकेशन पे बाहर घूमने जाते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है। सारे लोगों की छुट्टियां होती हैं तो बहुत अच्छे से जो है हम घर पे सेलिब्रेट करते हैं, और कभी कभी तो नानी के घर भी जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। आ हा हा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जो है आपने बोल दिया है, मतलब मज़ा ही आ गया जी आपकी बात सुन के, तो मज़ा ही आ गया। मुझे भी एकदम नानी के घर जाने में बड़ा मज़ा आता था, स्पेशली गर्मियों में जब हम छुट्टियों पर जाते थे। एक मेरे पास मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग सर, गर्मियों में कच्चे आम की चटनी खाइए, बहुत मज़ा आता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आम पन्ना पीना बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में मुझे, थैंक यू सो मच। ये मैसेज मेरे पास किसने किया है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बट थैंक यू। एक संदेश और पहुंचा है, जी गुड मॉर्निंग खुशी, हेलो जी, हेलो खुशी। मुझे समझ नहीं आ रहा इनका नाम खुशी है या खुशी को याद कर रही है, अब ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वेल बाय द वे, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मैसेज किए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे। एक संदेश और पहुंचा है मेरे पास, गुड मॉर्निंग आनंद, गुड मॉर्निंग जी, और आपने जो आज बताया कि ये वाले दिवस मनाए जाते हैं, इसके विषय में हमें पता नहीं था, काफ़ी जानकारियां आपके माध्यम से मिल जाती हैं, थैंक यू जी। बिल्कुल, हमारी कोशिशें होती हैं साहब कि हम जब रेडियो पे आएँ तो तमाम सारी जानकारियां और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएँ, क्योंकि आपके शहर के सामुदायिक रेडियो आप सुनते हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, बातें वही जो आपका दिल चाहता है।

आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बात समझाता हूँ। रमेश, हेलो, उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशान हुई है। क्या मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा। OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP, UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, OTP को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो, पैसे कट गए हो, OTP शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और UPI सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। OTP और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सके। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हां जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है। तो सतर्क रहें, सेफ रहें। ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 MHz के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज। अभी के लिए लेता हूं यहां से अलविदा। तो स्टे सेफ।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
0: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
9: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
8: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
9: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: चलिए श्रोताओं, अब मेरा जाने का समय हो गया है। 12 बजने को है, 11:57 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में और तमाम सारे श्रोता मेरे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यारा सा गीत छोड़ के जा रहा हूँ साबरीन जी की रिक्वेस्ट पे, बहुत ही खूबसूरत गीत है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप लोग जुड़े और ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। बातें वही जो आपका दिल चाहता है, बहुत ही बेहतरीन गाने, ऐसे बेहतरीन गीतों से रंगारंग कार्यक्रम आपके लिए होते रहेंगे प्रस्तुत इसी चैनल पर। कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। और हाँ, हम आपसे फिर से मिलेंगे इसी स्टेशन पर, बस आप ट्यून इन रखिए। बारह से तीन बेहतरीन प्रोग्राम आपके रेडियो पर आ रहे हैं, बस आप ट्यून अप रहिए इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजेरीना। और आज की बात थोड़ी अलग है, क्योंकि आज हम जिस बीमारी की बात करने जा रहे हैं वो शोर नहीं करती, कोई चेतावनी नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। और खास बात ये है कि हर साल 17 मई को पूरी दुनिया में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, ताकि हम सब इस खामोश खतरे को पहचान सके।
4: धन्यवाद आरजे रीना, और हमारे सभी श्रोताओं का भी तहे दिल से धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर ही क्यों नहीं कहा जाता। दरअसल यह बीमारी बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर के अंदर अपना असर दिखाती रहती है। व्यक्ति को ना दर्द होता है, ना कोई खास तकलीफ महसूस होती है, लेकिन अंदर ही अंदर रक्तचाप बढ़ता रहता है और धीरे धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। और जब तक हमें इसका एहसास होता है, तब तक कई बार स्थिति गंभीर हो चुकी होती है।
3: मतलब आदमी बिल्कुल ठीक महसूस करता है, रोजमर्रा का काम करता है, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके बहुत डराने वाली बात है। सेहतिया जी,
4: बिल्कुल यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। आज दुनिया भर में लगभग 1.4 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित हैं, लेकिन इनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें यह पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और जो लोग जानते भी हैं, उनमें से भी बहुत कम लोग इसे सही तरीके से नियंत्रण कर पाते हैं। इसका कारण है नियमित जांच का अभाव, दवाइयों को बीच में छोड़ देना और जीवन शैली में जरूरी बदलाव ना करना।
3: सेहतिया जी, अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में स्थिति कैसी है? क्या यहाँ भी हालत इतनी ही गंभीर है या उससे भी ज्यादा चिंताजनक है?
4: भारत में भी स्थिति काफी चिंताजनक है आर्जेरीना। यहाँ हर तीसरा वासी किसी ना किसी रूप में हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित है। पहले यह माना जाता था कि यह बीमारी केवल शहरों या अमीर लोगों तक सीमित है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांव में भी यह तेजी से फैल रहा है। आज किसान, मजदूर, दुकानदार, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसका कारण है बदलती जीवन शैली, खान पान में बदलाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता तनाव।
3: तो मतलब अब यह सिर्फ उम्र या पैसे से जुड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनती जा रही है।
4: बिल्कुल सही समझा आपने आरजे रीना। अब यह बीमारी सीधे तौर पर हमारी जीवन शैली से जुड़ चुकी है, जैसे ज्यादा नमक सेवन करना, पैकेट वाले और प्रोसेस्ड खाने की आदत, दिन भर बैठ कर काम करना, शारीरिक मेहनत कम होना, तनाव लेना और पर्याप्त नींद ना लेना, ये सभी कारण हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए इसे लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है।
3: आपने इसे साइलेंट किलर कहा, जरा हमारे श्रोताओं को और अच्छे से समझाइए कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब लक्षण ही नहीं होते तो लोग इसे गंभीरता से कैसे ले?
4: देखिए आरजे रीना, जब ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा बना रहता है तो यह धीरे धीरे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। दिल पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दिमाग पर भी असर पड़ता है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। किडनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह सब कुछ धीरे धीरे और बिना किसी चेतावनी के होता रहता है, इसीलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और जब तक गंभीर लक्षण सामने आते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है।
3: मतलब खतरा चुपचाप बढ़ता है और इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त रहता है कि उसे इसका अंदाजा ही नहीं होता। यह सोचकर ही डर लगता है कि एक ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती, वही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इसीलिए शायद आज की इस बातचीत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें जागरूक होना होगा और समय रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। तो इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है सेहतिया भैया? अगर कोई व्यक्ति यह सोच रहा हो कि वह इस साइलेंट किलर से खुद को कैसे बचा सकता है, तो उसे सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
4: देखिए आरजे रीना, सबसे पहले जरूरी कदम यह है कि नियमित ब्लड प्रेशर की जांच कराना। यह एक बहुत ही सरल है लेकिन बेहद ही प्रभावी तरीका है। हर व्यक्ति को, चाहे वह बिल्कुल स्वस्थ क्यों ना हो और क्यों ना महसूस करता हो, अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक कराना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, यह बीमारी बिना लक्षण के भी हो सकती है। इसीलिए केवल मैं ठीक हूँ महसूस करना काफी नहीं है, जानकारी ही बचाव का पहला कदम है।
3: और ये जांच कहाँ करवाई जा सकती है? क्योंकि कई लोग यह सोचते हैं कि इसके लिए बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा या खर्चा ज्यादा होगा।
4: नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है आरजे रीना। आजकल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और विभिन्न स्वास्थ्य कैंपों में ब्लड प्रेशर की जांच बहुत ही आसानी से और कई बार मुफ्त में भी उपलब्ध होती है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता, A&M और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी भी गांव-गांव जाकर यह जांच करते हैं। कई जगहों पर तो छोटे क्लिनिक या मेडिकल स्टोर पर भी मशीन उपलब्ध होती है। मतलब अब जांच करवाना मुश्किल नहीं, बस हमें खुद की पहल करनी होगी।
3: तो सेहतिया जी, अगर कोई व्यक्ति सच में अपने आप को इस बीमारी से बचाना चाहता है, तो उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या क्या बदलाव करने चाहिए?
4: बहुत कठिन नहीं है आरजे रीना, लेकिन जरूरी ये है कि हम नियमित रूप से अपनाएं। सबसे पहले नमक का सेवन हमें कम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक सीधा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके साथ ही पैकेट वाले और प्रीपेड खाने को कम कर देना चाहिए। हम अपने भोजन में ताजे फल और हरी सब्जियों को शामिल करें। रोजाना थोड़ा बहुत चलना फिरना, जैसे सुबह या शाम की सैर करना, बहुत फायदेमंद होता है। तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह ध्यान हो, मेडिटेशन हो, या परिवार के साथ समय बिताना हो, या कोई अपना एक पसंदीदा काम जरूर करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, तंबाकू और शराब से बेहद ही दूरी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही ब्लड प्रेशर को बिगाड़ते हैं।
3: मतलब छोटी छोटी आदतें जो हम रोज करते हैं, वही हमारे स्वास्थ्य पर इतना बड़ा असर डालती हैं।
4: बिल्कुल, यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर दवा देता है, तो उसे नियमित रूप से लेना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग यह गलती करते हैं, जैसे ही उन्हें थोड़ा सा आराम महसूस होता है, वो ना दवा लेते हैं और ना ही दवा लेना चाहते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का इलाज एक लंबी प्रक्रिया है, इसे लगातार नियंत्रण रखना पड़ता है। दवा बीच में छोड़ देना स्थिति और खराब हो सकती है।
3: अगर ब्लड प्रेशर नियंत्रण में ना रहे, तो क्या शरीर कुछ संकेत देता है? क्या ऐसे में लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए?
4: बिल्कुल जी हाँ आरजे रीना, जब स्थिति गंभीर हो जाती है तो कुछ संकेत सामने आ सकते हैं, जैसे अचानक शरीर के एक हिस्से में कमजोरी महसूस होना, बहुत

0: तेज सर दर्द होना, सीने में दर्द होना या भारीपन महसूस होना, या जैसे सांस का फूलना या आंखों के सामने धुंधला दिखना, ये सभी संकेत खतरनाक हो सकते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय पर इलाज ही जीवन को बचा सकता है।
1: सेहतिया जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वो किसी असली घटना से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को यह एहसास करा सके कि यह समस्या कितनी गंभीर है और समय पर ध्यान देना कितना जरूरी है?
0: हाँ अर्जी रीना, एक कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारे ही एक गांव में रामप्रसाद जी रहते थे। उनकी उम्र लगभग 45 साल है। मेहनती किसान, दिन भर खेतों में काम करते थे। देखने में बिल्कुल स्वस्थ, मजबूत शरीर और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उन्हें कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई थी, इसीलिए वो खुद को पूरी तरह ठीक मानते थे। गांव में जब भी स्वास्थ्य कैंप लगता था तो उन्हें लोग कहते थे, रामप्रसाद जी तुम भी चलो जांच करवा लो, लेकिन वो हंसकर टाल देते, अरे मुझे क्या होगा, मैं तो रोज ही मेहनत करता हूँ, मुझे कैसे बीमारी हो सकती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अचानक खेत में काम करते करते उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर पड़े। परिवार वाले घबरा गए, तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जांच की और जो बात सामने आई उसने सबका दिल हिला दिया। राम प्रसाद का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, इतना ज्यादा कि उनके दिमाग की नसों पर असर पड़ चुका था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि समस्या अचानक नहीं हुई है, ये कई सालों से धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन कभी जांच ना कराने की वजह से पता ही नहीं चला। परिवार के लिए ये बेहद ही दुखद झटका था। उनकी पत्नी रोते हुए कह रही थी, अगर हम पहले जांच करवा लेते तो शायद ये दिन देखना ही ना पड़ता। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला, हालत धीरे धीरे सुधरी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में बहुत समय लगा। इस घटना के बाद रामप्रसाद की जिंदगी बदल गई। आज वही रामप्रसाद गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते हैं, भाई गलती मत करना जो मैंने करी है, बीमारी आने का इंतजार मत करो, समय पर जांच कराओ। वो अब हर महीने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, दवा लेते हैं और अपने खाने पीने का खास ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वो अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे गांव की भी चिंता करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम खुद को जितना मजबूत समझते हैं उतने होते नहीं हैं, और एक छोटी सी लापरवाही हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। आरजेरीना
1: सिहतिया जी, आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कोई छोटी या साधारण समस्या नहीं है। ये चुपचाप शरीर के अंदर अपना असर दिखाता रहता है और जब तक हमें इसका पता चलता है तब तक कई बार नुकसान काफी बढ़ चुका होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम समय रहते जागरूक हो जाए, अपने शरीर के संकेतों को समझ सके और छोटी छोटी सावधानियां अपनाए तो इस खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे रीना, मैं भी हमारे श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य को हल्के में ना लें, नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें, क्योंकि यही सबसे पहला और जरूरी कदम है। अपने खाने में नमक की मात्रा कम कीजिए, ज्यादा तला भुना और पैकेट वाले खाने थोड़े कम कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों को शामिल कीजिए, चाहे वो रोज थोड़ी देर टहलना ही क्यों ना हो। अगर डॉक्टर ने दवा दी है उसे बीच में कभी ना छोड़ें। कई बार हमें लगता है कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन यही बीमारी ऐसी है जिसे लगातार नियंत्रण रखना पड़ता है।
1: साथियों, आज का हमारा संदेश बहुत सीधा और बहुत जरूरी है। खामोश है ये बीमारी, पर असर इसका है भारी। अगर समय पर ध्यान न दिया तो पड़ सकती है जिंदगी पर ये भारी। इसीलिए आज ही संकल्प लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जी रीना, तो याद रखिए, स्वस्थ रहना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज की भी सुरक्षा है। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तो हम अपनों का और अपने परिवार का भी सुरक्षित ख्याल रखते हैं।
1: इसी के साथ हम अपना आज प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं शपथ, हम अपने और अपने परिवार के जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
1: महिला बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा, तो सेहत सही तो लाभ कहीं।
1: मैं आपकी दोस्त आरजे रीना और अब लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और नियमित जांच करवाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में सेहत सही लाभ कहीं, एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: टायर लो सोना जीतो।
9: क्या?
8: जी हाँ,
10: चावला टायर
8: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
10: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं।

0: हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
1: क्या?
0: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
1: मैं क्या करूँ साहब?
0: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
1: मैंने ऐसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट, ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।

0: हाँ जी दोस्तों, कैसे हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ साथियों, अगर हमारी सोच बदलेगी, हमारे समाज की सोच बदलेगी, तो हमारा देश अपने आप बदल जाएगा। एक बार फिर से आनंद हाजिर हो गया इस प्रोग्राम को लेकर, और आज हमारा मुद्दा बहुत ही खास और विशेष और अहम और महत्वपूर्ण है। सारे शब्दों का मैंने इस्तेमाल कर लिया है श्रोताओं। एक बार फिर से सबसे पहले आपका वार्म वेलकम करते हैं आपके फेवरेट स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 9.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और इस प्रोग्राम को आज मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा साथ दे रही है हमारी प्यारी सी को एंकर कुमकुम। बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम स्टूडियो में, कैसी हैं आप?
1: थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आज का जो प्रोग्राम है सोच बदलो, आज उसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो काफी डिजिटल के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा रहने वाला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर देखने से ज्यादा सुनाई देने वाला है कुमकुम जी। कुमकुम हाँ। अभी थोड़ी नई नहीं है, इसलिए ना वो डिजिटल जमाने में ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो देखने की बात कर रही है, लेकिन हम यहाँ सुनाई देने की बात करते हैं क्योंकि यहाँ आवाजों की दुनिया है। तो कुमकुम हमारे साथ अभी नई जुड़ी है। श्रोताओं कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन श्रोताओं प्रोग्राम का नाम बिल्कुल सही बताया, सोच बदलो। आज हम इस पे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया की, जहां दोस्ती भी ऑनलाइन है, काम भी ऑनलाइन है और पहचान भी ऑनलाइन है। आजकल तो खाना पीना भी ऑनलाइन है, क्यों कुमकुम जी? कपड़े भी ऑनलाइन है,
1: अब तो हमें जो चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाता है।
0: इनफैक्ट मजे की बात यह है, आजकल मेकअप भी ऑनलाइन है, आप नहाकर मत आओ, फिल्टर लगाओ, आपका मेकअप भी आ जाता है। तो सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन इस डिजिटल जमाने में जितनी चीजें मेरे और आपके लिए आसान है ना कुमकुम, उतनी ही खतरनाक भी है। क्यों?
1: हाँ। सही कहा ना मैंने, सोशल मीडिया से हमारे कनेक्शंस और लोगों तक जा सकते हैं जो निगेटिव रहते हैं हमारे लिए।
0: करेक्ट करेक्ट, और हम वो सारी चीजें जाने जाने में शेयर भी कर देते हैं जिसका हमारे जो हेटर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं कई बार। तो श्रोताओं आज इन सब मुद्दों पे बात करेंगे, आप बिल्कुल चिपक के बैठिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पे। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, चलिए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना, क्या बात है। मतलब बच्चन साहब और रेखा जी पर पिक्चराइजेशन बड़ा ही प्यारा गाना था। आपको कैसा लगा कुमकुम ये गाना?
1: जी ये तो मेरा एक फेवरेट गाना हो गया।
0: अरे वाह, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। और देखिए भाई साहब, निगाहों में गुल नहीं, आजकल निगाहों में सोशल मीडिया के एप्स खुले हुए हैं, कहीं पर इंस्टाग्राम, कहीं पे व्हाट्सएप, कहीं पर फेसबुक और कहीं स्नैपचैट और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा ऐप है जरा ये बताओ, तुम सबसे पहले उठते ही कौन सा ऐप खोलती हो मोबाइल में?
1: एक्चुअली मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ।
0: देखा, व्हाट्सएप के दीवाने भी भरे पड़े हैं, मुझे पता है गाइज, आप भी व्हाट्सएप चलाते हो दोस्तों, मैं जानता हूँ। मैम दीदी जी, सुबह उठते ही व्हाट्सएप मत चलाया करो, फैमिली ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग बेबी आ जाता है ना सुबह उठते ही, मुझे पता है। तुम्हारे पास किसका गुड मॉर्निंग आता है सबसे पहले?
1: एक्चुअली मेरी फैमिली का ही आता है।
0: ये लो भाई, आजकल ना जमाना बड़ा डिजिटल हो गया, फैमिली के साथ बैठे हैं फिर भी ऑनलाइन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं।
1: हाँ, नहीं मेरी हाँ,
0: आपकी शादी हो गई तो बात अलग है। जी हाँ, वो तो फिर चलो समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स है ना, इसमें जो लोग खेलते हैं गुड मॉर्निंग, हमको भी कभी कभी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों खैर, जितनी मजे की चीज है ना सोशल मीडिया, उतनी घातक और खतरनाक भी है। क्यों कुमकुम? क्योंकि
1: हाँ,
0: मुझे लगता है कि आज हम जो जी रहे हैं वो एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई है, बहुत कन्वीनियंट हो गई है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्क भी बढ़ गया है। डिजिटल स्कैम्स लगातार हो रहे हैं, हम इन पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, चीजें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर सावधानी हम नहीं रखेंगे तो चीजें खराब भी हो सकती हैं।
1: हाँ, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ।
0: हाँ प्लीज।
1: जैसे कि डेटिंग एप्स हैं।
0: हाँ अरे वाह, बताओ बताओ।
1: डेटिंग एप्स पे जो गर्ल्स अपने पार्टनर्स ढूंढ रही होती हैं, कई बार उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है, या बॉयज के साथ भी हो जाता है।
0: ट्रू ट्रू, आजकल तो लड़के लड़कियां बन के घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पे आईडी बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, और आपको मैसेज करेंगे ये वो। इनफैक्ट सबसे मजे की बात तो ये है कि आजकल आप ही के दोस्त के नाम की आईडी बना के आपसे पैसे लूट रहे होते हैं लोग।
1: जी राइट,
0: ये भी बहुत हो रहा होता है। कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा?
1: मेरे साथ तो नहीं, बट मेरी फ्रेंड के साथ हो चुका है, क्योंकि उसके साथ तो मैंने ही करा था।
0: अयो रामा भाई, सबसे बड़ी यहाँ पर साइबर क्राइम बैठी हुई है, क्या कह रहे हो?
1: बट वो एक प्रैंक था।
0: अच्छा प्रैंक था, बट यार ऐसे प्रैंक मत किया करो, दिक्कत हो जाती है। वेल, इसे जोक सपाट दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, और अगर हम बदलेंगे तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो समाज अपने आप बदलेगा। और आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी कि खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो तुम क्या मानती हो कुमकुम, ऑनलाइन जितनी सारी चीजें आजकल हमें मिल रही हैं, इसमें क्या रिस्क भी है?
1: जी हाँ, अगर हम अपनी सारी चीजें ही सोशल कर देंगे तो सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगे, और जिससे हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
0: और लोग करते हैं यार
1: जी,
0: अगर लोग चाय भी पी रहे हैं उसकी फोटो, थोड़ी देर बाद सैंडविच खा रहे हैं उसकी फोटो, कहीं जा रहे हैं उसकी फोटो, मैं गाइस यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ।
1: एक्चुअली लोकेशन इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ डालते हैं कि लोकेशन के साथ कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं,
0: और जबकि वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है।
1: जी, आप पैसे निकाल लें एटीएम से, तब आप ऑनलाइन है, लाइव आ रहे हैं, ये सारी चीजें गलत है।
0: गॉट इट, बिल्कुल सही कहा इसने। और श्रोताओं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आज हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद ही शेयर कर देते हैं, जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि लोकेशन। एग्जैक्टली, फोन नंबर भी हम कई बार डाल देते हैं ना जब हम आईडी बना रहे होते हैं। आजकल तो खैर लोग कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो अपना आधार कार्ड भी डाल देते हैं भाई, जबकि वो नहीं डालना होता है, दिस इज फुल ऑफ प्राइवेसी, बट क्या ही कर सकते हैं। देखिए हमारा डेली रूटीन है, मानते हैं, एक तो आदत भी हो गई है कहीं ना कहीं कुमकुम इस चीज की ना, हमें कि उठते ही हर चीज शेयर करनी है, हर चीज को दिखाना है,
1: सोशल मीडिया का कीड़ा बनना हो गया है एक तरह से।
0: करेक्ट करेक्ट, मतलब पूरे आदि बन चुके हैं हम
1: जी।
0: अगर एक दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो पता नहीं लोग क्या हाल होगा,
1: आधी दुनिया रुक जाएगी।
0: सच बोल रही है यार, ये तो मुझे भी लगता है। तो दोस्तों यहीं से शुरू होता है खतरा, यानी कि हैकर्स या फिर फ्रॉड जिन्हें हम कहते हैं। और आज छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, और आज का हमारा टॉपिक हमने आपको बता ही दिया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, सोशल मीडिया सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, कैसे आप बच सकते हैं सोशल फ्रॉड से, इस पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, सोच बदलो प्रोग्राम के अंतर्गत आपके साथ तमाम बातें साझा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौट कर आ रहे हैं मैं और कुमकुम।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या
2: जी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद, कॉल 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
6: कॉल 8826213131।
0: हाँ जी दोस्तों, कैसे हाल? कुछ भी अगर आपने चीजों को सही से मैनेज नहीं किया तो बिल्कुल कल का कुछ पता नहीं चलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बताता हूँ अभी आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी का खुली बात के साथ स्वागत है जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 FM, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, सोशल मीडिया सिक्योरिटी। बहुत जरूरी है आजकल, जहां सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर कोई इस्तेमाल करता है। इस सोशल मीडिया में थोड़ी थोड़ी सावधानी भी बहुत जरूरी है, थोड़ी नहीं पूरी सावधानी बहुत जरूरी है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। तो मेरे साथ दे रही है कुमकुम जी। कुमकुम, आपको कैसे लगा ये गाना और आप क्या कहना चाहेंगी इस गाने के बारे में?
7: ये गाना तो बहुत अच्छा था और मैं इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी हाँ खुद को आप ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में भी और आगे बताएंगे। इतने हम आनंद जी से जानते हैं, क्या क्या बोलना चाहिए?
0: देखो यार, मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए सोशल मीडिया पे ना जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अक्सर अवॉइड करनी चाहिए, और ये गलतियां हम डेली करते हैं, जैसे कि हम कोई भी ऐसा नॉन लिंक हमारे पास आता है इंस्टा या फेसबुक पे, हम तुरंत क्लिक कर देते हैं। कई बार व्हाट्सएप पे आता है, हम तुरंत क्लिक कर लेते हैं, और ये लिंक पे क्लिक करना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। दूसरा, तुम्हें भी पता होगा, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास 2 मिनट में आती है, ऐसे ऐसे लोगों की आती है जिनको हम जानते भी नहीं है और कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और एक और बात, कई बारी होता है ना कि हम अपना पासवर्ड बहुत कमजोर बनाते हैं, कई बारी अपना फोन नंबर रख लेते हैं, कई बारी 1, 2, 3, 4, 5 रख लेते हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, लेकिन ये पासवर्ड हैक

0: बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम हो सकता है सोशल मीडिया वाला। दूसरी बात सबसे अहम जो आपको याद रखनी है, किसी को भी अपना ओटीपी नहीं बताना है, ये तो आप भी जानती हैं।
1: शेयर नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे ओटीपी को लेकर?
1: ओटीपी को लेकर मैं शेयर करना चाहूंगी कुछ बातें, जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, हमारी सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स के ऐप्स के जो भी होते हैं उसका ओटीपी आता है, जो हम कभी कभी दोस्तों में अपनी आईडी बताने के चक्कर में शेयर कर देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। ओटीपी तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों याद रखिए, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड नहीं होता, ओनली टू पर्सन, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कुमकुम ने, जो पासवर्ड है ये सिर्फ आपके लिए है, आप ही का बनाया हुआ है और आप इसका सही इस्तेमाल करें और हर किसी के साथ अपनी पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी साझा ना करें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं नहीं जाएंगे, सुनते रहेंगे कुमकुम और आनंद को। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया सुरक्षा की, क्योंकि आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन दुनिया में बीतता है। सोशल मीडिया आखिर क्या सच में हमारे लिए जितना लाभदायक है क्या उतना खतरनाक भी है? तो चलिए इस पर बात करते हैं। श्रोताओं, आज हम फोटो वीडियो शेयर करते हैं, अपनी लोकेशन बताते हैं, परिवार और दोस्तों से जुड़ते रहते हैं, निजी विचार और जानकारी पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपकी पोस्ट कौन कौन देख रहा है और उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर ज्यादा जानकारी साझा करना आपको ठगी, पहचान की चोरी और ब्लैकमेल का शिकार भी बना सकता है। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि एक पोस्ट कई मुसीबतें लेकर आ सकता है। रोहन, दोस्तों मैं परिवार के साथ 7 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ, ये रहा होटल का नाम और पूरा ट्रेवल प्लान। रोहन, तुम्हारे अकाउंट से मैसेज आया है, तुम फंस गए हो या पैसे चाहिए? क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं भेजा, किसी ठग ने रोहन की पोस्ट से जानकारी लेकर उसके नाम से नकली प्रोफाइल बना ली, उसके दोस्त को मैसेज भेज दिया, मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत पैसे भेज दो। कुछ दोस्तों ने पैसे भी भेज दिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ खतरे ऐसे हैं जो आम हैं, जैसे कि फर्जी प्रोफाइल, पहचान की चोरी, फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेल या मार्फिंग, फ्रॉड लिंक और गिफ्ट स्कैम, लोन या इनाम का लालच। कई बार ठग आपकी प्रोफाइल से आपका जन्मदिन, आपका मोबाइल नंबर, आपके परिवार की जानकारी इकट्ठा करके आपके पासवर्ड का अंदाजा भी लगा लेता है। अगर आपको कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं तो आप जरूर सतर्क रहिए। अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, आप इनाम जीत गए हैं जैसा मैसेज आना, बैंक या लोन का ऑफर सोशल मीडिया से, किसी करीबी के नाम से अचानक पैसे मांगना, संदिग्ध लिंक। याद रखिए, हर प्रोफाइल असली नहीं होती। सोशल मीडिया को आखिर सुरक्षित कैसे रखें? आपकी प्रोफाइल प्राइवेट होनी चाहिए, मजबूत और अलग पासवर्ड होना चाहिए, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू होना चाहिए, अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अपनी लोकेशन सार्वजनिक रूप से पोस्ट न करें, निजी दस्तावेज या पहचान संबंधी जानकारी साझा न करें। महिलाओं और छात्रों को मैं कुछ खास सलाह देना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर अक्सर महिलाओं को फर्जी प्रोफाइल से परेशान किया जाता है, छात्रों को फर्जी स्कॉलरशिप या जॉब ऑफर दिया जाता है, इसलिए अनजान लोगों से चैटिंग में सावधानी रखें, फोटो और वीडियो सोच समझ कर शेयर करें, ब्लैकमेल होने पर चुप न रहें। अगर सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया हो तो आपका अकाउंट हैक हो जाए, कोई फर्जी प्रोफाइल बन जाए, ब्लैकमेल किया जाए, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और आप अपनी शिकायत www.cybercrime.government.in पर भी जाकर कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा की अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े 7 ऐसे नियम मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। कम से कम निजी जानकारी शेयर करें, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, मजबूत पासवर्ड रखें, संदिग्ध लिंक से बचें, लोकेशन सार्वजनिक ना करें, शक हो तो तुरंत उसे रिपोर्ट कर दें। श्रोताओं, सोशल मीडिया हमें जोड़ता है लेकिन सावधानी के बिना नुकसान भी पहुंचा सकता है। लाइक और शेयर से पहले एक बार जरूर सोचें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया FM मुरादाबाद 89.6 MHz से। कार्यक्रम से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानी जरूर बरतें। जैसा कि बताया गया कि हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। अगर आपने अपना पासवर्ड कमजोर बनाया है तो ऐसा करें कि उस पासवर्ड को स्ट्रांग बनाकर रखें। अपनी प्रोफाइल किसी के साथ साझा ना करें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं अपनी फोटो, तो कोशिश करें आप लोकेशन वहां पर ना साझा करें। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है जिसमें पैसे की लेन देन के बारे में बात हो रही है तो उसे इग्नोर करें। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी उकसाते हैं, तो उन चीजों से बचकर रहें। जितनी सावधानी आप बरतेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो एक बार जरूर सोचें कि शायद ये सोशल मीडिया आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, तो उतना ही इस्तेमाल करें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
0: तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो जानकारी सुनी इस पे आप जरूर अमल करेंगे, गौर करेंगे और इन छोटे छोटे बिंदुओं को अपने जीवन में आप जरूर उतारेंगे। और भैया, ईच वन टू खींच वन, आप भी अप्लाई करें, औरों को भी करवाएं। तो ये छोटी सी जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है सोच बदलो, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम यहीं पर अटके रह जाएंगे, क्यों कुमकुम? तो इसीलिए हमारा मुद्दा भी यही है कि सोच बदलना जरूरी है, और सोच बदलने के साथ साथ छोटी छोटी चीजों का बदलना जरूरी है, डेली रूटीन की हैबिट को बदलना जरूरी है। अच्छा, मान लो आज हम सोशल मीडिया सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जहां दिन भर में तमाम 50 फोटो हम शेयर करते हैं, 100 लाइक्स हमारे पे आती है, नहीं आती है तो हम बड़े डिप्रेशन में हो जाते हैं, यार मेरी पड़ोसन की फोटो पे 50 लाइक आए हैं, मेरे पे 2 ही आए हैं, ये सोच के भी लोग तनाव में चले जाते हैं।
1: जी हाँ, बहुत सारी लेडीज भी ऐसी होती है, बहुत सारे पड़ोसी भी ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ये उठ रहा है और हम नहीं उठ रहे। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ऐसा सोच के। अच्छा, मान लीजिए अगर आनंद जी आपको वो इंस्टाग्राम पे कोई लिंक सेंड करे कि हाँ आपने 50 लाख की लॉटरी जीती है और आपका भाग्य खुल चुका है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे?
0: देखो यार, अगर 50 लाख की लॉटरी या 25 लाख की लॉटरी का मेरे को कोई मैसेज आता है और वो कहेगा कि पहले लिंक क्लिक करो, तो मैं एक्साइटमेंट तो सबको होगी, मैं जरूर सोचूंगा लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो 50 लाख का मुझे लालच दिया जा रहा हो।
1: जी हाँ, ऐसा मेरे भाई के साथ भी हो चुका है।
0: अच्छा?
1: तो बोला था
0: मतलब?
1: कि आपकी लॉटरी में बाइक निकली है।
0: कौन सी वाली थी, स्प्लेंडर या कौन सी?
1: सुपर बाइक।
0: सुपर बाइक या KTM बाइक?
1: नहीं, सुपर बाइक थी वो, एक जो कि यहाँ नहीं था, इंडिया से बाहर का था। उसमें बोला गया था कि आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आके ले लो और 15,000 रुपए पहले जमा कर दो।
0: अरे बाप रे, तो मतलब ये तो धड़ाधड़ वाला धोखाधड़ी था यार। तो मतलब किया तो नहीं भाई ने ऐसा?
1: नहीं, भैया ने बोला कि आप हमारे पहले बाइक खुद लेके आओ, अगर आप हैंड टू हैंड देंगे तब हम आपको दे देंगे।
0: ओके, तो ये तो चलिए अच्छा बोला भैया ने, थैंक गॉड। तो इससे कहीं ना कहीं आप बच गए।
1: जी,
0: है ना दोस्तों, ऐसे आए दिन हमारे साथ भी होते हैं। और जैसे इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपके इंस्टाग्राम पे रैंडमली कोई मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन आप जीत चुके हैं 10 लाख रुपए का लॉटरी पैकेज, इस पे लिंक पे क्लिक करें एंड अपने अकाउंट में जल्दी से विड्रॉल करें पेमेंट, तो आपको ना ये बेवकूफी नहीं करनी है, आपको सावधान और सतर्कता के साथ, स्मार्टनेस के साथ काम करना है, आपने उस लिंक को इग्नोर करना है। रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पे आया था रिक्वेस्ट में, बट मैंने उसको डिलीट किया और मैंने एक दो लोगों से पूछा भी, क्योंकि कभी कभी होता है हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हमने कोई लॉटरी खेली नहीं है तो हम जीतेंगे कहां से? सबसे बड़ा क्वेश्चन। दूसरी बात यह है, अगर आपने जाने जाने में ऐसे लिंक पे क्लिक कर भी दिया तो बॉस आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा, जो आपकी मेहनत की कमाई है वो भी कैसे लूट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहते हैं ना दोस्तों, लालच से बचिए और समझदारी को अपनाइए, बहुत जरूरी है। फिलहाल FM मुरादाबाद 89.6 FM की ओर से, ये आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो जो आपको कहता है सोच बदलिए, अपने इरादों को बदलिए और थोड़ी सी नई सोच को अपनाइए, है ना, स्मार्ट सोच को अपनाइए। आप सिर्फ पुरानी चीजों पे नहीं रहना है, स्मार्ट सोच का मतलब यही है कि जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा स्मार्ट बनाइए। जैसे डिजिटल हम सोचते हैं ना कि यार सब चीजें आसान हो जाए, वैसे थोड़ा सोच को भी आसान बनाइए। बहुत ज्यादा अगर थका दोगे तो कहीं ना कहीं जाने जाने में लिंक पे क्लिक कर दोगे, और लिंक पे क्लिक किया तो लॉस हो जाएगा। क्यों?
1: जी राइट, आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है जिससे कि आप खो ना जाए और लिंक पे क्लिक ना कर जाए।
0: फिलहाल तो हम दोनों खोने वाले हैं अभी एक खूबसूरत गाने में, उसके बाद हम दोनों लेंगे जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ और अहम और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, तो एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आते हैं मैं और कुमकुम।

0: लोग बाहर जा रहे थे शादी सेलिब्रेट करने, बट उनका एक बेटा जो भाई साहब सोशल मीडिया पे हर एक अपडेट डालता है, मतलब छोटी छोटी अपडेट, अब ये अपडेट उनके ऊपर भारी पड़ गई। उन्होंने सारी लोकेशन वगैरह सब डाल दी कि हम दो दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, ये वो। अब उसके बाद जो उनके हेटर्स हैं, या यू कह सकते हैं जो मौके की फिराक में थे, उन्हें मौका मिला, घर में जाके चोरी कर ली। अब उससे बहुत बड़ा लॉस हो गया परिवार को जब ये पता लगा, तो सिर्फ किस वजह से हुआ, सोशल मीडिया की वजह से। तो सोशल मीडिया जितना अच्छा है ना गाइस, जितना आपको हैपनिंग और प्यारा साउंड करते हुए नजर आता है, जितने हम खुश दिखाई देते हैं, एक्चुअल में उतने होते नहीं है। वेरी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको लिटरली बताऊं कुमकुम, कुछ चीजें तो सोशल मीडिया पे सिर्फ दिखावा चल रहा है, है ना?
1: आजकल दिखावे की दुनिया है।
0: है, आई नो दैट, बट इस दिखावे की दुनिया में जो फेक चीजें उनसे भी बचना है यार, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। और चलते चलते मैं और कुमकुम जो है बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी आसान बनाता है, लेकिन छोटी सी गलती हमें बड़ी परेशानी में भी डाल सकता है। एग्जैक्टली, तो बस याद रखिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, जो आप कर रहे हैं अच्छे से करिए, लेकिन हर चीज को अपलोड मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी फोटो का कौन गलत इस्तेमाल कर ले। AI का जमाना है आजकल, तो वैसे भी गर्दन किसी और की होती है, बॉडी किसी और की होती है, तो उसका शिकार आप ना हो, हम ना हो, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ी सतर्कता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, फिर और मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तब तक के लिए मैं RJ आनंद लेता हूँ आपसे इजाजत, अनुमति, और कुमकुम आप भी चलो बाय करो।
1: बाय,
0: बस भी इतना ही बोलेंगे, इसको ज्यादा थोड़ा सा जो है मतलब सीखने की जरूरत है, अभी उसको ज्यादा आ नहीं रहा है, इसने प्यार से बोला बाय। चलो ठीक है, चलो मैं अपना थैला उठाता हूँ, लाओ, अरे मेरा ये फेस वॉश तो रख दो, अरे बाबा मेरी सनस्क्रीन भी रखो इसमें। एक तो गाइस धूप बहुत हो रही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप घर से बाहर जा रहे हैं ना, तो अपने थैले के अंदर सनस्क्रीन और ये काला चश्मा, मेरा चश्मा कहाँ गया यार, कुमकुम मेरा चश्मा है क्या? अच्छा ये, हाँ, तो गाइस आप लोग भी अपना चश्मा, पानी की बॉटल और ये सनस्क्रीन सब अपने साथ रखिए, और ख्याल रखिए, और डिजिटली थोड़ा सा एक्टिव रहिए, बट सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ।
1: अच्छा, आपके हाथ में,
0: क्या बात है, बिल्कुल मेरे हाथ में मेरा थैला दो, चलो बाय गाइस।
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: टायर लो सोना जीतो,
8: क्या?
7: जी हाँ,
9: चावला टायर
7: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए।
9: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। FM मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हम आपके दोस्त और दोस्तों आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सुनीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कह रहे कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्भ से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओ को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाता। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीडियर्स पर खुलकर कौन बात करता है, लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स को दी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
2: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया,
2: यही तो होता है। और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें, हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती हैं। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करे?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
1: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
2: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
0: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो, उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है, बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है, यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
0: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है, अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
2: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
1: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए। वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
2: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
0: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
2: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देही की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
0: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शा पनप ही नहीं सकती।
2: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
2: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करता है।

0: ही है और भरोसा तभी बनता है जब संवाद संपूर्ण हो।
1: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की मारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
2: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और सामुदायिक का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सर, इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
1: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
2: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुँचे।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई है जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ है। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले सब घबरा जाती थी।
2: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों आज का शो बहुत ही खास है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों आज हम अपनी धरती की आवाज़ सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आस पास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए आज इस यात्रा में

जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

0: तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं, और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं, और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार
1: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त RJ खुशी। और आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊं, पोषण शब्द सुनते तो हैं, हम समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया है मतलब पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया, और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत, भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद RJ खुशी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है, और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
1: वाह, क्या बात कही आपने। लेकिन सच बताऊं, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
2: यही तो पोषण की असली तस्वीर है। और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
1: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
2: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है, शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
1: तो सबसे आसान भाषा में बताइए, पोषण आखिर होता क्या है?
2: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
1: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
2: देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
1: मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा?
2: बिल्कुल सही कहा आपने, स्वास्थ्य आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
1: गाँव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
2: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है, हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
1: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
2: कार्बोहाइड्रेट से, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
1: और प्रोटीन?
2: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है, दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है।
1: बसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं?
2: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
1: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
2: बिल्कुल, इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस फूड, प्रोसेस भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए, ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
1: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
2: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए, इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
1: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
2: जीवन के पहले 1000 दिन, गर्भ अवस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
1: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
2: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
1: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
2: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
1: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही है?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है, ऐसी मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर।
1: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
2: जैसे कि आपने सुना होगा 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिंगनापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
1: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
2: जी बिल्कुल सही सुना आपने, जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है। इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती है।
1: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
2: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
1: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
2: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्चे की आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
1: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
2: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
1: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
2: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
1: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मानो कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए, बस यही काफी है।
1: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
2: बिल्कुल। आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी तो कभी सिर्फ चावल। हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि वह ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
1: और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
2: इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
1: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
2: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई। शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी, जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
1: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
2: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है। लेकिन गर्भ व्यवस्था के चौथे महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वे बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर अनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
1: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
2: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
1: क्या आरती ने सलाह मानी?
2: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
1: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा।
2: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
1: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
2: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीनों बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
1: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
2: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वो कहती है मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
1: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
2: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
1: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
2: सीख तो बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
1: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
2: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
1: धन्यवाद सेहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
2: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
1: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
2: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
1: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जांच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
1: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
4: नमस्कार दोस्तों,
5: भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
6: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
7: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
6: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
5: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के

0: में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब युटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ। प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz और चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसानी पर चर्चा, और मैं हूं आपके साथ आपका आशीष। दोस्तों, धरती माँ की गोद में पसीना बहाकर जो अन्न उगाता है वही हमारे देश का असली हीरो है, हमारा किसान। हम बात करेंगे खेती से जुड़ी नई तकनीकों की, मौसम की, फसलों की देखभाल की, सरकारी योजनाओं की और उन छोटी छोटी बातों की जो खेती को आसान और फायदेमंद बना सकती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी। पहले जहां सिर्फ परंपरागत खेती होती थी तो वहीं अब किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती और मिट्टी परीक्षण जैसी चीजें किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। अगर किसान भाई समय समय पर मिट्टी की जांच करवाएं तो उन्हें ये पता चलता है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। इससे खाद का सही इस्तेमाल होता है और खर्च भी कम आता है। और जैविक खेती, आज बाजार में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी अच्छी सेहत के साथ अच्छी कमाई भी। जहां तक बात खेती में बीज और बुआई की है तो मुनाफे की फसल खुद उग जाएगी अगर आपका बीज सही तरीके से बोया गया है। कई बार जानकारी ना होने की वजह से किसान भाई उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते जो खासकर उनके लिए बनाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना है। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं ली है तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या जन सेवा केंद्र पर जरूर संपर्क करें। दोस्तों, जानकारी ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है।
5: तो श्रोताओं, बात खेती किसानी की हो रही है, हम आपको तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो भी बात सुन ली जाए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने देश के अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया था कि कैसे इस देश का अन्नदाता इन योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं।
6: अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 4,00,000 करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए दो योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, ये KCC की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले इन सबको खूब लाभ उठा रहा। केसीसी से इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की, आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने हैं। हमारी सरकार ने खाद्य तेलों पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ाएगा।
5: तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री का क्या कहना है। श्रोताओं, खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है, ये हम सभी जानते हैं। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा, लेकिन सही तैयारी से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बीज हमेशा प्रमाणित खरीदें। फसल में रोग दिखाई दे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें और पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आजकल मौसम की जानकारी मोबाइल पर भी आसानी से मिल जाती है। और तो और, तकनीक का फायदा उठाइए और खेती को मजबूत बनाइए। दोस्तों, एक किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो पूरे देश की उम्मीद जगाता है, वो पूरे देश की उम्मीद उगाता है। इसीलिए कहता हूँ, अब समय है हमारे श्रोताओं की बात सुनने का। अब देखिए, बहुत सारे लोग हमें अलग अलग जगहों से प्रश्न करते हैं। रामपुर से स्वरूप जी कहते हैं, पानी की कमी की वजह से खेती मुश्किल हो रही है। जबकि हापुड़ से गीता देवी कहती हैं, महिलाएं भी अब खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ तक कि मुरादाबाद से किशन कहते हैं कि खेती तो बहुत अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, खेती सिर्फ मेहनत नहीं, परिवार और समाज की ताकत भी है। आप हमें बता सकते हैं क्या आपके गांव में खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे। किसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है। और यही हौसला भारत की असली ताकत है, क्योंकि वो अन्नदाता है। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। धरती माँ हर पसीने की कीमत जरूर चुकाती है। जब खेत हरे भरे होते हैं, तभी तो देश खुशहाल होता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे आशीष, और आप सुन रहे हैं खेती किसानी पर चर्चा। अपने खेतों से प्यार कीजिए, नई जानकारी अपनाइए और मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। मिट्टी की खुशबू मेहनत की निशानी, देश की शान है अपनी किसानी।
4: और इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां पाने के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। और जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको अपने देश की खेती किसानी की परिपाटी और हरे भरे खेतों से जुड़े हुए इस गीत के साथ। नमस्कार।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजरीना। और आज की बात थोड़ी अलग है, क्योंकि आज हम जिस बीमारी की बात करने जा रहे हैं वो शोर नहीं करती, कोई चेतावनी नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। और खास बात ये है कि हर साल 17 मई को पूरी दुनिया में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, ताकि हम सब इस खामोश खतरे को पहचान सके।
1: धन्यवाद आरजे रीना, और हमारे सभी श्रोताओं का भी तहे दिल से धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, हाइपोटेंशन को साइलेंट किलर ही क्यों नहीं कहा जाता। दरअसल यह बीमारी बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर के अंदर अपना असर दिखाती रहती है। व्यक्ति को ना दर्द होता है, ना कोई खास तकलीफ महसूस होती है, लेकिन अंदर ही अंदर रक्तचाप बढ़ता रहता है और धीरे धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुँचाने लगता है। और जब तक हमें इसका एहसास होता है, तब तक कई बार स्थिति गंभीर हो चुकी होती है।
0: मतलब आदमी बिल्कुल ठीक महसूस करता है, रोजमर्रा का काम करता है, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके बहुत डराने वाली बात है सेहतिया जी।
1: बिल्कुल, यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। आज दुनिया भर में लगभग 1.4 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित हैं, लेकिन इनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें यह पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और जो लोग जानते भी हैं, उनमें से भी बहुत कम लोग इसे सही तरीके से नियंत्रण कर पाते हैं। इसका कारण है नियमित जांच का अभाव, दवाइयों को बीच में छोड़ देना और जीवन शैली में जरूरी बदलाव ना करना।
0: सेहतिया जी, अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में स्थिति कैसी है? क्या यहाँ भी हालत इतनी ही गंभीर है या उससे भी ज्यादा चिंताजनक है?
1: भारत में भी स्थिति काफी चिंताजनक है आर्जरीना। यहाँ हर तीसरा वासी किसी न किसी रूप में हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित है। पहले यह माना जाता था कि यह बीमारी केवल शहरों या अमीर लोगों तक सीमित है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांव में भी यह तेजी से फैल रहा है। आज किसान, मजदूर, दुकानदार, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसका कारण है बदलती जीवन शैली, खान पान में बदलाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता तनाव।
0: तो मतलब अब यह सिर्फ उम्र या पैसे से जुड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनती जा रही है।
1: बिल्कुल सही समझा आपने आरजे रीना। अब यह बीमारी सीधे तौर पर हमारी जीवन शैली से जुड़ चुकी है, जैसे ज्यादा नमक सेवन करना, पैकेट वाले और प्रोसेस्ड खाने की आदत, दिन भर बैठ कर काम करना, शारीरिक मेहनत कम होना, तनाव लेना और पर्याप्त नींद ना लेना, ये सभी कारण हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए इसे लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है।
0: आपने इसे साइलेंट किलर कहा, जरा हमारे श्रोताओं को और अच्छे से समझाइए कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब लक्षण ही नहीं होते तो लोग इसे गंभीरता से कैसे ले?
1: देखिए आरजे रीना, जब ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा बना रहता है तो यह धीरे धीरे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। दिल पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दिमाग पर भी असर पड़ता है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। किडनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह सब कुछ धीरे धीरे और बिना किसी चेतावनी के होता रहता है, इसीलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और जब तक गंभीर लक्षण सामने आते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है।
0: मतलब खतरा चुपचाप बढ़ता है और इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त रहता है कि उसे इसका अंदाजा ही नहीं होता। यह सोचकर ही डर लगता है कि एक ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती, वही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इसीलिए शायद आज की इस बातचीत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें जागरूक होना होगा और समय रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। तो इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है सेहतिया भैया? अगर कोई व्यक्ति यह सोच रहा हो कि वह इस साइलेंट किलर से खुद को कैसे बचा सकता है, तो उसे सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
1: देखिए आरजे रीना, सबसे पहले जरूरी कदम यह है कि नियमित ब्लड प्रेशर की जांच कराना। यह एक बहुत ही सरल है लेकिन बेहद ही प्रभावी तरीका है। हर व्यक्ति को, चाहे वह बिल्कुल स्वस्थ क्यों ना हो और क्यों ना महसूस करता हो, अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक कराना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, यह बीमारी बिना लक्षण के भी हो सकती है। इसीलिए केवल मैं ठीक हूँ महसूस करना काफी नहीं है, जानकारी ही बचाव का पहला कदम है।
0: और ये जांच कहाँ करवाई जा सकती है? क्योंकि कई लोग यह सोचते हैं कि इसके लिए बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा या खर्चा ज्यादा होगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है आरजे रीना। आजकल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और विभिन्न स्वास्थ्य कैंपों में ब्लड प्रेशर की जांच बहुत ही आसानी से और कई बार मुफ्त में भी उपलब्ध होती है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता, A&M और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी भी गांव-गांव जाकर यह जाँच करते हैं। कई जगहों पर तो छोटे क्लिनिक या मेडिकल स्टोर पर भी मशीन उपलब्ध होती है। मतलब अब जाँच करवाना मुश्किल नहीं, बस हमें खुद की पहल करनी होगी।
0: तो सेहतिया जी, अगर कोई व्यक्ति सच में अपने आप को इस बीमारी से बचाना चाहता है, तो उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या क्या बदलाव करने चाहिए?
1: बहुत कठिन नहीं है आरजे रीना, लेकिन जरूरी यह है कि हम नियमित रूप से अपनाएं। सबसे पहले नमक का सेवन हमें कम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक सीधा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके साथ ही पैकेट वाले और प्रीपेड खाने को कम कर देना चाहिए। हम अपने भोजन में ताजे फल और हरी सब्जियों को शामिल करें। रोजाना थोड़ा बहुत चलना फिरना, जैसे सुबह या शाम की सैर करना, बहुत फायदेमंद होता है। तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह ध्यान हो, मेडिटेशन हो, या परिवार के साथ समय बिताना हो, या कोई अपना एक पसंदीदा काम जरूर करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, तंबाकू और शराब से बेहद ही दूरी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही ब्लड प्रेशर को बिगाड़ते हैं।
0: मतलब छोटी छोटी आदतें जो हम रोज करते हैं, वही हमारे स्वास्थ्य पर इतना बड़ा असर डालती हैं।
1: बिल्कुल, यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर दवा देता है, तो उसे नियमित रूप से लेना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग यह गलती करते हैं, जैसे ही उन्हें थोड़ा सा आराम महसूस होता है, वो ना दवा लेते हैं और ना ही दवा लेना चाहते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का इलाज एक लंबी प्रक्रिया है, इसे लगातार नियंत्रण रखना पड़ता है। दवा बीच में छोड़ देना स्थिति और खराब हो सकती है।
0: अगर ब्लड प्रेशर नियंत्रण में ना रहे, तो क्या शरीर कुछ संकेत देता है? क्या ऐसे में लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए?
1: बिल्कुल जी हाँ आरजे रीना, जब स्थिति गंभीर हो जाती है तो कुछ संकेत सामने आ सकते हैं, जैसे अचानक शरीर के एक हिस्से में कमजोरी महसूस होना, बहुत तेज सर दर्द होना, सीने में दर्द होना या भारीपन महसूस होना, या जैसे सांस का फूलना या आंखों के सामने धुंधला दिखना। ये सभी संकेत खतरनाक

0: लगभग 45 साल है। मेहनती किसान दिन भर खेतों में काम करते थे, देखने में बिल्कुल स्वस्थ मजबूत शरीर और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उन्हें कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई थी, इसीलिए वो खुद को पूरी तरह ठीक मानते थे। गांव में जब भी स्वास्थ्य कैंप लगता था तो उन्हें लोग कहते थे, राम प्रसाद जी तुम भी चलो जांच करवा लो, लेकिन वो हंसकर टाल देते, अरे मुझे क्या होगा, मैं तो रोज ही मेहनत करता हूँ, मुझे कैसे बीमारी हो सकती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अचानक खेत में काम करते करते उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर पड़े। परिवार वाले घबरा गए, तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जांच की और जो बात सामने आई उसने सबका दिल हिला दिया। राम प्रसाद का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, इतना ज्यादा कि उनके दिमाग की नसों पर असर पड़ चुका था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि समस्या अचानक नहीं हुई है, ये कई सालों से धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन कभी जांच ना कराने की वजह से पता ही नहीं चला। परिवार के लिए ये बेहद ही दुखद झट था। उनकी पत्नी रोते हुए कह रही थी, अगर हम पहले जांच करवा लेते तो शायद ये दिन देखना ही ना पड़ता। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला, हालत धीरे धीरे सुधरी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में बहुत समय लगा। इस घटना के बाद राम प्रसाद की जिंदगी बदल गई। आज वही राम प्रसाद गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते हैं, भाई गलती मत करना जो मैंने करी है, बीमारी आने का इंतजार मत करो, समय पर जांच कराओ। वो अब हर महीने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, दवा लेते हैं और अपने खाने पीने का खास ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वो अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे गांव की भी चिंता करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम खुद को जितना मजबूत समझते हैं उतने होते नहीं हैं, और एक छोटी सी लापरवाही हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। आरजे रीना
1: सिहतिया जी, आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कोई छोटी या साधारण समस्या नहीं है। ये चुपचाप शरीर के अंदर अपना असर दिखाता रहता है और जब तक हमें इसका पता चलता है तब तक कई बार नुकसान काफी बढ़ चुका होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम समय रहते जागरूक हो जाए, अपने शरीर के संकेतों को समझ सके और छोटी छोटी सावधानियां अपनाए तो इस खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे रीना, मैं भी हमारे श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य को हल्के में ना लें, नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें, क्योंकि यही सबसे पहला और जरूरी कदम है। अपने खाने में नमक की मात्रा कम कीजिए, ज्यादा तला भुना और पैकेट वाले खाने थोड़े कम कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों को शामिल कीजिए, चाहे वो रोज थोड़ी देर टहलना ही क्यों ना हो। अगर डॉक्टर ने दवा दी है उसे बीच में कभी ना छोड़ें। कई बार हमें लगता है कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन यही बीमारी ऐसी है जिसे लगातार नियंत्रण रखना पड़ता है।
1: साथियों, आज का हमारा संदेश बहुत सीधा और बहुत जरूरी है। खामोश है ये बीमारी, पर असर इसका है भारी। अगर समय पर ध्यान न दिया तो पड़ सकती है जिंदगी पर ये भारी। इसीलिए आज ही संकल्प लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा अर्चिरीना। तो याद रखिए, स्वस्थ रहना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज की भी सुरक्षा है। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तो हम अपनों का और अपने परिवार का भी सुरक्षित ख्याल रखते हैं।
1: इसी के साथ हम अपना आज प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
1: महिला बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा, तो सेहत सही तो लाभ कहीं।
1: मैं आपकी दोस्त आरजे रीना और अब लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और नियमित जांच करवाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में सेहत सही लाभ कहीं, एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सब के लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आखिर वो बात क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला। मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे, इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के। इतना मुनाफा, कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं। पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह, ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रूपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ, निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, OTP, UPI पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें, जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें, शक हो तो नहीं कहना सीखें, ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है

0: इस संभावना साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है। तो राज फिलहाल इस शो से अभी के लिए अलविदा लेना चाहता है और जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहता है कि लालच बुरी बला है। अगर कहीं पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा 2 गुना 4 गुना इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इन्वेस्ट करने से पहले कृपया करके जांच कर लें कि क्या आप सही जगह निवेश कर रहे हैं या फिर नहीं। तो अभी के लिए लेता हूँ यहाँ से अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए FM मुरादाबाद। जल्दी मिलूंगा कुछ और ऐसी ही इम्पोर्टेंट बातों के साथ।
1: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर UKG तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।

जी नमस्ते, वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून। कैसे हाल चाल हैं आप सभी के? देखो भाई साहब, स्टूडियो की घड़ी में टाइम देख लो कितना हो रहा है। बाजी 3:13 नहीं हो रहे हैं, 14 मिनट हो रहे हैं। 14, हाँ जी, वेल कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6 एंड दिस इज फोन इन प्रोग्राम। 3 से 5 आपके बीच कुछ अच्छी बातें करने के लिए हम आ गए हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अगर आप कुछ भी सुनना चाहते हैं, कुछ अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है जी। 3 से 5 फोन लगाएंगे आप मुझे लगातार, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है, इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का। श्रोताओं, गर्मी तो हो ही रही है, इस गर्मी में बस इतना कहना चाहता हूँ कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहिए, डिहाइड्रेटेड रखिए बॉडी को, एंड जितना हो सकता है भाई साहब अवॉइड कीजिए इस धूप को। 12 से 4 तो हमारी गवर्नमेंट भी कहती है और मैं भी आपसे कह रहा हूँ रेडियो के माध्यम से। कोई अर्जेंट काम है तो आप प्लीज छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई हल्का कपड़ा जरूर अपने सर पे ढक के निकले या फिर आप कैप लगाकर भी निकल सकते हैं, और कोशिश करें अगर जरूरत ना पड़े तो बिल्कुल ना निकले। 3:15 का समय आनंद के साथ हैं आप। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में मेरी तो हो गई है एंट्री, अब बारी आपकी है। अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे फोन कर सकते हैं 9837896896। गुड आफ्टरनून।

0: का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को। प्रोग्राम का नाम है बिंदास बोल और यहाँ पर बातें जो भी होती है वो बिंदास होती है, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है बिंदास बोल। अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो इसको बिंदास तरीके से बोलना है। वक्त हो गया है स्टूडियो की घड़ी में 3:20 आनंद के साथ प्रोग्राम है, सुन रहे हैं आप बिंदास बोल। और प्रोग्राम में मैंने कहा था अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बिंदास बोल में कॉल लगा सकते हैं 9837896896 पर। और अभी हमारे इस कार्यक्रम के पहले श्रोता हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जरा उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं इस चिलचिलाती गर्मी में वो अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं और हमारे श्रोताओं से वो क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस ये जो गर्मी है, चिलचिलाती जो धूप है, जो ये बहुत ही तेजी के साथ गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में अपने जो है अपने शरीर का और अपना कैसे ख्याल रखते हैं हमारे श्रोता, खास करके इस गर्मी में। हेलो, नमस्कार।
1: भाई
0: जी कैसे हाल चाल है सर, अपने आपके मिजाज बताइए पहले तो।
1: अरे बहुत अच्छा हाल चाल है, आप बताइए आपके कैसे हाल चाल है।
0: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ जी, सब एकदम फर्स्ट क्लास हैं और आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बताइए अपने बारे में सर, कहाँ से फोन किया है।
1: सर मैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी बोल रहा हूँ।
0: जी जी इरशाद जी, बताइएगा और सब खैरियत है।
1: जी बहुत अच्छे है, और वैसे तो हर हफ्ते जो है खुशी जी शो को लेकर आती है बिंदास बोल शो को, लेकिन आज उनकी जगह आप इस शो में आए तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: जी जी सर, एक्चुअली क्या होता है ना, जब कभी कभी प्रोग्राम्स में तब्दीली हो जाती है या अनाउंसर चेंज हो जाते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट भी बदल जाता है प्रोग्राम का।
1: जी सर,
0: है ना। और बताइए सब खैरियत है घर परिवार में।
1: जी बिल्कुल सब खैरियत है, आप बताइए।
0: सब एकदम फर्स्ट क्लास है, गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम सुनने वालों को।
1: सर गर्मी में अपना जो जिन लोगों के फील्ड के काम है उनकी तो मजबूरियां हैं, उनको तो निकलना ही पड़ता है।
0: एब्सोल्युटली, अब हम भी निकल कर आए हैं भाई, हमें पता है इतनी गर्मी है क्योंकि ऑफिस आना और फिर जाना और तपती दोपहरी में भाई सच में बड़ी मुश्किल हो जाती है भाई साहब।
1: तो वो एक मजबूरी है, निकलना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन अगर ज्यादा लंबा सफर अगर बाइक का कर रहे हैं तो थोड़ा पेड़ के नीचे या कहीं पे भी कोई जगह ऐसी हो रुकने की तो वहां पर थोड़ा आराम कर ले, और कुछ देर बाद थोड़ा रुक कर, गर्मी में से हम चलकर आ रहे हैं तो एकदम पानी नहीं पिए और बिना जरूरत के धूप में ना निकले जाए।
0: बिल्कुल। और अगर निकले भी तो इरशाद जी मैं तो कहूंगा कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि कोई हल्का सा कपड़ा आप सर पे रख सकते हैं, कोई कैप लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: थोड़ा बहुत जो इस तरह के कुछ कपड़े आते हैं
0: बिल्कुल
1: लगाकर चले सर के ऊपर।
0: हाँ क्योंकि देखिए सर को बचाना जरूरी है, मेन जो धूप का असर होता है वो सर से ही होता है, ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है बॉडी में।
1: और अपने खाने पीने में जो है जैसे रायता वगैरह है या
0: ठंडे ठंडे पदार्थ का ज्यादा सेवन करना है, मतलब
1: इस तरह से जो तरल पदार्थ है, और अपने साथ में जो लोग फील्ड में रहते हैं वो अपने साथ में पानी की बोतल जरूर लेकर चले।
0: बिल्कुल। और पानी तो मुझे लगता है इरशाद जी जितना हो सकता है पीते रहना चाहिए, पानी पीना बहुत जरूरी है।
1: जी सर, थोड़ा थोड़ा अपनी जरूरत के हिसाब से पानी पीते रहें ज्यादा से ज्यादा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल सही कहा इरशाद जी आपने, बिल्कुल सही कहा। और बताइए इरशाद जी, तो अभी जो गर्मियां हैं वो लगभग अपनी चरण सीमा पे अब शुरू हो गई क्योंकि मई जून में सबसे ज्यादा गर्मी होती है।
1: सर वैसे तो ये इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन अब ये गर्मी बढ़ने लगी और इस वक्त भी बहुत तेज गर्म हवाएं चल रही है, और जो लोग शहर के बाहर जो आउट इलाके है वहां पर अगर वो बाइक से निकलना है तो उनके लिए ज्यादा दिक्कत और परेशानी,
0: थोड़ा सा परेशानियां हो जाती है। और आजकल मुरादाबाद में भी तमाम सारी सड़कों पे काम चल रहा है, जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे भी बड़ी दिक्कत हो जाती है।
1: सर जो ट्रैफिक जो बाहर रोड पर चलता है, बड़े ट्रैफिक हैं, बसें वगैरह इस तरह से ट्रक वगैरह, उनके जो धुआं वगैरह निकलता है फिर रोड की भी गर्मी, तो रोड पर उस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा इरशाद जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बताइए आज बिंदास बोल में क्या सुनेंगे आप, आपने तो बिंदास बोल ही दिया आपने दिल का हाल।
1: तो सर कोई एक बिंदास
0: ठंडा ठंडा कोई गाना बताइए जिससे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आनंद आ जाए।
1: सर मेरे जहन में तो नहीं आ रहा, आप अपनी तरफ से प्ले।
0: चलिए मैं एक बढ़िया सा गाना लगाता हूँ, जरूर सबको मजा आएगा और आपको भी आनंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर फोन करने के लिए हमें।
1: जी शुक्रिया सर।
0: जी सर नमस्कार इरशाद जी।
1: जी नमस्ते,
0: धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे इरशाद हुसैन अंसारी जी मंसूरी कॉलोनी से। देखिए पहले लकी कॉलर तो जुड़ गए हैं, एक गाना बेहतरीन सा इनके लिए और आपके लिए लगा रहा हूँ, बाकी अगला गाना कौन सा होगा वो मुझे नहीं पता, आप फोन करेंगे। आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं गर्मियों में और हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देंगे ये आप हमें बता सकते हैं कॉल करके 9837896896। प्रोग्राम है बिंदास बोल, मैं हूँ आपके साथ आनंद। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो फिर से मैं आपको नंबर बता देता हूँ 9837896896।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: माँ की नज़र फिर से साफ हो, पापा बिना चश्मे अखबार पढ़ सकें, बच्चों को कम उम्र में चश्मा ना लगे, यही तो ख्वाहिश है हर परिवार की। तो आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आज ही आए बजाज आए हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर आकाश बजाज और डॉक्टर अशोक बजाज लाते हैं आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी और नेत्र रोगों का विशेषज्ञ इलाज। हॉस्पिटल का पता ताड़ीखाना चौराहा मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9548088900।
3: क्या आप
4: टायर लो सोना जीतो?
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
8: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
7: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
8: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
9: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
9: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
10: दोस्तों अब जो है बारी आपकी भी है, आप मुझे फोन लगा सकते हैं 9837896896, स्टूडियो का नंबर है। 3 से 5 आपके साथ लाइव है, प्रोग्राम है बिंदास बोल, बातें चल रही हैं बिंदास की। बिंदास बोलने वाली बातें जो है ना, वो सिर्फ इसी स्टेशन पे होती हैं। तो भैया ये प्यारा से गाना इरशाद हुसैन जी ने कहा था, अपनी पसंद का कोई गाना सुनाइए। तो इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी से ना काफ़ी आपको राहत देगा ये गाना। जरा वॉल्यूम बढ़ा के सुनिए और कुछ कहना चाहते हैं तो फोन कर लीजिए हुजूर।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, दिस इज सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आनंद के साथ आपने ट्यून इन किया हुआ है आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है बिंदास बोल। हाँ जी, तो अगर आप बिंदास बोलना चाहते हैं तो आपको बिंदास फोन लगाना पड़ेगा बाबा। 9837896896 ये स्टूडियो का नंबर है। क्या कहा, बहुत जल्दी से नंबर बोल दिया आनंद तूने। मैं जरूर आसानी से बोलूंगा, आराम से बोलूंगा, आप थोड़ा इंतजार करो। चिलचिलाती गर्मी में कहीं मत जाओ, रेडियो की वॉल्यूम थोड़ा सा टर्न अप करो और मेरे साथ एंजॉय करो। वॉल्यूम टर्न कर लो भाई, थोड़ी बढ़ा लो यार आवाज। हाँ, वेरी नाइस। एक कॉलर जुड़े हैं, जरा ये इनसे बात कर लेते हैं, कहाँ से हैं ये और ये गर्मियों में अपना कैसे ख्याल रखते हैं और हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे आज की दोपहर। कहाँ से कौन जुड़े हैं, बात करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप?
1: हेलो नजीबा, हेलो मुरादाबाद।
0: हाँ देखिए, कोई और स्टेशन का अगर आप नाम लेंगे तो हम आपका जो है शुल्क एक्स्ट्रा चार्ज लगा देंगे आपके ऊपर। नाम बताएं अपना भाई।
1: मैं सलमान बिलोंग करता हूँ, गांव शराइमा पोस्ट तहसील नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, लेकिन इस समय देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी
0: देहरादून में है अभी। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, ये बताइए देहरादून का मौसम कैसा है पहले तो ये बताओ यार, पहाड़ों की बादलों से कॉल आया।
1: गर्म है।
0: ओहो, देहरादून का भी गर्म मौसम है यार। देहरादून में तो
1: देहरादून में एक हफ्ता पहले शिमला भी थे।
0: अरे वाह, क्या बात है, मतलब आप चारों तरफ एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। बट उनका कॉल अनफॉर्चुनेटली होल्ड पर चला गया है, सो प्लीज़ अगर आप सुन रहे हैं तो होल्ड से अपना फ़ोन हटा लें और जल्दी से बात करें, नहीं तो हम किसी और श्रोता को मौका दे देंगे, क्योंकि ढेर सारे श्रोता साथी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और किसी कारणवश कॉल उनका हुआ डिस्कनेक्ट। बाकी श्रोताओं, अगर आप हमें फ़ोन कर रहे हैं तो प्लीज़ नेटवर्क एरिया में आके कॉल कीजिए और अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो आप तो भी हमें कॉल कर सकते हैं। और बाकी मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि गर्मियों का मौसम है, जितना हो सकता है ना तरल पदार्थ का सेवन करें और जैसे आजकल मार्केट में ना बहुत अच्छे तरबूज खरबूज ककड़ी खीरा सब कुछ अवेलेबल है, इनका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक और कॉलर जुड़े हैं, हेलो कैसे हैं आप? हेलो जी, बिंदास बोल में स्वागत है, नाम बताएं। आपका नाम जान सकते हैं सर, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी सर, आपकी ना आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही। अच्छा, ओके जी, बताएं सर कैसे हाल चाल है? मैं भी बढ़िया। इस वक्त कहाँ है आप? छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, हमारे तमाम सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, गर्मियों में क्या उनको सलाह देंगे आप, कैसे गर्मी से बचा जा सकता है? सर आपकी आपकी जो आवाज है ना वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो सर, आपका आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाइए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। श्रोताओं, अगर आप भी हमें कॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि नेटवर्क आपका बिल्कुल ख़राब ना हो। अगर आपका नेटवर्क ख़राब होगा तो फिर बात करने में थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं आपके और मेरे बीच में, जो दिक्कतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिलहाल एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं और इसी गीत को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी आप भी कुछ कहना चाहते हैं बिंदास बोल में, आप कुछ सलाह देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को तो बिल्कुल आप दे सकते हैं जी। उसके लिए आपको हमें फ़ोन घुमाना होगा, 9837896896 ये स्टूडियो का नंबर है, ठीक है? इस नंबर को आपने सेव करना है और फटाफट हमें कॉल करना है, हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का। एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा गाना आप सुन लो, मेरी पसंद का बहुत अच्छा गाना है एंड ये गाना आप कहीं ना कहीं आपको फ्लैश बैक में ले जाएगा। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग, बहुत प्यारा गाना है। चलो इस गाने को सुनते हैं और आपको कहना चाहते हैं आप भी हमें फोन करिए 9837896896।
2: ओ हरे दुपट्टे वाले

0: बहुत ही खूबसूरत गीत। सनम बेवफा से बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने एंजॉय किया श्रोताओं, और ऐसे खूबसूरत गीत आप सुनते हैं आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और इसी बात के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है बिंदास बोल। अगर आप भी इस बिंदास बोल में जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है, इस नंबर को सेव करिए और अब हमें फटाफट कॉल करिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल्स का।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
8: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आप सभी श्रोतागण का हम वेलकम बैक करते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बिंदास बोल सुन रहे हैं आप आपके शहर के अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। जो लोग गाड़ियों में मुझे सुन रहे हैं उन सभी का दिल से स्वागत है जी। बस रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा के रखिए और फ्रिक्वेंसी को सेट रखिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए वेलकम करेंगे हमारे अगले श्रोता का। कौन कहाँ से जुड़े हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, अपनी टर्न की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत देर से फोन पे जुड़े हुए हैं। हेलो बिंदास बोल में वेलकम है, नाम बताएं।
1: नमस्कार
0: आप जी। जी जी, क्या नाम बताए साहब आपने, जरा एक बार बता देंगे।
1: प्रभात
0: सैनी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वक्त। जी प्रभात जी, बताइए क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में? अच्छा अच्छा,
1: बहुत काम है, 24 घंटे डिलीवरी होती है खाने।
0: ओके ओके ओके ओके, वेरी नाइस। चलो चलो, बहुत ही बढ़िया। तो प्रभात जी देखिए, गर्मियों का जो मौसम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मियां भी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कैसे अपना ख्याल रखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त?
1: देखो हमें तो वैसे बहुत अच्छी है, 24 घंटे आपके आसपास रहना पड़ता है।
0: ओहो,
1: पसीना ज्यादा ही आता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर आदमी को अपनी तरफ रखनी चाहिए, कपड़ा जरूर रखना चाहिए आदमी को अपने पास।
0: वही मैं आपसे जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि और क्या चीज कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग ठंडी चीजों का सेवन कर सकते हैं, है ना?
1: देखो ठंडी चीजें भी सेवन आदमी को करना चाहिए, मगर वो भी लिमिट में।
0: हाँ लिमिट में, बिल्कुल सही कहा आपने प्रभात जी। हाँ जी हाँ जी,
1: जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कम सेवन करनी है, बुजुर्ग आदमी उन्हें भी कम।
0: जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मतलब छोटी छोटी बातों का, बिल्कुल गर्मी हो या सर्दी, छोटी छोटी चीजों को अक्सर हम भूल जाते हैं, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, है ना?
1: करना चाहिए हर चीज को लिमिट से।
0: हाँ,
1: और ये होता है कि आइसक्रीम है या कोल्ड ड्रिंक है, अच्छी लगती है आदमी खा लेता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है ये आपने, और मुझे लगता है छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, आप मानिए मत मानिए, मुझे जितना लगता है
1: हमारी भी लड़की है, लड़का है, वो भी
0: वही ना, वही वही मतलब। और ये चीजें ठीक है, लेकिन मतलब एक अगर लिमिट में खाई जाए कोई भी चीज हो तो वो सही रहता है, अच्छी होती है। बिल्कुल प्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े, क्या सुनवा दें आज आपको इस प्रोग्राम के जरिए, बिंदास बोल के जरिए।
1: आज एक गाने का पुराना बोल है
0: जी,
1: ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान।
0: बहुत खूबसूरत गीत है, थैंक यू सो मच प्रभात जी, आप जुड़े, आपने तमाम जानकारियां साझा करी, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं आप भी हमें फोन कर सकते हैं 9837896896, इस नंबर को लगाइए और जल्दी से जुड़ जाइए आनंद के साथ। आप कैसे अपना ख्याल रखते हैं इस चिलचिलाती गर्मी में, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को, ये आप हमें बता सकते हैं हमारे नंबर के जरिए, और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। ठीक है जी, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत गीत जो इन्होंने बोला है वो हम सुनवाते हैं, और उसी को सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अगला गाना आपकी पसंद का हो सकता है, तो फटाफट से फ़ोन घुमाइए, और ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत ही प्यारा नगमा है, एक मीनिंगफुल एक थॉटफुल गाना है, इसको सुनते ही ना अंदर से एक मोटिवेशन आता है और एक मैसेज भी ये कहीं ना कहीं सॉन्ग रिलीज करता है, एक मैसेज जो देना चाहिए वो भी देकर जाता है गाना। चलिए इस गाने को सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत है, मोहम्मद रफी साहब की आवाज। तो

तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है उस इल्म का तुझ पर को

0: तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
1: खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यारा गीत, और ये कुछ वो गाने हैं जो एक्चुअली सच्चाई से रूबरू कराते हैं, और ऐसे गाने सुन के अंदर से गूज़बम्स आ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, बहुत ही बेहतरीन गीत श्रोताओं। टाइमलेस एंथम, मतलब इस गाने का कोई टाइम हो ही नहीं सकता है, जब भी आप सुनोगे आपको एक नया मैसेज मिलेगा। चलिए श्रोताओं आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बिंदास बोल 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, आपने ट्यून इन किया है आज

0: बिंदास बोल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कौन बात कर रही है, नाम बताएं अपना।
1: हेलो सर, अनंत को मेरा प्यार भरा आदाब।
0: जी आपको भी हमारा आदाब जी। अपना शुभ नाम बता दें मैम।
1: सर मैं मुरादाबाद
0: से निशा बात कर रही हूँ। निशा जी कैसे हाल चाल है, पहले ये बताइए आपकी जरा।
1: हम बहुत बढ़िया सर, आप बताइए और आपके यहाँ और मुरादाबाद में सभी लोग कैसे हैं?
0: सब एकदम बहुत बढ़िया है, सब एकदम बहुत मजे में है और मैं उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ भी सब बढ़िया होंगे घर परिवार में।
1: जी सर सब बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है।
0: चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए अपने बारे में निशा जी, और क्या करती हैं वैसे अभी आप घर पर?
1: अभी तो सर घर पर हम जरी का काम करते हैं।
0: जरी का काम करती हैं, बहुत बढ़िया, काफी बारीक काम होता है जितना मैंने सुना है इसके बारे में।
1: जी सर।
0: ओके, तो निशा जी रेडियो कब से सुन रही हैं आप?
1: रेडियो को तो काफी मतलब यहाँ पे तो 3 साल से जब से खुला है जब से सुना है हमने, बाकी रामपुर सुनते थे देहरादून सुनते थे।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेडियो सुनते सुनते काम काज भी हो जाते हैं और रेडियो सुनने के बाद आनंद भी मिलता है, ऐसी बात तो नहीं है। खैर
1: जी सर
0: बहुत बढ़िया। अच्छा तो मुझे बताइए निशा जी, आजकल जैसे गर्मियों का सीजन चल रहा है, इसमें आप कैसे ख्याल रखती हैं और हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगी, गर्मियों से कैसे बचा जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे?
1: गर्मी में बाहर थोड़ा कम जाए, धूप में अपने घर में ही ज्यादा टाइम निकाल कर रहें।
0: जी
1: बाहर बहुत कम से कम जाए धूप में।
0: जी जी जी जी जी और जी जी जी और कुछ कहना चाहती हैं आप?
1: शादियों का सीजन चल रहा है, शादी का गाना सुनवा देना, और शादियों में जो भी लोग जाए बहुत कम खाना खाए।
0: अरे बाप रे, शादियों में तो लोग खाना खाने ही जाते हैं मैम, कैसी बात कर रहे हो निशा जी।
1: खाना लोग खाते हैं, इस टाइम बहुत नुकसान दे रही है।
0: नुकसान दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ये शादियों में जब हम जाते हैं तो थोड़ा हैवी खाना होता है और हम लोग एक्साइटमेंट में ज्यादा खा लेते हैं, फिर वो आगे चल के दिक्कत भी हो जाती है ना,
1: 2-3 दिन उठना नहीं देता भारी खाना।
0: हाँ ये तो बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन क्या है ना कि लोग समझते नहीं है, वो एक्साइटमेंट में इतना हो जाता है कि बस वो खा लेते हैं कि चलो आज तो शादी है, आज तो खा ही लेते हैं जम के दावत।
1: बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लोग सोचते हैं फ्री मिल गया खा ला, लेकिन फ्री के बाद
0: तबियत खराब हो सकती है और गर्मियों में तो वैसे भी खाना पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी निशा जी थैंक यू सो मच, आप जुड़ी हमारे इस प्रोग्राम में, आपने फोन किया और तमाम बातें शेयर करी उसके लिए शुक्रिया। एक बढ़िया सा गाना लगा रहा हूँ, आप भी सुनिएगा ठीक है? वेलकम निशा जी, थैंक यू सो मच फोन करने के लिए बिंदास बोल में। श्रोताओं आप भी फोन कर सकते हैं हमें, आपका भी नंबर जरूर लगेगा, प्रोग्राम चल रहा है बिंदास बोल। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से, हमारे साथियों से, गर्मियों में वो अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, आपके पास है कुछ अल्टीमेट यूनिक सी टिप्स, अल्टीमेट कोई अच्छा सा आइडिया, सो डेफिनेटली डू शेयर, आप मुझे कॉल करके शेयर करिए, हमारे सुनने वालों तक अपने दिल की बात पहुँचाइए। काफी ब्यूटीफुल एंथम प्ले कर रहा हूँ आप सभी के लिए, रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए और इस गाने को सुनते जाइए आनंद के साथ। प्रोग्राम है बिंदास बोल, सुन रहे हैं आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
9: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
10: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
11: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। अभिनंदन, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, संडे वाली आफ्टरनून अब इवनिंग में तब्दील होने वाली है। ये दोपहर शाम में 4:08 का समय हो गया है। 17 मई की ब्यूटिफुल आफ्टरनून। और बताएं आपको भैया, आज के दिन के बारे में बहुत सारी बातें हम आपको बता चुके हैं सुबह। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। एक हमारी प्यारी सी श्रोता बड़ी देर से इंतजार कर रही थी, बट उनका कॉल जो है वो अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन अभी कौन चुने हैं हमारे साथ बिंदास बोल कार्यक्रम में, वो तो वही बताएंगे जी। हेलो, कैसे हैं आप?
1: हेलो
0: जी, आपका शुभ नाम बताएं।
1: नीरज भाई
0: जी, कैसे हाल चाल है सर आपके?
1: बढ़िया भाई साहब
0: जी। कहाँ से फोन किया है इस वक्त आपने, जरा ये बताएं। अच्छा, ओके ओके, क्या करती हैं जरा ये बताएं अपने बारे में हमारे सुनने वालों को। आपको मेरी आवाज आ रही है सर?
1: अरे आ रही है, ये लोग आ रहे
0: हैं। हाँ, मैंने कहा आप क्या करते हैं जरा ये बताएं। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब कैसा चल रहा है कामकाज? इस गर्मी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम सुनने वालों को? आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं इस गर्मियों में, इन गर्मियों में? ओके, तो आप कुछ कहना चाहते हैं जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे इस गर्मी से कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज क्या सुनेंगे इस प्रोग्राम में, आपका फोन शामिल हुआ है तो दोस्त? अच्छा अच्छा, बहुत प्यारा गाना है। और कुछ कहना चाहते हैं आप क्या करते हैं स्पेशल गर्मी से बचने के लिए? अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया है जी। ये तो खैर बहुत ही बढ़िया चीज है, और बहुत अच्छा लगा कि आपने फोन किया और अपने विचार हमारे तमाम सुनने वालों तक साझा करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद करते हैं आपका, और आपकी पसंद का गीत भी सुनवाते हैं जी। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप भी फोन कर सकते हैं 9837896896, स्टूडियो का नंबर है। आई एम वेटिंग फॉर यू कॉल।
2: लाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

वेलकम बैक है श्रोताओं, एक बार फिर से बिंदास बोल में आनंद के साथ हैं आप श्रोताओं। गर्मी अपने पूरे पीक पर है तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसे में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और कोशिश करें छोटी छोटी चीज़ों को आप जरूर अपने रूटीन में अपनाएं और अपनी दिन की शुरुआत एक हेल्दी दिनचर्या के साथ करें। कोशिश करें रात में आप ठंडी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। दोपहर में लंच में आप दही ले सकते हैं, गर्मियों के मौसम में आप खीरा, आप जो ककड़ी है, तरबूज है, जितने भी फल हैं तरल पदार्थ के वो आप ज़रूर दोपहर में आप खा सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप नारियल पानी भी हो सकता है तो ज़रूर लें क्योंकि बहुत ही बढ़िया होता है नारियल पानी। अगर आप नारियल पानी लेते हैं तो ये भी अच्छा होता है और साथ ही साथ आप ठंडे तरल पदार्थ के साथ ही साथ आप जो गर्मियों की मौसमी सब्जियां हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां अभी भी मिल रही हैं, स्पेशली लौकी बच्चों को कम पसंद आती है लेकिन बहुत ही बढ़िया होती है, आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। फ्रूट्स मार्केट में बहुत अच्छे हैं, आप उनका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। बाकी ज़्यादा पानी आप पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और बाहर निकलते वक्त जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कोई गमछा या कपड़ा ज़रूर अपने सर पर रखकर निकलें और दोपहर 12 से 3 तो कोशिश करें इस धूप से आप जितना हो सकता है बचने की कोशिश करें। और अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप अलग अलग फ्लेवर का पानी भी ले सकते हैं ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। आप लेमन पानी बना सकते हैं, लेमन का वाटर हो गया, और भी बहुत सारे वाटर हैं जो आप बना सकते हैं घर पे बहुत इजीली, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको एक फ्रेशनेस भी मिलेगी और आपकी बॉडी भी रिफ्रेश रहेगी और आप भी बहुत हेल्दी और रिचार्जेबल महसूस करेंगे। श्रोताओं लगातार हमें आपके कॉल्स आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे फोन कॉल्स करने के लिए। एक कॉल मुझे मैम का आया बट जैसे कि मैंने बताया कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है जिसकी वजह से कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन अगर आप हमें फोन करना चाहते हैं बिंदास बोल में तो ऑफकोर्स आप मुझे फोन कर सकते हैं 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत ही सिंपल है, इस नंबर को आप जो है डायल कीजिए जरा जल्दी से और देखते हैं अभी हमारे साथ हमारे प्यारे से कौन होंगे श्रोता साथी जो हमारे साथ जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में और अपने दिल की बात सीधा हमारे साथ। हमें इंतजार रहेगा आपकी फोन कॉल्स का। एक सुंदर सा गीत आपके लिए मैं निकाल रहा हूं इसी स्टेशन पर, आप इस गीत को सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। प्रोग्राम है बिंदास बोल और मैं हूं आपका दोस्त आनंद।

0: जी क्या बात है, खूबसूरत और बेहतरीन गीत। और इस खूबसूरत बेहतरीन गीत के बाद हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बिंदास बोल में। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप हमारे साथ सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर्स
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवास, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
7: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
8: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
7: अरे वाह।
8: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
7: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: 4:28 हो गए हैं। आनंद के साथ आप बने हुए हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बिंदास बोल में, और बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से साथी जिनका हम वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। नमस्कार, कैसे हैं आप? अपना शुभ नाम बताएं सर।
1: जी नमस्कार, मैं राजू यादव, ग्राम प्रयका, श्रीरामपुर, डेरा सरीला राठ, मुस्करा हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से।
0: क्या बात है राजू यादव जी, बताइए जरा, इतना अच्छा बोलना कहाँ से सीखा है आपने, पहले तो ये बताओ।
1: मैंने रेडियो FM मुरादाबाद से और आपसे ही बोलना सीखा है।
0: हाँ, ऐसी आप मतलब हर स्टेशन में जाके यही बात बोलते हो, मैंने सुनी है आपकी बात, आप झूठ मत बोलिए हमारे साथ। बड़े कमाल के इंसान है राजू जी, आप बहुत ही बिंदास बोलते हैं और बहुत ही बिंदास बातें करते हैं, आपका ये स्वभाव है जो सबको बहुत करीब लेकर आता है आपके।
1: सर जी, ये मेरा रेडियो का ही लगाव है जो मुझे आज इतने ऊंचाइयों तक ले गया है।
0: बिल्कुल सर, और देखिए जिंदगी में कुछ होना हो, एक अपना मुकाम जब हमें हासिल हो जाता है ना, जब हम उससे फील करते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है ना।
1: जी
0: तो थोड़ा सा
1: ज्यादातर कार्यक्रम सुनता हूँ जो हमारे अंदर जो कमियां होती हैं, तो सुनते सुनते धीरे धीरे निखार आ जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वो निखार तब आता है जब हम लगातार प्रयास करते हैं सर, सही दिशा में।
1: जी
0: राजू जी बताइए, कहाँ रहते हैं आप, आपने कहाँ बताया?
1: मैं सब बगीचा में हूँ, और हमारा गांव है बुंदेलखंड ग्राम उपरेगा, श्रीरामपुर डेरा उपरेगा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बुंदेलखंड वैसे कहाँ पड़ता है?
1: ये बुंदेलखंड पड़ता है झांसी, झांसी से राठ, राठ से मुस्करा, मुस्करा से हमारा गांव है श्रीरामपुर डेरा।
0: ओहो, काफी लंबा चौड़ा एड्रेस है और बहुत दूर है आपका तो, मतलब
1: पूरा आने का एड्रेस रहता है कि कहां से कैसे आए।
0: बहुत बढ़िया। तो राजू जी बताइए, इस वक्त कैसा मौसम हो रहा है? आप तो खैर बगीचे में बैठे हैं, आपका तो कहना ही नहीं है भाई, लाजवाब है आप तो।
1: इस समय मौसम बढ़िया है, बादल छाए हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आम में चढ़े हैं, आम तोड़ रहे हैं।
0: अरे बाप रे बाप, तो आम पक चुके हैं अभी या कच्चे आम है अभी?
1: कच्चे आम है, अचार रखने के लिए आपको व्हाट्सएप कर दूंगा।
0: व्हाट्सएप मत करिएगा, सीधा मेरे एड्रेस पे भेज दीजिएगा, मैं आपको पेटीएम कर दूंगा अपना एड्रेस।
1: जी सर।
0: हाँ जी, और बताइएगा राजू जी, गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियाँ पीक पर हैं, वही हम बात कर रहे हैं, गर्मियों से कैसे आप बचते हैं, अपना क्या ख्याल रखते हैं, खास तौर पर लोगों से क्या कहना चाहते हैं इस मौसम को लेकर?
1: गर्मी से बचने के लिए सर जी, हमारे यहाँ तो बर्मा नदी है, बर्मा नदी में बांध का पानी छोड़ा गया है, तो पुल के ऊपर कभी कभी पानी हो जाता है, कभी नीचे, तो उसमें कूदते हैं, सुबह चबूवल खेलते हैं, मौसम एकदम रंगीला ठंडा है, तो हमारे यहाँ तो मौसम और या ठंडा है, और मैं सबके लिए यही कहता हूँ कि नींबू पानी का सेवन करें इस गर्मी में बचने के लिए।
0: बहुत बढ़िया कहा राजू यादव जी, आपसे बातचीत करके मन प्रसन्न हो जाता है, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, आपने तमाम अच्छी जानकारियाँ भी दी हैं। आज क्या सुनेंगे इस प्रोग्राम के जरिए आप?
1: आजा आजा मेरे मिठू मियां।
0: अच्छा,
1: तुझे पिंजड़े में बंद कर लूं। इस समय क्योंकि आम में बहुत सारी मिठू मियां हैं।
0: हाँ, ये तो आपने सही कहा राजू जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप जुड़े, आगे भी जुड़ते रहिएगा।
1: जी सर जी, प्रणाम, नमस्कार, कुछ मित्रों से सर जी बात कर लीजिए, आप बगीचे में है?
0: जी सर प्लीज।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, नमस्कार
0: जी, नाम बताइएगा सर।
2: जी बालेंद्र यादव बात कर रहे हैं सर जी।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हाल चाल है आपके?
2: जी सर बढ़िया है, बस बगीचे में बैठे हुए हैं अभी,
0: और प्रोग्राम भी सुन रहे हैं।
2: अरे
0: वाह, और अपना कामकाज भी कर रहे हैं आप लोग?
2: जी।
0: बहुत ही बढ़िया सर, ऐसे ही होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। क्या शुभ नाम बताया आपने?
2: जी बालेंद्र यादव।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, आपको भी राजू यादव जी ने रेडियो सुनने का चस्का लगा दिया है क्या?
2: जी बस साथ ही में बैठे हुए हैं।
0: अरे चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और साथ में बैठ के जब प्रोग्राम सुना जाए तो और आनंद आता है ना?
2: जी बहुत आनंद आता है सर।
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा, आप भी ऐसे जुड़िएगा आगे भी प्रोग्राम में, आपको और मजा आएगा सर।
2: जी
0: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
2: जी सर जी, एक मित्र और है हमारे पास।
0: अच्छा चलिए, बात करा दीजिए जरा।
1: वो सर वहाँ से हैं सर जी, कहते हम तो कार्यक्रम बनेंगे।
0: अच्छा।
2: जी सर जी
0: नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप?
1: जी नमस्कार, नमस्कार।
0: और बताइए सब बढ़िया है?
1: जी और तो सब बढ़िया, बस बगीचे में आम तोड़ रहे हैं।
0: चलिए, आम तोड़ते रहिए और आम खाते रहिए, खिलाते रहिए, और ये गीत सुनिए सर, ठीक है? नमस्कार सर, थैंक यू राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: श्रोताओं, अगर आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा। 9837896896 पे आप स्टूडियो के नंबर को नोट कर सकते हैं और मुझे खटाक से फोन कर सकते हैं। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट बिंदास बोल। आज बातें कर रहे हैं इस बढ़ती गर्मी में आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं और हमारे तमाम सुनने वालों तक आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस गर्मी से हमारे श्रोता अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं और गर्मी से कैसे उनको भी राहत मिल सकती है।
1: मिठुनिया तेरो खाएगा, मिठुनिया

0: तो लगातार आप लोगों की फोन कॉल्स हमें मिल रहे हैं इस प्रोग्राम में। आप जो अपना ये प्यार दे रहे हो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मुरादाबाद से नहीं, आसपास के तमाम सारे शहरों से हमारे सारे बहुत सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमें कनेक्ट कर रहे हैं। आपकी बारी भी है दोस्त, आप भी हमें फोन कर सकते हैं 9837896896 स्टूडियो का नंबर है। कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं, हेलो, नाम बताएं अपना। जी बिल्कुल, चाय पियेंगे सर, आपने इतने प्यार से चाय पिलाई है तो जरूर हम चाय पीने आएंगे, आपने बोला है तो। बताइए इतनी गर्मी में चाय कौन पिलाता है लक्ष्मण जी, पहले ये बताएं।
1: जल्दी पिलवा दे, हमें फोन नहीं कट जाए।
0: अरे अरे अरे, अरे, अरे। बहुत बढ़िया। लक्ष्मण जी कहाँ से फोन किया है आपने, मध्य प्रदेश में?
1: जिला।
0: अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। लक्ष्मण जी चाय कैसी बन रही है, कड़क बन रही है या नहीं ये बताएं। अच्छा एक बात बताइए, बिल्कुल आएंगे लक्ष्मण जी, गर्मियों में लोग चाय पीने पसंद करते हैं, आते हैं लोग चाय पीने?
1: पीते हैं बहुत ज्यादा।
0: अरे वाह, मतलब जिनकी जिनकी जिनकी पहली पसंद ही चाय है, जिनका पहला इश्क ही चाय है, वो तो कभी नहीं भूल सकते भाई, है ना। कोई भी मौसम हो जिन्हें चाय पीनी है, मतलब उन्हें चाय पीनी है। कौन सा समय होता है जब लोग सबसे ज्यादा चाय पीने आते हैं?
1: सुबह शाम ज्यादा,
0: सुबह और शाम।
1: आपकी आवाज भी बहुत मीठी है चाय भाई।
0: अरे सर हमारी आवाज़ तो मीठी है ही, इसकी टेंशन ना लो, लेकिन आपकी चाय भी बहुत मीठी है, मुझे लग रहा है ऐसा। तो लक्ष्मण जी बताएं, गर्मियों में जो है कैसे अपना ख्याल रखते हैं आप, चाय पी पी के तो नहीं रख रहे हो?
1: गर्मियों में तो ऐसा रखना पड़ता है, जैसे अपना आम का पना पिए तो उससे लू से बचा जा सकता है।
0: जी जी,
1: और जो बेल भी खाना चाहिए, बेल जैसे अभी।
0: हाँ ये तो आपने सही बोला है सर, बेल।
1: और क्या है, साल भर अच्छा जंदा अभी पी लो, फिर बेल का साल भर काम करता है।
0: हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, और ये एक बहुत ही अच्छी आइडिया भी आपने दिया है, और मुझे लगता है बेल आपके पेट के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। सही कह रहे हैं सर आप, बहुत ही बढ़िया। तो बाकी और सब बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा है, भगवान की कृपा।
0: चलिए चलिए बहुत बढ़िया। आज क्या सुनेंगे इस प्रोग्राम में बताइए जरा।
1: आज सुनवादी प्रेम रोग का।
0: प्रेम रोग का कौन सा गीत सुनेंगे आप, ये बताएं। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा लक्ष्मण जी आपने फोन किया, फिर आपसे जरूर मुलाकात
1: करें।
0: अच्छा ऐसा क्यों सर, मतलब आप हमसे बात करने की ज्यादा तमन्ना रखते हैं फिर है?
1: कुछ लोग क्या है, कुछ अच्छी करते हैं बात तो बन जाता है।
0: अरे वाह क्या बात है, काफी
1: देते हैं बात।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा टैगलाइन वगैरह काफी बढ़िया मार देते हैं आप, हैं बहुत अच्छा लगा लक्ष्मण जी।
1: कभी कभी मार देते हैं।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जरूरी है लाइफ में कभी कभी ये जो अंदर का बचपना है और जो ये प्यारी प्यारी बातें हैं इनको भी हमेशा करते रहना चाहिए, है ना। चलिए नमस्कार साहब।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज डीएमआर हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें डीएमआर हॉस्पिटल, सिविल लाइंस मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534।
5: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
8: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ बिंदास बोल सुन रहे हैं। यूं तो हर बार आपको खुशी से रूबरू होने का मौका मिलता है, लेकिन आज ये मौका हमें मिला तो हमने सोचा बिना किसी देरी के आप तक पहुंच जाते हैं और आपसे ढेर सारी गुफ्तगू कर लेते हैं। जी 4:54 हमारे ये प्रोग्राम का आखिरी कॉल हमारे साथ है, लास्ट कॉलर जुड़े। हेलो, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी अमरपाल ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी
1: भाई को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, हाथ जोड़ के नमस्कार। बताइए अमरपाल जी,
1: कैसे हैं सर?
0: मैं बढ़िया हूँ जी, आप अपने बारे में बताएं, आप कैसे हैं और काफी लंबे समय के बाद मेरी आपकी बात हो रही है शायद।
1: बहुत समय से बात हुई है।
0: जी जी जी, बताइए अमरपाल जी, क्या चल रहा है आजकल जीवन में? सब बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ सब बढ़िया चल रहा है।
0: चलिए बहुत बढ़िया,
1: बढ़िया चल रहा है। आप सुनाइए।
0: सब एकदम मजे में है, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ अमरपाल।
1: आपका प्रोग्राम सुन रहे थे
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरपाल जी। आप मुरादाबाद में कहाँ रहते हैं?
1: मैं इधर रहता हूँ कुंदरकी।
0: कुंदरकी रहते हैं, अच्छा अच्छा। तो वहाँ कैसा मौसम है, गर्मी के कैसे में हाल चाल है, जरा ये बताओ वहाँ के।
1: गर्मी काफी है, हवा चल रही है।
0: अच्छा, हवाएं चल रही हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं। तो अमरपाल जी, ऐसे में आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं गर्मियों में, और हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे गर्मियों से बचने के लिए?
1: गर्मियों से बचने के लिए ये कहना चाहेंगे कि नींबू पानी पिए, ज्यादा खाना नहीं खाएं, गलत चीज नहीं खाएं, जो आपके खराब हो जाए, देखभाल रखें।
0: और ज्यादा तले भुने मसालेदार खानों से भी थोड़ा परहेज करें।
1: ज्यादा मिर्च नहीं खाएं, तेल नहीं खाएं।
0: ये भी कहीं ना कहीं सेहत पर असर डालता है, मानो मत मानो, है ना?
1: ज्यादा नमक भी नुकसान देता है।
0: नुकसान देता है, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया और आपसे बातचीत करके काफी मजा आया साहब, और समय भी हमें कम इजाजत दे रहा है, तो हम नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे बात करेंगे। अमरपाल जी, आज क्या सुनेंगे जाते जाते प्रोग्राम में?
1: मैं गाना सुनना चाहता हूँ, जिंदगी की न टूटे लड़ी।
0: अरे वाह, बहुत ही प्यारा गीत है ये गाना, मैंने निकाल दिया है आपके लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: हम और आप

0: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, ऑपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
5: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
4: अरे वाह।
5: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
4: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स। कॉल 9412965333।
6: टायर लो, सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
10: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो?
4: लाइन मार रही हो।

प्लॉट पर बकाया राशि है, क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। हां जी, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और हमारे लिए। हां जी, फिशिंग फ्रॉड, इसका नाम तो आपने सुना होगा, मतलब एक क्लिक और अकाउंट खाली। हाँ जी दोस्तों, तो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑनलाइन ठगी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इस ठगी का नाम है फिशिंग फ्रॉड। फिशिंग क्या होता है श्रोताओं? फिशिंग का मतलब है धोखे से आपकी निजी जानकारी चुराना। इसमें बैंक, UPI, बिजली विभाग, इनकम टैक्स या किसी बड़ी कंपनी का नाम बताकर आपको SMS, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। मैसेज में लिखा होता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या तुरंत जानकारी अपडेट करें। चलिए मैं आपको एक ड्रामे के जरिए ये सारी बातें समझाता हूँ। आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुनील: अरे अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया तो? सुनील: अरे यह तो बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसी लग रही है। सुनील: लो यूजर ID, पासवर्ड और OTP डाल दिया। सुनील: अरे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया है, ₹20,000 डेबिट। और इसी एक क्लिक से सुनील फिशिंग फ्रॉड का शिकार हो गया। फिशिंग फ्रॉड आखिर इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि मैसेज बिल्कुल असली लगता है। बैंक का लोगो और नाम होता है, भाषा डर पैदा करने वाली होती है, तुरंत कार्रवाई करने का दबाव होता है। ठग जानते हैं कि इंसान डर में सोचता नहीं है। फिशिंग के रेड फ्लैग्स क्या हैं? अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अकाउंट बंद होने की धमकी, अनजान लिंक, स्पेलिंग की गलती वाला मैसेज, जल्दी करने का दबाव, OTP या पासवर्ड मांगना। याद रखिए, कोई भी बैंक या कंपनी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती है। फिशिंग से आखिर कैसे बचा जाए? फिशिंग से बचने के लिए किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलें। OTP, पिन, पासवर्ड किसी से साझा ना करें। ईमेल भेजने वाले का पता ध्यान से देखें। फोन में सिक्योरिटी अपडेट रखें। बुजुर्गों के लिए मैं एक खास संदेश देना चाहूंगा। दोस्तों, फिशिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, नए स्मार्टफोन यूजर्स, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए घर में सबको समझाइए, कोई भी मैसेज आए तो पहले पूछें, अकेले फैसला बिल्कुल ना लें। फ्रॉड हो जाए तो आखिर क्या करें? अगर गलती से आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, जानकारी डाल दी है और आपके पैसे कट गए हैं, तो देर ना, तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.government.in पर जाकर कर सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शिकायत, ज्यादा मदद। फिशिंग से बचने के 5 सुनहरे नियम: लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, OTP और पासवर्ड कभी ना बताएं, डराने वाले मैसेज से सावधान रहें, खुद बैंक से संपर्क करें, जानकारी ही सुरक्षा है। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा जाल है फिशिंग। एक क्लिक से पहले एक बार जरूर सोचें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz जो आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप कैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। और ये फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा फ्रॉड है कि ठग आपके साथ कब फ्रॉड करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत KYC करें, तो इस मैसेज को आप एक बार रीचेक जरूर करें। अगर मैसेज में कोई लिंक दिया हुआ है किसी बैंक का, तो चेक करें खुद अपने आप। गूगल पर जाकर अपने बैंक से जुड़ी वेबसाइट को गूगल पर डालिए, वहां पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें आपको फ्रॉड होने से बचा सकती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, सेफ रहें, सतर्क रहें। और हाँ, ये छोटी छोटी जानकारियां
आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी ही मिलेंगे कुछ और ऐसी काम से जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको सुबह से लेकर शाम तक करता है एंटरटेन। तो भैया, एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, पर जानकारी भी जरूरी है।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आस पास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नारकोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
1: क्या?
0: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
1: मैं क्या करूँ साहब?
0: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
1: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए,

गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
1: रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सर ये बताइए आप मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
1: जी,
0: तो आपको हमारा रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
1: नहीं मुझे तो लगता है कि मैं अगर

0: शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे, तो मैं मिस करूंगा कुछ।
1: अरे अरे क्या बात है।
0: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया आपने,
1: बिल्कुल खान जी। हाँ जी सर।
0: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने हैं, मैंने रेडियो पे भी सुने हैं और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए, और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं आप।
1: बिल्कुल सर। तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है।
0: देखिए, बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थाई आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य को निर्णय को कार्रवाई को कुछ समय के लिए आप लोग जो है उसको रोक रोक सकती है। कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, तो कोर्ट स्टे ऑर्डर के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आपको इस डिस्प्यूटेड मैटर में कोई भी छुआछेड़ नहीं करनी है और ये यहाँ पे यथास्थिति बनाए रखनी है, तो उसको कोर्ट स्टे दे देती है, तो उसी को हम स्टे ऑर्डर बोलते हैं।
1: बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदालत किन परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर जारी करता है?
0: देखिए, जब एक पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को अस्थाई रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है।
1: सो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
0: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है, तो अदालत के समक्ष अपनी अपील लिखे एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
1: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
0: देखिए, स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
1: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए, जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है, तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है, और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है, उस पर कुछ नहीं कर सकते।
1: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी है तो कुछ लग कर नहीं सकते,
0: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना आपको मानना भी है और बाध्यता है आपकी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
0: नहीं, देखिए, इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
1: क्या बात है। सो अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
0: देखिए, इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था।
1: बिल्कुल, बिल्कुल
0: आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कोर्ट
1: बिल्कुल
0: के आदेश की जब अवहेलना हो गई तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
1: बिल्कुल।
0: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है, तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
1: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल लगा सकती है। अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाई कोर्ट दे देती है तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
1: क्या बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
0: जी हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
1: क्या बात है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
0: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपनी लीगल राइट्स को जानें और छोटी छोटी बातों को जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या राइट जो कानून तोड़ रहे होते हैं। तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
0: बिल्कुल आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए। अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है, जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताऊं तो पता नहीं था।
0: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो है डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं उसको स्टडी करते हैं पढ़ते हैं, तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: बहुत बहुत

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कानूनी अधिकारों के बारे में, यानी कि हमारे बुजुर्ग समाज के सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन कई बार उन्हें अपने ही अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है।
5: थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: पहले तो सर, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
5: देखिए, मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: तो सबसे बड़ी चीज है ये, इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
4: सही
5: का, तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
4: बिल्कुल सर, तो चलिए इस सिलसिले को हम शुरू करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सीनियर सिटीजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है?
5: देखिए, कानून के बारे में जानने से पहले मैं पहले अपने जो हमारे समाज में जो इस समय बुजुर्गों की स्थिति है उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। अधिकतर देखा गया जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन हैं उनको मोस्टली एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है आजकल के यूथ।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, उनको बिल्कुल किसी भी चीज की भरण पोषण की आवश्यकता है या कोई हेल्प चाहिए, उनको इग्नोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा, हमें हमारे पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, अब हमारा भी दायित्व है कि अगर वो इस एज में है तो
4: उनकी सेवा करें,
5: सेवा करें हम भी। और भारत में सीनियर सिटीजन्स के अगर हम अधिकारों के लिए बात करते हैं, सुरक्षा के लिए उनकी बात करते हैं, तो मुख्य रूप से एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। ये कानून के तहत बच्चों या परिवार के सदस्यों के अपने माता पिता की देखभाल के लिए भरण पोषण का अधिकार है। अगर कोई जो भरण पोषण अपने माता पिता का नहीं कर रहा है, जैसे अधिकतर घर में देखते भी है कि भाई बच्चों की शादी हो जाती है तो वो अपना
4: अलग रहने की कोशिश करते हैं
5: और माता पिता को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, और उस समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती है सीनियर सिटीजन्स को, तो उसके लिए भी उनके पास राइट्स है, वो कोर्ट में विवाद दायर करके उनके मेंटेनेंस इत्यादि मांग कर सकते हैं भरण पोषण की।
4: बिल्कुल सर। सो अगला क्वेश्चन है हमारा सर, अगर बच्चों के द्वारा माता पिता की देखभाल नहीं की जाती तो बुजुर्ग क्या कर सकते हैं?
5: देखिए, ऐसी स्थिति में आप किसी भी लीगल लॉयर की एडवोकेट की हेल्प लें, उसे पूरी बात बताएं, और ऐसी स्थिति में आपको जो है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में आप शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल बच्चों को आदेश दे सकता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। लोकल आप SDM कोर्ट में आप कंप्लेन कर सकते हैं, DM के यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कानूनी विधि है जिसके थ्रू आप जो है अपने बच्चों से मदद मांग सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रत्येक बच्चों को खुद ही आगे आके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।
4: जिस तरीके से हमें माँ बाप जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े करते हैं, वही हमारा दायित्व है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।
5: करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उसी स्थिति में थे कि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था।
4: बिल्कुल सर, और इनफैक्ट तो हम भी उस एज में आने वाले ही एक टाइम।
5: बिल्कुल, जैसा आप बीज
4: वैसे ही फल मिलेगा
5: आपको।
4: बिल्कुल सर। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
5: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है लोकल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आवेदन करके आप जो है मांग कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग अपना खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा है तो वह अपने बच्चों से कानूनी वारिसों से भरण पोषण की मांग कर सकता है।
4: श्रोताओं, आपको जो ये हमारी बात है आई होप कि बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपके भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896। यानी कि अगर किसी बुजुर्ग को उनके ही घर में जबरदस्ती निकाल दिया जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए?
5: देखिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या कोई जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करे तो सबसे पहले तो आप 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएं। पुलिस आपकी तुरंत हेल्प करेगी। सीनियर सिटीजन एक्ट में भी ये आपको अधिकार दिया गया है। पुलिस आपकी तुरंत सहायता करती है। नजदीकी थाने या चौकी पे जाके अपनी पूरी बात बताएं। रिटन में अगर कंप्लेंट करने को वहाँ पे पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं तो लिखित में अवगत कराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तुरंत किसी लीगल सलाहकार से बात करके ट्रिब्यूनल में अगर आप केस डालना चाहते हैं तो आप केस भी डाल सकते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी।
4: और बहुत से बुजुर्ग है सर, उनके पास फोन नहीं होते तो वो कैसे पहुंच सकते हैं?
5: देखिए, नजदीकी थाने में तो आपको पता होता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका मित्र है या संबंधी है तो आप तुरंत उसकी मदद मांगी कैसे भी करके, लेकिन सूचना आपको पुलिस को देना जरूरी,
4: पहुंचाना जरूरी है
5: तुरंत।
4: चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं?
5: जी बिल्कुल उठा सकते हैं। जितने भी

0: सीनियर सिटीजन बुजुर्ग अपनी संपत्ति को देते समय कुछ शर्तें रख सकते हैं। अगर उन शर्तों का पालन के वारिसान नहीं करते हैं तो वो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द भी कर सकते हैं कानूनी।
1: बिल्कुल,
0: तो लेकिन जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखित में होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रॉपर यही है कि लिखित में हो।
0: हाँ,
1: तभी
0: अगर आप कोई भी संपत्ति अपने वारिसों को देते हैं या दान करते हैं और दान करने के बाद वो आपकी सेवा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, तो अक्सर मन में ये मलाल रहता है कि हमने संपत्ति क्यों दे दी।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: जो भी आपके मन की बात है, जो भी टर्म्स कंडीशन है, वो पहले ही लिखित में आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं।
1: इससे लिखित में होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
0: आपका अधिकार बना रहता है फिर भी। अगर मान लीजिए आपको कोई दान में दी हुई चीज रद्द करनी है या किसी चीज को लेके आप उसमें कोई पॉइंट ऐसा है कि जो आपने उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है और उसकी वो फुलफिल आपके वारिस नहीं करते, तो आप उस चीज को लेके भी आप जो भी आपने कोई भी उनको फेवर दिया तो उस पॉइंट पे आप उनको रद्द भी कर सकते हैं।
1: ओके सर, क्या सरकार सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अदालत या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करती है?
0: हाँ बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को मुख्य रूप से प्रायोरिटी पे सुना जाता है। अगर हम कोई भी बात दायर करते हैं तो उनके लिए एक जो है कोर्ट का भी जो है अलग ही एक नजरिया रहता है। और मुख्य रूप से जो ये हमारी सरकार की नीति है या हमारी जुडिशरी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता प्रथम पायदान पे दी गई
1: दी जाती है। सीनियर सिटीजन को सरकारी योजनाओं में कोई विशेष सुविधाएं मिलती हैं?
0: सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी सुविधाएं काफी दी गई हैं। जैसे आप सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए पेंशन है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी है, यात्राओं में छूट दी गई है, उनके सामाजिक योजनाएं कई सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि वो अपना जीवन यापन सुरक्षित और सम्मान ढंग से कर सके।
1: बहुत अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बुजुर्ग के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो जाए तो क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, बुजुर्गों को सबसे बड़ी चीज है कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है वो सॉफ्ट टारगेट समझता है, क्योंकि इस एज में एक तो बुजुर्ग ज्यादा जो है सोचने विचारने की शक्ति थोड़ा सा उनकी कम,
1: थोड़ी शक्ति उनकी कम हो जाती है,
0: कम हो जाती है, शरीर भी थोड़ा दुर्बल हो जाता
1: है, मतलब एनर्जी पावर थोड़ा लो हो जाता है।
0: क्रिमिनल व्यक्तित्व के लोग हैं वो सॉफ्ट टारगेट उनको लगता है कि वो बुजुर्ग को बनाए। अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप तुरंत जो है पुलिस में लेके शिकायत दर्ज कराएं, कानूनी सहायता आप लीजिए। कानून बुजुर्ग को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए ही सख्त प्रावधान कानून के तहत बने हैं और बुजुर्गों की जो शिकायत है वो बिल्कुल प्रथम पायदान पे जाके सुनी जाती है पुलिस आला अधिकारियों द्वारा। तो निश्चित तौर पे आपको तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए।
1: क्या बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना कानूनी अपराध है?
0: जी हाँ, बुजुर्गों के साथ कानून अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है कोई तो ये कानूनन अपराध है। आमतौर की डेली दिनचर्या में हम देखते हैं कि अगर हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं या पड़ोस में ही होते हैं तो हम किसी बुजुर्ग को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, धमका देते हैं, तो ये भी क्राइम है अपने आप में।
1: अच्छा अच्छा, मतलब कोई धमका रहा है, कुछ गलत
0: तो
1: बोल रहा है।
0: आप किसी को भी आप ऐसे अगर आप बोलते हैं बुजुर्गों को, तो खास तौर पे अगर आपने कोई भी ऐसी अपशब्द बोल दी तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। और खास तौर पे जो है पुलिस के आला अधिकारियों को जुडिशरी की तरफ से भी साफ इंस्ट्रक्शन है कि बुजुर्गों का, बच्चे और बुजुर्गों दोनों के लिए अगर कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत तत्काल लीगल एक्शन लिया जाए उसके।
1: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, हमें किसी के बारे में बोलने का कोई राइट?
0: बिल्कुल, आप किसी को अपशब्द कैसे बोल सकते हैं? आप किसी को कानून कैसे आप हाथ में ले सकते हैं? तो आपको निश्चित तौर पे जो है सबका आदर सम्मान करना चाहिए और जो है बुजुर्गों को तो खास तौर पे आपको जो है उनकी सेवा भाव रखना चाहिए मन के अंदर।
1: बिल्कुल श्रोताओं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। अगर आप सेवा करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हमारा अंत में, यानी कि आप सीनियर सिटीजन और उनके परिवार को क्या संदेश एक देना चाहेंगे?
0: देखिए, मेरा सभी जितने भी आपके FM मुरादाबाद 89.6 MHz के कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि हम सभी को अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और साथ ही सीनियर सिटीजन को अपने कानूनी अधिकारों की भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है, तो तत्काल वो उस पर लीगल एक्शन ले सके, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। और जो है बुजुर्गों को खास तौर पे हमें जो है वॉच भी करना चाहिए, क्योंकि उन इस एज में आके उनको हमारी जरूरत पड़ती है। वो शरीर से भी दुर्बल होते हैं, सोच भी उनकी थोड़ी सी, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सही कहा आपने सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके हमें बहुत सी जानकारियां मिली कि बुजुर्गों के लिए भी कानून है, मतलब उनके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं मतलब। तो थैंक यू सो मच सर, अब मैं यहाँ से जाने की इजाजत लेती हूँ श्रोताओं। अगर आपके

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

0: आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना। और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, इनफैक्ट आपके साथ हम ढेर सारी बातें तो करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। बात करने वाले हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। हर बच्चे को पढ़ने, खेलने, सुरक्षित रहने और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण बच्चों को अधिकारों से नजरअंदाज कर दिया जाता है। सो इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी। तो हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। मोस्ट वेलकम है सर, आप कैसे हैं? आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए जरा।
1: देखिए, मैं प्रोफेशनल एज एन एडवोकेट वर्किंग करता हूं और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं।
0: हाँ जी।
1: और हम लोग कहीं भी अगर कोई अन्याय करता है या कोई भी हमें गलत बात लिखती है तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं।
0: लेकिन सर आपका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है।
0: तो सर मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, बच्चों के अधिकार आखिरकार है क्या?
1: देखिए, जैसे समाज में बच्चे भी एक समाज का ही हिस्सा है, तो हमारे सरकार ने उनके लिए भी कुछ राइट्स बनाए हुए हैं। खास तो जो बच्चों के अधिकार है, वो हर बच्चे को जन्म से वो अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, सुरक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शोषण से बचाव का अधिकार है और अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और आजकल कई एनजीओ भी आप देख सकते हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए कई डिफरेंट फील्ड्स में।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें राइट्स बच्चों के पता होना सबको जरूरी है।
0: बिल्कुल। सो सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं?
1: देखिए, कानून बच्चों के लिए तो कई बने हुए हैं। जैसे अगर हम लेबर की बात करते हैं, कई फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है, तो लेबर डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लेता है, उस पर एक्शन लेता है वो। ठीक है,
0: बिल्कुल सर।
1: और कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि बच्चे कहीं अगर पढ़ने जाते हैं या कहीं किसी जो है स्कूल में जा रहे हैं या कहीं पे कोचिंग जा रहे हैं, तो उनके साथ कई ऐसी घटनाएं भी आती हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी घटनाएं हमने देखी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उसमें भी सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और कानून तो है ही है अपनी जगह।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो
0: सर
1: उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सबसे मेन बात तो सर इसमें यही है कि पेरेंट्स को बहुत इसमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आखिरकार बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्या है?
1: देखिए, शिक्षा का अधिकार हमारा राइट टू एजुकेशन, हमारा फंडामेंटल राइट भी है ये। और ये प्रत्येक बच्चे को जन्म के साथ जो शिक्षा का अधिकार मिल जाता है वो 14 साल तक के लिए उसको होता है। सरकार भी हमारी काफी इसको प्रमोट कर रही है शिक्षा को लेके, क्योंकि अगर हर बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पे वो अपने साथ हुए अन्याय के लिए बता भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है। और जो है सबसे बड़ी चीज है, अगर वो सजग होगा तो उसके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं होगी, अगर उसे नॉलेज होगी पूरी।
0: तो जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, आपको भी पता है जो गवर्नमेंट स्कूल में, उनको तो फ्री ऑफ कोर्स हर चीजें मिलती है।
1: ठीक है।
0: और जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि आपको बुक्स भी हमारे स्कूल से ही खरीदनी है, यूनिफॉर्म आप लेना है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि सर इतनी चीजें अवेलेबल नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल ठीक बात है रीना जी आपकी। देखिए, मैंने भी कई काफी सोचता हूं मैं कि शिक्षा हमारी सरकार कहां, जहां एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया है जो गलत है। तो सोच उनकी थोड़ा सा मैं यही बोलूंगा कि हर चीज में कमर्शियल नहीं देखना चाहिए। एट आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएं। ये नहीं होना चाहिए कि आप शिक्षा के नाम पे बुक्स भी यहाँ से लीजिए, ड्रेसेस भी यहाँ से लीजिए। कमर्शियल मैं मानता हूँ, चलिए रेवेन्यू हर चीज में, स्टाफ को सैलरी देनी रहती है, एक्सपेंसेस होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन इतना कमर्शियल नहीं होना चाहिए कि कम से कम जो पेरेंट्स हैं जो इस एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते, उनको कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स फील हो कि हम अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: और सरकार को भी हमारे कुछ स्टेप लेना चाहिए कि एक मापदंड ऐसे होने चाहिए, एक फीस, एक रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री लगानी चाहिए कि भी इससे ज्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। और बुक्स का भी मैं देखता हूँ हर सिलेबस में, हर ईयर जो सिलेबस चेंज हो जाता है। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि जैसे बुक्स होती थी हम हाँ। पास आउट होते तो पुरानी बुक से भी हम लोग पढ़ लेते थे।
0: अब तो ये है कि हम यूज ही नहीं कर सकते उस बुक को।
1: अब बुक्स का हर बार सिलेबस चेंज कर देते हैं हर बार, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस चीज को।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: तो ऐसा भी कुछ सरकार को होना चाहिए कि 5 साल तक के लिए अगर कोई सिलेबस वो लगा रहे हैं तो 5 साल तक उसे चेंज ना करें वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऐसा कुछ उनको एक
0: नहीं, ये जो पहले जैसे चलता था कि एक ही बुक अवेलेबल होती थी 10th तक, तो मतलब सेम होती थी सर।
1: बिल्कुल।
0: तो बुक्स आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे।
1: सीनियर से जैसे कोई सीनियर पास आउट होता था उनकी बुक से हम लोग भी पढ़ लेते थे, वही हमें भी उसी।
0: और कुछ समझ नहीं आता तो उनसे भी पूछ लेते थे।
1: बिल्कुल। गाइडेंस मिल जाती थी।
0: अब तो ये है कि हम बच्चे के अगर बुक पढ़ रहे हैं, अगर वो मुझसे कुछ पूछेगा तो पहले तो मैं उसके उस चीज को पढ़ूंगी,
1: हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है। तो एटलीस्ट प्रोविजन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि 5 साल तक कम से कम बुक्स में कोई सिलेबस ऐसा चेंज ना हो कि
0: बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज
1: हो और जो है नई बुक्स खरीदनी पड़ जाए।
0: लेकिन पढ़ाई के साथ साथ देखिए सर, अभी अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई ना करके अभी काम में लग जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं। तो क्या सर, मुझे लगता है कानूनी अपराध है, तो इसके लिए ये क्या करना चाहिए?
1: देखिए, कानूनी अपराध कहीं ना कहीं हम लोग अब खुद ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने देखा है कई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी फैमिलीज में बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, और खास तौर पे कुछ कम्युनिटीज में मैंने देखा है कि वो लोग एजुकेशन को सेकेंडरी रखते हैं, अर्निंग को प्राइमरी रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जन्म के साथ ही जैसे बच्चे ने होश संभाला, चलना फिरना शुरू करा, था किसी चीज की उसके अंदर स्किल्स आई तो उसे काम पे लगा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे किसी उसे फैक्ट्री में लगा दिया या कोई ऐसा लेबर का काम उसको कराने लग गए, तो बच्चे का क्या होता है जब वो अर्निंग करने लग जाता है ना, तो उसके अंदर पढ़ने की इच्छा धीरे धीरे
0: खत्म हो जाती है।
1: वो सोचता है भी मेरा तो यही, उसको सिखाया यही जाता है कि यही लाइफ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जब उसका बचपन ही आपने मार दिया उसको, तो वो बेचारा वो क्या करेगा वो बड़ा होके, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। हम लोगों को पहले बच्चे को बचपन देना चाहिए, है ना।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: जब वो बचपन जिएगा सही से, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, तो ऑब्वियस है वो आगे
0: भी बढ़ेगा,
1: बिजनेसमैन भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, एडवोकेट भी बन सकता है, आईएएस पीसीएस भी बन सकता है।
0: सर, तो आगे मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि ये बच्चों के साथ अगर जबरदस्ती करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन, कोई कानूनी नियम कुछ?
1: बिल्कुल, हेल्पलाइन भी है और हमारे कुछ एक लॉज भी ऐसे गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। अगर बच्चों के साथ कोई भी जबरदस्ती काम करवाता है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो आप सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नजदीकी आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सूचना दे सकते हैं। कई एक एनजीओ से आप उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एनजीओ भी आज की डेट में कई एनजीओ जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो 1098 है। मैं अपने सभी कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं से बोलूंगा कि 1098 ये नंबर आपको इमरजेंसी में जरूर याद रखना है। अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी हैरेसमेंट होता है तो तुरंत इस नंबर पे आप कॉल मिलाएं। 1098
0: जी। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1098। और चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: हाय दया ललन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: तो श्रोताओं, म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से कनेक्ट हो गए आप सभी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों के साथ अगर कोई भी ऐसी धोखाधड़ी होती है या फिर छोटे बच्चे हैं जिनको आप काम करवाते हैं और जो बच्चे काम करे पढ़ना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, किसका हेल्प ले सकते हैं। तो सर हम आगे बढ़ते हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा आखिरकार क्यों जरूरी है।
6: देखिए, बच्चे समाज का भविष्य, अगर उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।
5: बिल्कुल सर,
6: क्योंकि जो जैसे आपने देखा होगा, एक पौधा होता है, उसको अगर सही से आप खाद पानी दोगे तभी वो अच्छा बड़े होकर एक वृक्ष बनता है और फल देता है। तो सेम हमारे बच्चों के साथ भी, अगर हमें एक समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक चाहिए तो निश्चित तौर पे हमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें अच्छा माहौल देना पड़ेगा।
5: और सर हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि ये कहा जाता है कि माता पिता ही बच्चे के लिए पहले गुरु होते हैं, तो सर माता पिता की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए बच्चों के प्रति?
6: देखिए, माता पिता का विशेष रोल होता है बच्चे के जो है भरण पोषण पे। सबसे बड़ी चीज तो ये कि वो गुरु, पहले गुरु वही होते हैं और बच्चे को प्यार, शिक्षा, अच्छा माहौल, सुरक्षा दें, उसका सही से विकास हो, तो यही सारी जिम्मेदारियां होती है। और खास तौर पे छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि माता पिता को हमेशा वॉच करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे जा रहा है, किसके घर जा रहा है। कई बार हमने ऐसे केसेस भी हमारे पास में आए हैं कि जो बहुत ही नोन होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उन्होंने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट बच्चों का किया होता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
6: और बच्चों में मैं दोनों की बात करता हूँ, मेल और फीमेल दोनों की। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस नहीं आया, वो केसेस हमारे पास आते रहते हैं।
5: बिल्कुल।
6: तो बच्चों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, उनको खास तौर पर ट्रेनिंग देनी चाहिए, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है,
5: करेक्ट
6: पता होना चाहिए उनको। और बच्चों को ये शिक्षा घर के साथ साथ स्कूल्स में भी, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चे प्ले स्कूल्स में जाते हैं, क्रीच में जाता है, तो वहाँ पे भी ये शिक्षा उनको जरूर दिलवानी चाहिए बच्चों को, कि उनको पता होना चाहिए कि किसकी इंटेंशन गलत है, कौन हमें कोई लालच दे के बुला रहा है या जो है इंटेंशन उसकी। बच्चे, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं
5: होती, बच्चे ये कहते हैं
6: भगवान का रूप होते हैं, कोमल होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो हमें जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को स्कूल में दिलवानी चाहिए एडमिशन।
5: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है कि कई बार बच्चे जब अपनी बात रखते हैं ना, तो कभी कभी ना हम उनको दबा देते हैं, तो क्या बच्चों को अपनी राय रखने का अधिकार है?
6: बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर बच्चा कोई बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है या किसी चीज को पूछ रहा है आपसे या उसके मन में कोई जिज्ञासा है, अगर आप उसको डांट के डपट के उसे चुप करा दोगे तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, है ना। और जब व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है तो उसका बड़े होके बच्चे का जो एक समाज का जो हिस्सा बनता है बड़े होके, कहीं जॉब में जाता है, कहीं बिजनेस में जाता है, तो उसका व्यक्तित्व वो निखर नहीं पाता है।
5: बिल्कुल।
6: तो निश्चित तौर पे ये है कि अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है या जिज्ञासा है उसके अंदर, तो आपको पोलाइट वे में उसकी बात को समझना चाहिए। हो सकता है वो इतनी लॉजिकल बात पूछ रहा हो कि आप उसको समझ पाए।
5: करेक्ट।
6: कई बार हमें बच्चों की बातें, बचपन की बात, हम लोगों से मजाक में उड़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बात मजाक की नहीं, कुछ बात गंभीर भी हो सकती है। बच्चा अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सहजता से सुनते हुए उसको समझें और उसका निदान करें।
5: बिल्कुल जी, ये तो सर आपने बहुत सही बात कही कि बच्चों की बातें हर सिचुएशन में हमें सुननी चाहिए उनकी बात, क्योंकि कुछ नहीं पता उसके साथ बाहर क्या हुआ है और वो घर पर आके बता रहे, तो कभी कभी ना डिले कर देते हम कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ।
6: पता चला बच्चे के साथ कोई हैपनिंग हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत गलत हुआ है और बच्चा घर पे डर के बता नहीं पाता क्योंकि पेरेंट्स डांट डपट देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कुंठा का भाव बच्चे के अंदर भर जाता है और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और कई केसेस में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के भी सुसाइड के केसेस आए काफी।
5: करेक्ट करेक्ट।
6: तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो आपको उससे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना है एकदम।
5: सर आपने डिप्रेशन की बात कही है तो मैं एक बात और रखना चाहूंगी आपके साथ कि आजकल देखते हैं आप फोन हर माता पिता के पास है, हर बच्चे के पास है, जिसके वजह से माता पिता बच्चों को टाइम कम दे पाते हैं।
6: बिल्कुल ठीक कहा आपने तीनों।
5: तो सर मुझे लगता है कि इस पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को?
6: टाइम तो बिल्कुल जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, मेरी राय यही है, लेकिन कोविड के बाद से जो चीजें अब चेंज हुई है तो लोग ज्यादातर स्क्रीन टाइम, मेरा भी हालांकि मेरा भी स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन हम लोग उसे प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं। अगर हमें काम की चीज देखनी होती है तभी हम यूज करते हैं उसको, लेकिन टाइम जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, मोबाइल का कम यूज करें, टीवी कम देखें, उनको आदत डलवाइए, वो बुक्स पढ़ें, नॉवेल पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो पॉजिटिविटी थोड़ी सी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। अब आज की डेट में सोशल मीडिया आप देखेंगे मोबाइल पे इतने वल्गर कंटेंट आते हैं,
5: बिल्कुल बिल्कुल सर,
6: कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं, तो बच्चा उसको देखता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उस जहन में चीजें बैठती
5: हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
6: तो मोबाइल का यूज कम से कम करें, है ना, टीवी कम से कम देखें,
5: और मुझे लगता है कि इसका ध्यान पेरेंट्स ही देंगे तो बहुत
6: पेरेंट्स
5: अच्छा
6: को
5: रहेगा।
6: बिल्कुल डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और
5: कि बच्चा
6: बच्चों को तो खास तौर पे मोबाइल नहीं दे, बड़े बच्चों का तो चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनके ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए गैजेट्स का यूज भी है मिसयूज भी है, दोनों ही चीजें हैं।
5: बिल्कुल सर।
6: तो एक सर्टेन एज के बाद हमें जो है उन्हें यूज करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन भी क्लासेस होते हैं।
5: अगर सर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरी भाभी क्या करती है, काम करती रहती है, वो छोटा है अभी 2 साल का ही है, तो वो रोने लग जाता है तो घर पे कोई होता नहीं है संभालने के लिए, उनको फोन पकड़ा देती है। अब फोन पकड़ाने के चक्कर में उस बच्चे का आंख मतलब हमेशा रेड रहने लग गया।
6: हाँ, तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा है, इसी वजह से उसकी आईज पे इफेक्ट आया है,
5: वही ना, बच्चों की लत लग गई, अब वो हटना,
6: फोन एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी चीज है, किसी भी चीज का हो जाए, तो उस चीजों को ध्यान रखना चाहिए।
5: बिल्कुल सर। सर तो हम आगे बढ़ेंगे कि स्कूल में बच्चों के साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो उस टाइम क्या डिसीजन लेना चाहिए एकदम?
6: देखिए स्कूल में बच्चों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है या कोई भी ऐसा हैरेसमेंट होता है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत देनी चाहिए, जो संबंधित जो भी ऑफिसर या अधिकारी है उसको देनी चाहिए, और पेरेंट्स को तुरंत उस पर एक्शन लेके कार्य करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के सेहत से या उसके मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पे बच्चा कोई भी सेटबैक का कोई ऐसा

0: बिल्कुल खत्म होना चाहिए,
1: तभी जाकर हम बच्चे भी भाव जो हो रहा है उनके साथ स्कूल में वो नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल ठीक बात है, आप बचपन से ही बच्चों के बीच में जो आप माहौल क्रिएट करेंगे तो उसका ही प्रभाव आगे चल के आपको देखने को मिलता है।
1: सर तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि शो में समाज बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है?
0: देखिए, समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। अगर कहीं भी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको लेके उसको शिकायत करनी चाहिए और बच्चे को सही मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि भाई मेरा बच्चा नहीं है तो मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। अगर कहीं भी आप किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होता देखें तो आप तुरंत उसको हेल्प करें, लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, लोकल जो लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैंने एक आपको अभी नंबर बताया था 1098 हेल्पलाइन नंबर, तुरंत आप मिलाएंगे तो वहाँ से आपको तो हेल्प मिलेगी और निश्चित तौर पे जो है आप किसी का भविष्य बचा सकते हैं।
1: करेक्ट करेक्ट, वो ये ना कि भेदभाव ना रखे, चाहे बच्चे कैसा भी हो, किसी का भी हो, बच्चे भगवान का ही रूप,
0: बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आपको ये सोचना है कि भगवान का रूप है, हमें इसकी हेल्प करनी है।
1: करेक्ट करेक्ट। सो सर, हम यहाँ पे एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। श्रोताओं, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो आप हमें साथ मैसेज कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896।

0: तो सर हम आगे बढ़ते अपने शो में और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज के टाइम अगर देखा जाए तो पेरेंट्स यानी कि बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लेकर ना इतना हार्म हो कि उनको सुबह से लेकर शाम तक बुक पढ़ते रहो, मतलब खेलने की एक्टिविटी की बात आती है तो यही रहता है कि पहले अपना होमवर्क कम्प्लीट करो। तो लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है।
1: देखिए बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो लोड डाला जा रहा है आज की डेट में, जो ट्रेंड चल पड़ा है कि एक पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन लेवल, एक पैरामीटर उन्होंने बना लिया है कि वही पड़ोसी का बच्चा अगर टॉप कर रहा है तो हमारा बच्चा कम नहीं आना चाहिए, उसे ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: तो ये ना कहीं बच्चों के बीच में कॉम्प्लेक्शन क्रिएट कर देगा और जो है ये जो कॉम्प्लेक्शन है ना ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है।
0: करेक्ट।
1: तो आप उसको हर समय अगर एक प्रेशर करो कि भाई बुक्स लेके पढ़ाई करो और तुम जो है मार्क्स कम है तुम्हारे, ये जो है उसका देखो कैसा आया तुम्हारे फ्रेंड का मार्क्स तुम्हारे कम क्यों है, तो इस तरीके से अगर आप उसको बोल रहे हो तो ये भी एक तरीके से एक जो है वो हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है ना। आप उसको
0: कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर हार्म हो रहा है,
1: हार्म हो रहा है उनका, उनका मेंटल पीस हार्म हो रहा है, उनकी हेल्थ हार्म हो रही है। आप बच्चे को फ्री छोड़ दिए, उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो वहां जाएगा, उसको खेलने उतने का टाइम दीजिए, उसको एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे पढ़ाई जरूरी है उसी
0: हिसाब से खेल
1: हिसाब से खेल कूद भी जरूरी है, फिटनेस भी जरूरी है।
0: करेक्ट।
1: और खेल कूद से फिटनेस से हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील आती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में तो आप उस फील्ड में वर्क करिए, उसको जानने की कोशिश करिए कि हो सकता है भाई हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता।
0: नहीं बन सकता। करेक्ट सर, मैं यही पूछने वाली थी आपसे।
1: हर बच्चा एडवोकेट भी नहीं बन सकता।
0: करेक्ट।
1: तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है आप उसको उस फील्ड में डालिए।
0: बिल्कुल।
1: आप एक एक्सपेक्टेशन, एक पैरामीटर जो आपके माइंड सेट में है वो उसके ऊपर ना थोपिए, अपनी मर्जी ना थोपिए, तो उसको उसका डायरेक्शन खुद चूज करने दीजिए कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है।
0: करेक्ट।
1: हाँ उसको एक डायरेक्शन दीजिए जरूर, लेकिन उसको बाउंड मत करिए कि नहीं यही तेरे लिए सही डायरेक्शन है, वो उसको चूज करने दीजिए।
0: करेक्ट। और सही गलत का देखिए पेरेंट्स तो समझाते लेकिन हमें कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में भी उनकी राय भी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, पढ़ना ही है चाहे कैसे भी करो, और बाद में ये होता है कि बच्चे पूरी जिंदगी कोसते रह जाए कि मैं करना क्या चाह रहा था, कर क्या रहा हूँ, उसको वो अच्छे से नहीं कर पाते।
1: कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से बच्चों का, हमने देखा है कि उनको जो है फील्ड उन्होंने करा बीटेक है और जॉब कर रहे हैं वो बैंक में मार्केटिंग की। बीटेक का आप रिलेशन आप सोचिए कि उसको मार्केटिंग की जॉब से आपने उसको कनेक्ट कर दिया, हो सकता है अगर आप उसे मार्केटिंग में एमबीए की होता तो हो सकता है वो उसको और अच्छा कैरियर में ग्रोथ मिलता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप बच्चे को उसका इंटरेस्ट समझिए, कई कई एग्जांपल्स हैं, सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स आ रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि कम से कम बच्चे को फ्री छोड़े, उसको सही डायरेक्शन खुद चूज करने दो, उसके ऊपर कम से कम बाउंडेशन ना लगाएं। हाँ उसको ध्यान जरूर रखिए, उसको डायरेक्शन जरूर दिखाएं आप।
0: करेक्ट।
1: लेकिन डायरेक्शन दिखाने के बावजूद उसका अगर इंटरेस्ट आपको लगता है दूसरी फील्ड में तो आपको उसी फील्ड में उसको थोड़ा सा पुशअप करना चाहिए।
0: बिल्कुल सर। सो हम आगे बढ़ते सर और आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे कई बार ना सर बाहर जाते हैं या फिर घर किसी के घर भी जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी देखते हैं और उनको वो उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और कभी कभी वो घर पर भी बताते हैं तो पेरेंट्स भी नहीं बताते कि नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी हम नहीं बताएंगे, उस चीज को दबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस चीज आगे बढ़ा रहे, उनको फोर्स कर रहे कि तुम जब बच्चों को डांट नहीं रहे हो तो इसका मतलब बच्चे आगे ही जाएगा, उसको यही लत लग जाएगी चाहिए तो अच्छी बात है, जब हमारे घर वाले ही कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ और ही होगा ये। तो सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए ये बहुत गलत हैबिट है, अगर आप बच्चे आपके बच्चे के अंदर ये आदत है कि वो किसी भी चीज को उठा लेता है बिना पूछे आपसे ले लेता है ना, दुबका देता है कहीं, तो अभी तो देखिए बचपन में आपको लगेगा कि बच्चा है, बचपन की बातें हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के यही जो छोटी छोटी बातें होती हैं बड़ा रूप ले लेती हैं। हो सकता है कल को उसके अंदर ये जो हैबिट्स है इतनी ज्यादा पनप जाए कि कोई बड़ा क्राइम कर दे।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और जब बड़ा क्राइम करेगा तो निश्चित तौर पे उसको कैरियर पे भी उसके टैग लगेगा और आपकी भी उसमें इंसल्ट होगी। तो मैं तो पेरेंट्स से यही कहूंगा कि अगर बच्चे के अंदर ऐसी कोई आदत है या कोई चीजों को छुपाने की आदत है तो सबसे पहली चीज तो ये उससे फ्रेंडली अप्रोच रखिए बच्चे से। मैंने पहले भी अपने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि बच्चे से हमें फ्रेंडली अप्रोच रखनी है, उसको डांटे मारे नहीं, और काउंसलिंग सेशंस, एजुकेशन सेशंस उसके लिए अरेंज करें, उसको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। आप किसी दूसरे के घर पे अगर जा रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए,
0: करेक्ट।
1: तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों को आपको बचपन से ही उसको थोड़ा सा एक डिसिप्लिन, एक मैनर्स, उसको एटिकेट्स सिखाने पड़ेंगे। अगर उस चीज को आप बचपन में सोच के टाल देते हैं तो आगे चल के यही जो बचपन की बातें हैं बड़ी हो जाती हैं, और बड़ा जब कोई क्राइम होता है तो उसका कुछ आंसर नहीं होता,
0: उसका सॉल्यूशन फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है,
1: बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों को हमें अभी से ही ध्यान रखना चाहिए।
0: और सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बच्चे अगर टीचर उनको मार भी रहा है तो अच्छे चीज के लिए मारते थे, लेकिन उसके टाइम अगर मार देते हैं बच्चों के ऊपर तो पेरेंट्स सर पर चढ़ जाते हैं कि मेरे बच्चों को हाथ कैसे लगा दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ, बच्चों के ही मतलब साथ दे रहे हैं कि गलत चीजों को साथ दे रहे हैं, तो क्या सर ये सही है?
1: देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: मैं इसमें ये नहीं कहता कि टीचर जो मारते थे वो ठीक करते थे, और ये भी नहीं बोलूंगा कि टीचर नहीं मारते तो ठीक करते।
0: हाँ, हाँ।
1: जब हम अपने टाइम की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे, हम स्कूलिंग करते तो हमें टीचर्स डांटते भी थे, डपटते भी थे, पनिशमेंट भी देते थे, लेकिन उस पनिशमेंट का लेवल इतना नहीं होना चाहिए कि आपको कोई हर्ट हो।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: आपके मन पे, आपके दिमाग में वो चीज इतनी बुरी तरह छप जाए कि आप उसको भूल ना पाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पनिशमेंट भी थोड़ा जरूरी है, लेकिन उस लेवल तक कि बच्चे को एटलीस्ट लगना चाहिए हाँ भी ये गलत काम है, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिला है, मैं अच्छा करूंगा, तो उसका आपको एप्रिसिएशन भी दीजिए बच्चे को।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा करे तो एप्रिसिएशन भी दीजिए उसको, तो उसको कम से कम बच्चे को फील नहीं होगा नहीं हर बार मुझे डांटा जाता है। और देखिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कुछ केसेस ऐसे भी आए कि टीचर ने अगर किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया या हर्ट किया तो उसमें बच्चे की जान तक पे बनाई है।
0: करेक्ट ये सर।
1: तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज हमारी बना रखी हैं कि आप बच्चे को हर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो देखिए अपने बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है कि हमें बच्चे को कैसे समझाना चाहिए,
0: कैसे
1: टेक ओवर करना चाहिए उसको। और जो है हर चीज का सॉल्यूशन पनिशमेंट भी नहीं होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बेटर तो यही रहेगा कि उसको समझाएं, उसकी काउंसलिंग करें, एजुकेशन से समझाएं। और थोड़ी बहुत डांट डपट भी बच्चों के लिए मैं मानता हूँ ठीक भी होती है, लेकिन बस इतनी बाउंड्रीज में होनी चाहिए कि उसके मन, उसके मस्तिष्क पे उसका ज्यादा
0: कोई भी हार्म ना हो चीज़, ताकि उस चीज को, उस चीज से वो निकल ही ना सके, आगे बढ़ ही ना सके,
1: उसको सोच के बैठ जाए
0: कि हाँ उसको आगे कहीं आगे भी बढ़ रहा है तो सोचेगा नहीं मेरे साथ तो ये हो चुका है तो मैं शायद ये चीज को, इस कदम को नहीं उठाऊंगा, क्या पता वो सर सही भी हो।
1: डेफिनेटली वो मैंने बताया ना आपको कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही एक इस चीज को हम कह सकते हैं, हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं मिलते हैं आप सभी से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
5: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
4: अरे वाह।
5: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
4: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं, और ये जो अपराध हो जाते हैं उस
6: अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ। राजेश कुमार, आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
7: क्या?
6: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
7: मैं क्या करूं साहब?
6: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
7: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
6: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।
8: पास जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, फतेहपुर में नदी में डूबने से 4 युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मजबूत इमारत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार का मानना है कि अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षकों के मानदेय से जुड़े मामलों को सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए। श्री योगी ने ये बात आज लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमा किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5,00,000 तक के स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों और सकारात्मक कदम से बेसिक शिक्षा में कायाकल्प हुआ है। सरकार की मंशा है जब हर बच्चा शिक्षा हासिल करे, ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
9: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना इसको 0 तक पहुंचाना है। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
8: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। वो आज गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के क्रम में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर केंद्रित इस सत्र में श्री योगी ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। श्री योगी ने केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है, जिससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
10: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है, जिन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5,00,000 रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के अभियान का क्रम है।
8: श्री योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन शुक्ल, पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश में जारी डिजिटल जनगणना के पहले चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 21 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वगणना का डिजिटल प्रपत्र भरा। इस अवसर पर श्री योगी ने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। उधर मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां मकानों की सूची तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
11: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधा और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
8: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने आज पीलीभीत में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया है। श्री गंगवार ने कहा कि जनपद में 1,985 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
12: मोदी योगी सरकार बड़े बड़े भाषण घोषणाओं में यकीन नहीं करती और जो घोषणा करती भी है वो धरातल पे, जमीन पे, गांव पे लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और उन योजनाओं को, खास तौर से स्वास्थ्य की सेवाओं को धरातल पे पहुंचाने में आप लोगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
8: गाजियाबाद स्थित एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई, निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी वाले फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने गोवर्धन और वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
13: मथुरा समेत समूचे ब्रज मंडल में आज से एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहुं और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन, द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टर में बांटकर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
8: प्रदेश में आज हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 5 अन्य घायल हो गए हैं। फतेहपुर जिले में रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के चिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। उधर शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी जारी रहने और कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बलिया, बांदा, चंदौली, चित्रकूट, उन्नाव और वाराणसी में कल भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में मानसून के 18 जून को दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इस साल मानसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा होने का भी पूरा अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनुदेशकों को 5,00,000 तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में बेसिक शिक्षा का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री गोरखपुर के सहजनवा में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने के लिए किया प्रेरित। प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, फतेहपुर में नदी में डूबने से चार युवकों ने गंवाई जान। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
7: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
6: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
7: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
6: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
8: थारी किस्मत में गुलामी लिखे हुए।

0: स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो।
4: उठा माजा किंग। ओ माजे किंग।
5: मी
6: दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की। मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली मेट्रो 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। श्रीमती गुप्ता ने ये घोषणा उत्तर पश्चिम दिल्ली रोहिणी वेस्ट स्थित यूनिटी वन मॉल के पास आयोजित 2 दिवसीय मेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेला के उद्घाटन समारोह के दौरान कही।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के दृष्टिकोण को देश के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यह मेला महिलाओं द्वारा तैयार स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने और उन्हें बाजार से जोड़ने का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि राजधानी की प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े और अपना उत्पाद तैयार करे तथा उसे बाजार तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों के माध्यम से महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस मेले में विभिन्न बैंकों को भी शामिल किया गया है, जिससे स्वयं सहायता समूह की बैंकिंग और वित्तीय पहुंच मजबूत हो सके। इस मेगा मेला में लगभग 24 स्वयं सहायता समूह ने भाग लिया। मेले में हस्तशिल्प, खादी, घरेलू उत्पाद, खाद्य सामग्री और अन्य हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री की गई। साथ ही उत्तर पश्चिम जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हस्तशिल्प को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
6: शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी के ब्लॉक ए में लगभग 30 लाख रुपए और असलादपुर में जनकपुरी में लगभग 71 लाख की लागत के कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को अधिक विकसित और सुविधायुक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
8: इन विकास कार्यों में जनकपुरी के ब्लॉक ए में विभिन्न सड़कों और बैंक लेन निर्माण कार्य शामिल हैं। वहीं असालतपुर जनकपुरी में सड़क, नाली निर्माण, पार्क सौंदर्यकरण और बाउंड्री वॉल जैसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि बेहतर जुड़ाव, स्वच्छता और मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्षेत्रवासियों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार कार्य जारी है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्री ने चंद्रनगर और नारंग कॉलोनी में भी विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें बेहतर सड़कें, सुगम आवागमन और पार्कों का सौंदर्यकरण शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ अक्षित कुमार।
6: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार आगामी सप्ताह से दिल्ली में राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू करने जा रही है। श्री सचदेवा ने कहा कि इस पहल के माध्यम से दिल्ली की भाजपा सरकार 2025 का अपना एक और चुनाव संकल्प पूरा करेगी। उन्होंने कहा है कि 8 वर्ष से अधिक समय के बाद राजधानी में लगभग 2 लाख नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहब सिंह ने आज घिटोरनी गांव में नवनिर्मित तरला मोहल्ला चौपाल और वाल्मीकि बस्ती चौपाल का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह चौपाल सामाजिक समरसता, जन सुविधाओं और स्थानीय नागरिकों के संवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के गांव, देहात और हर वर्ग के विकास के संकल्प को भाजपा सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक करतार सिंह तंवर, निगम पार्षद सहित अनेक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में एक रुपए की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में एक किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। सचिव ने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षण गृह एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मंत्रालय के अनुसार ये सुविधा तेजी से बढ़ रहे फुटवेयर क्षेत्र के लिए देश की गुणवत्ता जाँच व्यवस्था को मजबूत करेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार इन ट्रेन का संचालन कल से प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि अन्य दिनों भी जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने यह भी कहा है कि यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। साथ ही इस क्षमता का विस्तार का उद्देश्य बढ़ती यात्री संख्या के दौरान निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करना और यात्रियों का सुचारू प्रबंधन करना है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। आज सुबह करीब 5:15 बजे कोटा रेल मंडल के नागदा के पास त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पिछले 2 डिब्बों में आग लग गई, जिनमें एक गार्ड का डिब्बा और एक AC 3 टायर डिब्बा शामिल था। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। दोनों डिब्बों को तुरंत अलग किया गया और घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
6: राजधानी में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: ये भारतीय व्यापार महोत्सव के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने और भारतीय व्यापार को घरेलू तथा वैश्विक अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महोत्सव को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से देश को वैश्विक व्यापार, संसाधनों, विनिर्माण और उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से भी निहित है, जिसके अंतर्गत देश भर के व्यापारियों, उद्यमियों, एमएसएमई, नवाचार कारीगरों तथा स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
6: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव इस महीने की 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कनाडा की नागरिकता दिलाने की एवज में लगभग 1,80,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक अप्रवासन सलाहकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक महिला से कनाडा की नागरिकता दिलाने का झूठा वायदा कर यह रकम हड़पी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप बरामद किया है जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत, वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड, प्रवास से संबंधित दस्तावेज, सोशल मीडिया चैट और मामले से संबंधित अन्य जानकारी होने की आशंका है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला की एक विशेष इकाई ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 8 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया है। मामले की जाँच जारी है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद दिल्ली के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले आज एक अन्य मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। और राजधानी में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा। हालांकि कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप

0: ये देख।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और बिल्कुल श्रोताओं, हम आपसे मिलना नहीं भूले हैं। देखिए, आज सुबह से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, तो हमारा दिल बहुत बेचैन था। तो हमने कहा चलिए अपने श्रोताओं से, सुबह तो मुलाकात नहीं हुई है लेकिन शाम को तो हम ज़रूर मुलाकात करेंगे, क्योंकि आपके बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। गुड इवनिंग, कैसे हाल चाल है आपके? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे और इस वक्त इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि कोई तो आए जो हमें अपने मतलब आपके दिल के जज्बात, आपकी बातें सुने। एंड मैं यहाँ पर सुनने के लिए आपकी बातें और आप तक बहुत कुछ बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, अभी करेंगे ढेर सारी बातें। अभी इस कार्यक्रम में अपने वॉइस नोट, अगर आपको कोई लाइक शायरी वगैरह का शौक़ है तो आप मुझे वॉइस नोट यहाँ पर पहुँचा सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। संडे की खूबसूरत सी शाम में आरजी खुशी आप सभी का स्वागत करती है। और श्रोताओं, वक्त अभी हुआ है यहाँ पर 10:22 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। एंड आरजी क्या कुछ स्पेशल है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सुनवाती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए। इंजॉय कीजिएगा, लौट कर आती हूँ इस प्यारे सी गाने के उस पर।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संडे की शाम में। खुशी आपके साथ है और लवली इवनिंग है, बट हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है एवरीवन। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो अभी लाइक कहीं भी ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जल्दबाजी ना करें, आराम से ही जाएं। क्योंकि थोड़ी सी भी अगर जल्दी आप करते हैं, थोड़ी सी भी लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी करने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो आप हमेशा समय से पहले ही घर से निकलिए, ताकि आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो वहाँ समय से पहले पहुँच जाएँ, समय पर पहुँच जाएँ। एटलीस्ट क्या होता है ना, जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखो। और जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगी। अक्सर मैंने भी देखा है, मैं भी ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि इतनी ट्रेन में भीड़ होती है, और जो पैसेंजर होते हैं एंड जो लोग होते हैं ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, चढ़ने वाले और उतरने वालों की मेरे को समझ भी नहीं आता है। इन लोगों का क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो उतरने वाले सोचते हैं कि हम उतर जाएं और चढ़ने वाले सोचते हैं कि हम चढ़ जाएं। इस चक्कर में क्या होता है ना, तो उतरने वाला ठीक उतर पाते हैं और जल्दी से ना ही चढ़ने वाले टाइम पर चढ़ पाते हैं। इस चक्कर में ना कई बार ही क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, लोग गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है। तो जो सफ़र करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो उन्हीं से मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा टाइम आप पहले उतरने दीजिए, क्योंकि जब ट्रेन खाली होगी तभी तो आपको भी स्पेस मिलेगा ना, तभी आप बैठ भी पाएंगे इजीली। कई बार ऐसा होता है कि लोग चढ़ने के वक्त धक्का मुक्की देते हैं, उसकी वजह से ना सामने वाला निकल पाते हैं और ना ही वो ठीक से चढ़ पाते हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि देखिए अगर जो जनता है, जो पब्लिक है, जो ट्रैवल करते हैं, अगर वो ही इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आगे कैसे लाइक चीज़ें ठीक होंगी। तो मैं कहती हूँ कि सभी से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक इंसान से ही सब कुछ नहीं ठीक होगा, सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए। पहले ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उतरने दीजिए, उसके बाद आराम से आप चढ़ जाइए। और इस शाम को हम आपकी खूबसूरत बनाएंगे साथियों, आप भी हमारे साथ इस ब्यूटीफुल शो में, ब्यूटीफुल शाम में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई शायरी आती है, जो आपका मन है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो अपनी शायरी अपने वॉइस नोट में हमें पहुँचाइए, हम भी आपके अंदाज को यहाँ पर लाखों श्रोताओं तक सुनवाना चाहेंगे। और दोस्तों, आज 17 मई की तारीख है, दिन है संडे का, समय हुआ है 8:30, और आज बहुत ही खूबसूरत सा दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व दूर संचार दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि तकनीकी सिर्फ मशीन का जाल नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत सा एहसास है। कभी एक चिट्ठी पहुंचाने में दिनों बहुत दिन लग जाते थे, और आज एक छोटी सी कॉल, एक छोटी सी वीडियो चैट या फिर एक मैसेज अपनों को पल भर में करीब ले आता है। तकनीकी ने सिर्फ दूरियां कम नहीं की हैं, बल्कि रिश्तों में भी अपनापन, बातों में मिठास और ज़िंदगी में जुड़ाव बढ़ाया है। एंड आज दादा दादी अपने बच्चों को वीडियो कॉल पर मुस्कुराते हुए देख लेते हैं। दोस्तों, हजारों किलोमीटर दूर होकर भी दिल के करीब महसूस होते हैं, और रेडियो वो तो हमेशा से ही दिलों को जोड़ने का सबसे प्यारा माध्यम रहा है। एंड इस खूबसूरत शाम में हम आपके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं श्रोताओं, आप भी जुड़ जाइए, और भी बहुत सारी बातें हम आप सभी के साथ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आज की शाम आपको, ये नाम खुशी यहाँ पर आपको डेडिकेट करती है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, आप इस ट्रैक को इंजॉय कीजिएगा और अपना वॉइस नोट भी हमें पहुँचाइएगा। हमें इंतज़ार है आपके वॉइस नोट का, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए, इंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से ट्रैक के इस पर।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और दोस्तों, यहां पर वक्त हुआ है 8:45। देखिए ना, समय कितनी जल्दी से गुजरता है और आप सब भी इस समय बिजी हैं। मैं जानती हूं जो हमारी विमेन्स सुन रही हैं वो अभी किचन में बिजी हैं, खाना बनाने में बिजी हैं और एक कुछ अभी प्लान कर रहे हैं कि चलिए बाहर, आज बाहर ही क्यों ना डिनर कर लें अपनी फैमिली के साथ। होता है संडे का दिन होता है एक ऐसा ही जब अपनी पूरी फैमिली के साथ हम लोग होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा पल होता है। एंड शाम का समय तो बहुत स्पेशल होता है, क्यों दोस्तों? और आप अभी कार में बैठे हैं, स्माइल कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि कहाँ जाया जाए, समझ नहीं आ रहा है। हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। और आज मैंने आपको बताया है कि बहुत ही खूबसूरत सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व दूर संचार दिवस। जी हाँ साथियों, एंड देखिए ना, आप चीज़ें कितनी इजी हो गई हैं। जहाँ पर हमें पैसों के लिए पहले घंटों लाइन लगानी पड़ती थी, अब UPI के माध्यम से कितने सारे ऑप्शंस हो गए हैं जिनसे हम 2 मिनट में 1 सेकंड में पैसे भेज देते हैं, तुरंत ट्रांसफ़र कर देते हैं।

मोबाइल नंबर है 9837896896। अगर कोई आपको प्यारी सी शायरी आती है या फिर कुछ कहना चाहते हैं आप, तो अपना वॉइस नोट हमें पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो इस खूबसूरत सी शाम में, है ना, बहुत ही प्यारी सी शाम है और इस शाम को आप इंजॉय कर रहे हैं मैं जानती हूँ। और दोस्तों उन सभी माध्यमों को दिल से धन्यवाद कहें जो हमें अपनों से जोड़ते हैं, मुस्कुराहट बांटते हैं और दुनिया को एक परिवार जैसा बना देते हैं। और इस खूबसूरत शाम में मैं बहुत प्यारे प्यारे गीत आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लाइफ में ना एंजॉय करते रहा करो, लाइफ खत्म हो जाएगी लेकिन प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए ना आप की लाइफ में जैसी भी आपकी लाइफ चल रही है उसको एंजॉय करो, हैप्पीनेस के साथ जियो, क्योंकि जिंदगी में ना जब हम जिंदगी में होते हैं तो टेंशन भी बहुत होती है, प्रॉब्लम भी बहुत आती है, लेकिन वक्त कभी नहीं रुकता है, वक्त बदलता है। चाहे हमारा परेशानियों भरा हो या हमारा खुशनुमा पल हो, हर समय चेंज होता रहता है। आज परेशानियां हैं तो कल खुशहाली भी आएगी आपके जीवन में। निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव सोचिए, मुस्कुराइए और इस शाम को इंजॉय कीजिएगा। एवरीवन एक खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए आरजी खुशी यहाँ पर प्ले करती है, तो इसको इंजॉय कीजिएगा। एंड बहुत ही खूबसूरत सही गाना है, आप सुनेंगे ना तो सुनते रह जाएंगे। कुमार सानू जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में दो दिल मिल रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा गाना है। तो मैंने कहा चलिए अपने श्रोताओं को भी इस शाम में और भी ज्यादा लाइक आपकी शाम को खूबसूरत बनाना खुशी की जिम्मेदारी है, और ये बेहतरीन सा गाना आप सभी के लिए।

0: समाधान योजना 2026 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर्स पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लिसनर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। 9:02, खुशी यहाँ पर है। और दोस्तों, ये शाम बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कहा, देखिए, संडे अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि सभी को संडे का भी सब्री से इंतजार होता है कि संडे कब आएगा और कैसे पूरे दिन संडे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है ना एवरीवन। इतने सारे काम होते हैं, इतना संडे किसी के लिए तो ऐसा होता है कि बस वो संडे के दिन सिर्फ सोते ही हैं, और किसी के लिए ऐसा होता है कि वो पूरे दिन काम करके थक जाते हैं, मन करता है कि अब रेस्ट करें। फिर कल की चिंता होती है कि यार मंडे भी है कल, तो कल की भी तैयारी करनी होती है। और कुछ अभी जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं संडे को कि कल जो होगा देखा जाएगा, अभी फिलहाल जो टाइम है उसको अच्छे से स्पेंड करें, नो टेंशन नो ड्रामा, है ना एवरीवन। वेरी गुड, ऐसे ही रहो, खुश रहो यार, बहुत प्यारी जिंदगी है। ज्यादा टेंशन लेकर ज्यादा सोचने से क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हैप्पी रहिए और एफएम मुरादाबाद 89.6 को सुनते रहिए। एंड हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी आई है। जैसे मैंने कहा था एवरीवन कि आप मुझे यहाँ पर शायरी भी पहुंचा सकते हैं, अपना वॉइस नोट हमें पहुंचाइए, कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। एंड आज कह डालिए, क्योंकि कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि मन में बहुत कुछ चलता है लेकिन हम कह नहीं पाते किसी से, तो हम सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं आपकी दिल की बातें, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो शायरी, अगर आप कुछ अपनी जुबानी सुनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सुनाइए। ये प्लेटफॉर्म, ये खूबसूरत सा माध्यम आपके लिए है, आपका एफएम मुरादाबाद 89.6। और यहाँ पर जो शायरी यहाँ पर भेजी है, बड़ी प्यारी सी मुस्कान की शायरी यहाँ पर आई है। नाम भी बड़ा ही प्यारा है मुस्कान, और क्या भेजा है मुस्कान जी ने, जरा सुन लेते हैं। उन्होंने आवाज तो अपनी भेजी नहीं है वॉइस नोट में, कहती है कि मैम मैं अपना वॉइस नोट तो नहीं पहुंचा पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं अपने दिल की जो जज्बात है वो मैं कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि कोशिश दो तरफ से हो तो निखर जाते हैं रिश्ते, कोशिश दोनों तरफ से हो तो निखर जाते हैं रिश्ते, एक तरफा कोशिश में अक्सर बिखर जाते हैं रिश्ते, जहां हो प्यार और सम्मान वहां मजबूत हो जाते हैं रिश्ते, लहजे में बस बेरुखी हो वहां खामोश हो जाते हैं रिश्ते। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी आपने लाइनें लिखी है मुस्कान, थैंक यू सो मच। और ये मैसेज हमें पहुंचाती है विकास।

हसनगर से गुड इवनिंग भी पहुंचाया है. एग्जैक्टली, रिश्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं. एंड एक तरफा कोशिश कब तक इंसान करेगा. अगर देखिए, रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, एक तरफ से नहीं. अगर आपने गलती की है तो आप माफ़ी भी मांग सकते हैं, और अगर सामने वाला आपको मना रहा है तो आप मान भी जाइए. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नाराज नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर हो भी रहे हैं तो मान भी जाइए. क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना, बहुत खूबसूरत होते हैं, और सच्चे रिश्ते हर किसी को नहीं मिलते हैं. अगर आपके पास हैं तो उन रिश्तों की कद्र कीजिए, उन्हें संभाल कर रखिए. और बाकी नोक झोंक तो हर रिश्ते में होती ही है. एक ब्यूटीफुल ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, इसको एंजॉय कीजिएगा. लौट कर आती हूँ मैं. अगर हाँ, आपके पास कोई शायरी है तो आप अपना वॉइस नोट ज़रूर हमें पहुँचाइएगा. मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लो. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. खुशी है आपके साथ, मुस्कुराइएगा. और ये गाना आप सभी के लिए है.

आकर्षित किया मत, प्लास्टिक फैंटास्टिक बम्बास्टिक बनावट लगा मत, धक्के मत धक्के दिखा मत, मार्केट में वैसे ही भारी गिरावट, नखरे लड़ा मत, पुरानी कहावत जो करता मोहब्बत नहीं रहता सलामत।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और संडे की शाम बहुत ही खूबसूरत सी है। वक्त हुआ है 9:17 और दोस्तों कभी कभी ना एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा बोल जाती है और एक ऐसी ही तस्वीर कुछ ऐसे ही एहसास दिलाती है। एक माँ जो अपने बच्चों को गोद में नहीं बल्कि संघर्ष के बीच संभाल रही है, एक तरफ जिम्मेदारियों का बोझ तो दूसरी तरफ बच्चों की मासूम मुस्कान। ये सिर्फ एक महिला मजदूर की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और दोस्तों वो तस्वीर नहीं है, ये उन लाखों माओं की कहानी है जो अपने सपनों से पहले अपने बच्चों का भविष्य चुनती हैं। धूप हो, थकान हो या मुश्किल हालात, माँ कभी हार नहीं मानती। वो खुद टूट जाती है लेकिन अपने बच्चों को बिखरने नहीं देती। और सच कहूँ तो देश की असली ताकत वही हाथ है जो मेहनत से घर भी बनाती हैं और प्यार से परिवार भी। माँ की ममता और मेहनत दोनों की कोई कीमत नहीं होती। दोस्तों इस खूबसूरत से एहसास में, इस प्यारे से जो मैंने सोशल मीडिया पे एक बहुत ही खूबसूरत सी पोस्ट देखी है, वो बहुत ज़्यादा वायरल भी है। एक मम्मा है जो धूप में संघर्ष कर रही हैं और उनके साथ में बच्चे भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये होता है ना कि मम्मा चाहे कितने भी थक जाएँ लेकिन वो बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। घर में वो पूरा दिन सुबह से पूरे घर को संभालती हैं, रात में सबसे लेट वो सोती हैं और सबकी खुशियों का ख्याल रखती हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं वो पीछे रखती हैं। तो मैं कहती हूँ कि दोस्तों जो मम्मा आपका पूरा दिन ख्याल रखती हैं सुबह से लेकर रात तक, एंड आप भी उनके बारे में उनका ख्याल करो, उनसे प्यार करो, थोड़ा सा वक्त उनको भी दो, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो। दोस्तों के साथ आप बहुत ज़्यादा गप्पे लड़ाते हो, बहुत ज़्यादा बातें करते हो एंड सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं कि मत चलाओ क्योंकि आजकल सारे काम फ़ोन से होते हैं। लाइक बिज़ी रहना ठीक है लेकिन इतना भी बिज़ी मत हो कि अपनों को ही भूल जाइए, अपनों को ही आप भूल जाए। तो इतना बिजी मत रहिए, थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकालिए जो आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी लाइक लगा देते हैं और वो अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं स्किप कर देते हैं कि नहीं हमारा बच्चा खुश होना चाहिए, उसको वो सारी चीज़ें मिले जो जिसमें उसकी खुशी हो, जिसमें उसको खुशियाँ मिलें। तो दोस्तों उनके लिए भी आप थोड़ा टाइम निकालें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी हाल चाल पूछें आप एंड उनके साथ बैठकर एक टाइम का डिनर करें। अगर आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता है क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि टाइम नहीं होता है, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आप बनाइए जिसमें आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दें। नो फोन, नो फ्रेंड्स, ओनली फैमिली। तो ऐसा अपनी फैमिली को टाइम दो, उनको भी खुशी मिलेगी कि हाँ जिन बच्चों के लिए हम इतना कुछ करते हैं वो भी हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमें प्यार करते हैं। और एक खूबसूरत सा ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं एवरीवन तो मुझे तुरंत मैसेज कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और यहाँ पर कुछ अपडेट भी हैं जो आपको देनी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। रेडियो खुशी आपसे कहती है कि रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ मुस्कुराते भी रहिए क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, वक्त हुआ है 9:31। बहुत ही खूबसूरत समय और बहुत प्यारी प्यारी शायरियाँ आपकी यहाँ पर आ रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास कोई शायरी है, लाइक कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं, अपने तमाम सुनने वाले श्रोताओं तक पहुँचाना चाहते हैं, जो भी आपके दिल में कुछ बातें हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं, लेकिन ये रेडियो आपकी दिल की बातें पहुंचाएगा आपके लाखों श्रोताओं तक। तो आप मुझे भेजिएगा अपना वॉइस नोट, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। हाँ जी, 9838976896। और कुछ यहाँ पर बड़े बहुत ही प्यारी प्यारी सी शायरी आई हैं। एंड ये मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर रितिका जी का, और रितिका कहती हैं, हाय मैम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, वेरी गुड इवनिंग डियर। कहती हैं कि मैंने कुछ लिखा है और वॉइस नोट तो मैं अभी बिजी हूँ तो नहीं पहुँचा पाई हूँ, लेकिन हाँ कुछ लाइनें हैं मैम, सो आप प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, श्योर। और इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी हंसी का असर कुछ ऐसा हुआ, तुम्हारी हंसी का असर कुछ ऐसा हुआ, दिल हमारा पहले से ज़्यादा अब तुम्हारा हुआ। क्या बात है डियर, ओए होए होए लड़की, बहुत ही खूबसूरत सी आपकी शायरी है। और खूबसूरत सा ये प्यारा सा जो आपने ये कॉम्बो भेजा है ना, लाइनें इतनी खूबसूरत हैं आपकी कि मेरा दिल जो है ना अब वो तुम्हारा हो गया, सच में कह रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अंकित। और अंकित जी हमारे साथ मंझोली से ही अपना मैसेज पहुँचाते हैं मुरादाबाद से। कहते हैं कि ना चांद चाहिए ना सितारे चाहिए, ना चांद चाहिए ना सितारे चाहिए, बस हर शाम तेरे साथ गुजर जाए, ये लम्हा हमें चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, हमें नहीं पता था कि हमारी जो श्रोता हैं वो इतने मतलब शायर भी हैं। मुझे लगा था कि यहाँ पर बस कुछ ही शायरी आने वाली है, लेकिन बहुत प्यारी प्यारी शायरी आप सभी की आ रही है, तो हम सभी को मेंशन करेंगे। लेकिन मैंने सोचा था कि आपकी वॉइस नोट आपकी आवाज़ में ही हम क्यों ना खुद सुने तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें भी, हमारे श्रोताओं को भी। तो यहाँ पर हम कुछ और गाने ब्यूटीफुल प्ले करते हैं आप सभी के लिए। श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सिंक को बिल्कुल भी मत घुमाइए और अपने संडे की शाम को खूबसूरत बनाइए। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप अभी ऑन द वे कार में हैं इस समय, तो प्लीज़ कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए, लाइक सावधानी से गाड़ी चलाइए, फ़ोन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो उस समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, सीट बेल्ट ज़रूर पहने और सीट बेल्ट बांध के ही गाड़ी चलाएं, ड्राइव करें। एंड जो टू व्हीलर वाहन चलाते हैं उनको भी बोलना चाहेंगे कि हेलमेट आप प्लीज़ ज़रूर पहनिए, सेफ्टी से रहिए, क्योंकि सावधान रहेंगे तभी तो आप सुरक्षित रहेंगे। और छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, और आपकी सेफ्टी ही, आपकी सुरक्षा ही सबसे बड़ी ज़िंदगी की जंग है। तो इस जंग को जीतिए, इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए।

0: सिमरन।
1: और ए भगवान, मैं मुझे लगा कि भैया क्या हो गया है। देखिए कभी भी ऐसे ही हो जाता है, अगर कहते ना कि छोटी सी नजर हटी दुर्घटना घटी, तो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखो, बाकी मुस्कुराते रहो। FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहो, और एक बहुत ही बेहतरीन गाना आप सभी के लिए जो आपके सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएगा, यहाँ पर मैंने चुना है आप सभी के लिए। तो आप इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे से गाने के इस पर।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जी हाँ, सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और यहाँ पर समय हुआ है 9:51 और हमारे पास बहुत ही प्यारा सा सबीना खान जी का मैसेज आया था और वो कहती हैं कि खुशी जी, जब आप रेडियो पर आती हैं, आपकी आवाज़ हम सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमारा दिल खुश हो जाता है और हमारी फैमिली भी आपको सुनकर अच्छा फील करती है। सो थैंक यू सो मच सबीना जी। एंड हमारी पूरी कोशिश होती है कि जब भी हम अपने श्रोताओं के साथ कनेक्ट हों, उनके साथ जुड़ें, तो ऐसा कनेक्टिविटी लाइक एक आप सब हमारी फैमिली ही हैं। और जब अपने परिवार के साथ हम होते हैं तो खुशी तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्यों दोस्तों। और यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी सी शायरियाँ भी आई हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास कोई शायरी है तो आप हमें भेजिएगा, तो यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी भेजी है हमें रोहित जी ने। और कहते हैं कि शाम की ठंडी हवाओं में एक प्यारा सा एहसास रहता है, शाम की ठंडी सी हवाओं में एक प्यारा सा एहसास रहता है, शायद इस दिल को हर पल बस तुम्हारा इंतज़ार रहता है। ओ हो, क्या बात है रोहित जी, किसका इंतज़ार रहता है आपको।

एक और शायरी हमारी पास आई है और ये शायरी भेजी हमें दीपिका जी ने। कहती हैं, तुम्हारा ख्याल भी क्या कमाल करता है, तुम्हारा ख्याल भी क्या कमाल करता है, ज़रा सा आए तो दिल खुशहाल करता है। यूँ तो अधूरी सी लगती थी ये ज़िंदगी, यूँ तो अधूरी सी लगती थी ये ज़िंदगी, पर तुम्हारा साथ इसे बेमिसाल करता है। ओ माय गॉड, पर आपने बताया नहीं कि शायरी किन के लिए है। इतनी खूबसूरती से आपने इसको डेकोरेट करके भेजा है, थैंक यू सो मच। और कोई तो स्पेशल है, कोई बात नहीं, मत बताइए, बट आपने अपनी शायरी पहुँचाई, उसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है और ये पूजा जी का आया है विकास नगर से। कहती हैं, मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, और संडे हम सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे थे लेकिन आप आई नहीं, और हमने आनंद सर को सुना, अच्छा लगा, बट हमने आपको बहुत मिस किया। मैं आपको बताऊँ दीपिका जी, एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी मैं भी आपको बहुत ज़्यादा, आप सबको बहुत मिस करती हूँ। तो मैंने कहा, देखिए सुबह से तो हम दोपहर तक नहीं आए हैं लेकिन शाम में तो हम अपने श्रोताओं से ज़रूर कनेक्ट होंगे, चाहे कुछ भी हो। फिर हम फटाफट से भागते दौड़ते ऑफिस आए और आपसे बातचीत कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। एंड एक बहुत ही प्यारी सी लाइनें लिखी है इन्होंने कि सुकून क्या है हम नहीं जानते थे, सुकून क्या है हम नहीं जानते थे, तुम मिले तो ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी। ओ हो, क्या बात है भाई। वैसे हाँ दोस्तों, देखिए कभी कभी लाइफ में ना कुछ ऐसे इंसान मिल जाते हैं जिनसे मिलकर दिल को सुकून मिल जाता है और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का। साथ में तालिब अली जी हैं, अंजुम जी हैं, नसरीन जी हैं, हुमैरा हैं, और ये कहते हैं, आदाब खुशी जी, कैसी हैं आप? आपका शो इस वक्त हम सुन रहे हैं सभी परिवार के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत। आप सब जो रेडियो के प्रति प्यार करते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है, और हम आप सभी को दिल से सलाम करते हैं कि आपकी लाइक आप इतनी एक्टिव रहते हैं, आप सब लिसनर्स फटाफट से हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप सब कनेक्ट होते हैं, तो लगता है दिल को सुकून मिल जाता है, लगता है कि हाँ अपने परिवार वाले अपने साथ कनेक्ट हो गए हैं। और ये जो रिश्ता है ना, बहुत ही खूबसूरत सा है। श्रोताओं, इस रिश्ते को संभाल कर रखो, और हाँ अपनी फैमिली के साथ आप खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो हर पल को। एंड अब मैं आपसे जाने की अनुमति लेना चाहती हूँ क्योंकि वक्त भी हो गया है 9:55, और जाते जाते बस यही कहना चाहेगी खुशी कि अपनों का ख्याल रखिए हर पल, उनके साथ तो रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि काम के सिलसिले से बहुत बिजी भी रहना होता है, लेकिन बिजी के साथ साथ ना, देखिए बिजी रहना भी ज़रूरी है क्योंकि काम भी करने हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक जिनके बिना लगता है कि हाँ हम प्रोफेशनली थोड़ा सा होना भी चाहिए ज़िंदगी में। बिजी होना, अगर हम बिजी नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे तो आगे फैमिली को कैसे चला पाएंगे? तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं जिनको बखूबी निभाना पड़ता है, लेकिन काम के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपका सुबह से लेकर शाम तक इंतज़ार करती हैं, आपके लिए आपकी पूरी खुशियों का ख्याल रखती हैं, हर एक छोटी चीज़ आपके लिए वो तैयार रखती हैं। लाइक समय से पहले ही आपको ऑफिस जाना होता है तो आपका ड्रेस तैयार मिलता है, प्रेस किया हुआ मिलता है, आपका हैंकी, वॉलेट, आपका सारी सामान आपको एक जगह मिल जाती है। लाइक होता है ना कि जब ऑफिस जाना होता है तो जो घर की फीमेल्स होती हैं उन्हीं से सब चीज़ें मालूम की जाती हैं कि मेरा ये कहाँ रखा है, मेरा वो कहाँ रखा है, लाइक कोई भी चीज़ ढूंढनी होती है, क्योंकि कुछ मैं सभी को नहीं बोलूंगी, लाइक कुछ ऐसे बॉयज भी बॉय होते हैं जो अपनी चीजें अपनी ठीक जगह पर नहीं रखते हैं, व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं, फिर बाद में जब कहीं जाना होता है तो वो जल्दबाजी में सब चीजों को ढूंढते हैं, पूरा घर ना वो अस्त व्यस्त कर देते हैं। लेकिन जो फीमेल होती है ना, वो घर को बड़ा मतलब सजाकर, संवार कर, और चीजों को उनको डिसिप्लिन में रखती हैं, सब चीजें को
चीज़ें करके, तो उन्हीं से सब चीज़ मालूम की जाती है घर में कि कहाँ पर रखा है, तो लड़कियाँ फटाक से ढूंढ कर दे देती हैं, और लड़कों को सामने चीज़ होगी लेकिन नज़र नहीं आएगी, पता नहीं क्या होता है। तो इसीलिए कहती हूँ कि जो आपकी खुशियों का ख्याल रखते हैं तो उनके लिए भी आप टाइम निकालिए, और कुछ उनको भी गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट नहीं तो आप थैंक यू भी बोलेंगे ना, वो उसमें भी खुश हो जाएंगी। और छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही ये जो चीज़ें हैं ना रामबाण का काम करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ज़िंदगी में और ज़्यादा खुशियाँ लेकर आती हैं। बस जाते जाते खुशी इतनी ही बोलेगी, इतना ही बोलेगी कि इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखो, अपनी ज़िंदगी को बिंदास जियो, और टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जो होगा बेस्ट होगा, पॉजिटिव सोचिए। FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए, अपनी लाइफ को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते रहिए। और एक प्यारा सा गाना है, ओल्ड दिस गोल्ड, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैंने कहा इस ट्रैक को मैं प्ले करती हूँ, और अपने श्रोताओं से इसी गाने के साथ मैं बाय बाय टेक केयर बोलती हूँ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, एंड शब खैर, शुभ रात्रि एवरीवन। मिलेंगे आपको सेम टाइम सेम जगह अर्ली मॉर्निंग, जी हाँ हम आपको मिलने वाले हैं टुमारो मॉर्निंग एंड 10 बजे, ठीक है, सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम सोच बदलो में। जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोताओं, आज सोच बदलो प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाज के उन छोटी छोटी बातों को जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं अकेला आपका साथ नहीं दे रहा हूँ, मेरा साथ निभाने के लिए कुमकुम मेरी प्यारी सी दोस्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। हेलो कुमकुम, आप कैसे हो?
1: हेलो अनन, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल, हम जब अपने श्रोताओं से बात करने आते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी ज्यादा टेंशन चल रही हो, लेकिन यहाँ स्टेशन में आके सब भूल जाते हैं और सब मधुर मधुर हो जाता है। क्यों, सही कहा ना?
1: बिल्कुल, मैं जिस टेंशन के साथ आई थी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मुझे दिक्कत क्या थी।
0: यार यही तो रेडियो की एक पावर होती है कि आप जो मर्जी मतलब जो है सोच लो, लेकिन जैसे माइक ऑन बटन ऑन आपकी टेंशन छू मंतर, मतलब ऐसे लगता है कि एक नया जन्म ले लिया है हमने थोड़े टाइम के लिए, करेक्ट?
1: या बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम नहीं है, कुछ नए जनरेट हो गया है।
0: एब्सोल्युटली सही कहा। सो चलिए श्रोताओं, आज जो है इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाएंगे और आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में सोच बदलो प्रोग्राम में मोबाइल की दुनिया या रिश्तों की दूरी।

0: दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से वेलकम बैक करते हैं आपका। मैं आनंद और मेरे साथ है कुमकुम। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। सोच तो हमारी बदलेगी दोस्तों, जब हम प्रयास करेंगे छोटी छोटी चीजों को बदलने का तो सोच तो बदल ही जाएगी। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। दोस्तों, आज हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन क्या दिलों में दूरी बढ़ रही है? घर में सब साथ बैठते हैं लेकिन बातें कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। तो आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। मैं यानी आनंद और मेरे साथ कौन है जी?
1: कुमकुम, आप सभी की प्यारी दोस्त
0: जी। तो कुमकुम बताओ जरा, अभी जैसे मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि आजकल जो है ना, हर घर में हर हाथ में मोबाइल है और साथ में बैठे हैं फिर भी दिलों में दूरियां हैं, उसका रीजन मोबाइल ही है क्या?
1: हाँ जी, राइट। हमारे बीच बातचीत कम हो चुकी है। सास बैठी हैं, ससुर बैठे हैं, या मम्मी बैठी हैं, पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे से बातें करने की जगह अपने फोन में घुसे रहते हैं, जिससे लोग देखते हैं कि हाँ, एक साथ होने के बाद भी, एक कमरे में होने के बाद भी आपस में एक फोन की वजह से कितनी दूरियां हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, सही कहा कुमकुम जी ने, और ये मुझे लगता है कि हर घर की कहानी हो गया है मोबाइल। मोबाइल जब से आया है ना, बहुत सारे फायदे तो हुए हैं मोबाइल आने के, बट कहीं ना कहीं जो रिश्तों में गर्मियां थी, जो अपनेपन का एक एहसास था, वो भी कम हुआ है। और आज इसी प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे इस मोबाइल से और रिश्तों में जो एक दूरियां बनी है मोबाइल की आने की वजह से, क्या सच में ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है? क्या सही में मोबाइल आने से हमारे आपस के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहे हैं? इसी पर मैं और कुमकुम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, आप सुनते हैं

से आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक परिवार था, मम्मी खाना बना रही थी, पापा ऑफिस के काम में मोबाइल पर व्यस्त थे, बेटा गेम खेल रहा था और बेटी रील देख रही थी। दादी ने कहा, अरे कोई 5 मिनट भी मेरे पास बैठ जाओ। लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से कुछ देर बाद घर की बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी और तब सब एक दूसरे से बात करने लगे। हंसी मजाक हुआ, पुरानी बातें हुई और दादी मुस्कुराकर बोली, देखो असली नेटवर्क तो दिलों का होता है। जी हाँ श्रोताओं, तो ये कहानी नहीं है, दरअसल ये हमारे और आपके जीवन की एक सच्ची घटना है। और आज सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए मैं और कुमकुम जी आपसे इसी विषय पर बात कर रहे हैं। लगातार ये मोबाइल आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं मेरे और आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है हमारे रिश्तों पर। साथियों, आप क्या सोचते हैं इन बातों से, आप जरूर हमें बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। हमारा इंस्टा हैंडल आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से, आप मुझे ढूंढ सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल आईडी आप फॉलो करें एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के नाम से। श्रोताओं, आगे और भी बातचीत हम जारी रखेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद मैं और कुमकुम पुनः आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने सुना, सैयारा, बहुत प्यारा गाना है। और इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बता दें प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा सोच बदलो। इस प्रोग्राम में मैं और कुमकुम आपके साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल और रिश्तों की दूरियों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल और ये के आने से चीजें, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अच्छी हुई हैं, नो डाउट। टेक्नोलॉजी हमारी यूज के लिए बनी है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज वेरी अमेजिंग। बट कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्तों में गर्माहट थी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कम होती जा रही है। और उसकी वजह क्या मोबाइल है? मुझे तो ऐसा लगता है हाँ, अगर मोबाइल है तो फिर हमें अपनी सोच बिल्कुल बदलना चाहिए। वैसे कुमकुम आपका क्या मानना है, क्या सच में मोबाइल हो सकता है रिश्तों की दूरियों की वजह?
2: हाँ जी, जरूर हो सकता है, क्योंकि जब हम एक साथ बैठे होते हैं और उसके बाद भी आपस में बातें ना करके, आपस में टाइम ना दे के हम मोबाइल चलाएं, तो वो हमारी रिश्तों में दूरी ही लाता है। आनंद, आप खुद ही सोचिए जरा, क्या आपने भी कभी परिवार के साथ बैठकर मोबाइल का उपयोग किया है, मोबाइल को समय दिया है?
0: अच्छा, ओके, मतलब कुमकुम मुझसे ये पूछना चाह रही है कि क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठते हुए मोबाइल का इस्तेमाल किया है? करेक्ट। देखिए मोबाइल का इस्तेमाल तो ऑफ कोर्स करते हैं यार, क्योंकि आजकल ना 95% जो काम हो गए हैं ना, सब मोबाइल पे हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सारी चीजें डिजिटली प्लान हो गई हैं, सो ऑलमोस्ट हर एक चीज, हर बंदा मोबाइल से ही सर्वाइव कर रहा है, नो डाउट। बट सी, अगर हम परिवार के साथ हम लंच पे हैं, डिनर पे हैं या ब्रेकफास्ट पे हैं, जब हम किसी और मीटिंग के लिए बैठे हैं अपने परिवार के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परिवार के साथ हैं तो फिर हमें परिवार को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोबाइल पर रील स्क्रॉल करने का जो टाइम है ना, वो एक अलग सेट कर सकते हैं हम। बस यही सोच बदलनी है श्रोताओं हमें। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसका एक पैरामीटर सेट करो कि आपने कब मोबाइल देखना है। और मैं तो कहता हूं, अगर आप देख भी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आपके परिवार के साथ बैठना है तो अपने परिवार के साथ बैठ के अच्छी अच्छी चीजों पर आप बात कर सकते हो। बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और आजकल मोबाइल के आने से एक चीज तो है यार, जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो अपने लोग हैं ना, मतलब एक ही फैमिली में 10 लोग हैं, अपने अपने रूम में बैठे हैं, मम्मी को अगर आवाज लगानी है तो वो अब व्हाट्सएप करके बोलती हैं, बेटा नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, बेटा लंच रेडी है, नीचे आ जाओ। एक टाइम था जब हमारी माँ किचन से आवाजें मारा करती थी और हम भागे चले आते थे। मान लीजिए श्रोताओं, या कुमकुम आप ही मान लो, अगर एक दिन के लिए फोन बंद हो जाए तो आप अपने दिन को कैसे सेलिब्रेट करोगे? क्या करना चाहोगी अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, पूरा फोन बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, बिल्कुल हम बिल्कुल फ्लैश बैक में चले जाए एकदम पुराने जमाने में, तो आप क्या करोगी अगर मोबाइल नहीं होगा तो?
2: पहले कुछ टाइम के लिए तो सोचूंगी कि ये क्या हो गया, हाँ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है,
0: क्योंकि एक तो एक्चुअली ना हमारी हैबिट हो गई है,
2: हैबिट हो गई है, और ऊपर से हमारी छोटी छोटी चीजें, सुबह को उठ के सबसे पहले फोन देखना और बाकी चीजें कॉन्टेक्ट करना, आज किस काम में क्या है, सारी डिटेल्स हम फोन में रखने लगे हैं।
0: करेक्ट। और दूसरों की लाइफ भी ताका झाकी करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू,
2: कहीं
0: ना कहीं, है ना,
2: व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
0: 100%। अगर एक दिन के लिए फिर भी फोन बंद हो जाए, सो प्लीज टेल अस, आप अपने दिन को कैसे बताओगे, मतलब क्या करना चाहोगे?
2: जैसे कि पुराने दिनों में कहा जाता था कि हाँ, खेत के पास जाना चाहिए, पेड़ों की छांव में बैठना चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, तो मैं उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहूंगी।
0: बहुत बढ़िया। और अगर मुझे ये मौका मिलेगा सच में श्रोताओं, तो मैं तो अपनी नानी के घर भाग जाऊंगा अपना बैग पैक करके। मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को नानी के घर पे जाना छुट्टियों में बड़ा अच्छा लगता था। आजकल तो खैर बड़ा जमाना डिफरेंट हो गया, नानी दादी के घर तो कोई जाना ही नहीं चाहता, सबको दिल्ली, मुंबई और सारे मेट्रो सिटीज में भागना है। आई नो दैट अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिलती है, लेकिन श्रोताओं रुकिए जरा, फिर से थमिए, सोच बदलने की जरूरत है। सब कुछ वैसा के वैसा ही है, बस जरूरत है एक चीज की, वो है मोबाइल से डिस्टेंस की। और सबसे जरूरी चीज पता है क्या है दोस्तों, भावना जी, आजकल जो मैं देखता हूं लोगों में, स्पेशली मम्मी पापा में ये चीज नोटिस करता हूं मैं, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूं, आई एम श्योर दोस्तों आप भी ये चीज नोटिस करते होंगे, नहीं किया है तो जरूर करिएगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी पापा को बस में, ट्रेन में डिस्टर्ब करते हैं, तो ना मॉम डैड उन्हें चुप कराने के लिए सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो बच्चे मोबाइल पे वीडियो गेम देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फैमिली को, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर उन्हें करने दो, मतलब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि स्टिल हम फ्री हो जाएं और बच्चे जो देख रहे हैं देखने दो। तो भाई मैं तो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सामने खुद मम्मी पापा फोन चला रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि इवन कई बार हम किसी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां मम्मी का मेकअप खराब ना हो जाए, बच्चा उसे परेशान ना कर दे, मम्मी खुद फोन का इस्तेमाल करने लगती है या बच्चों को पकड़ा देती है फोन। तो गाइज फोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, ये फोन ही है जो आपकी और मेरी जिंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों का भी अंत कर रहा है ये मोबाइल। तो भैया मोबाइल फोन को चलाना है जरूरी, लेकिन डिस्टेंस के साथ मेंटेन करना भी जरूरी है। फिलहाल श्रोताओं बातचीत तो चलती रहेगी, अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, हम पुनः लौटेंगे इस प्रोग्राम में, आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए सोच बदलो प्रोग्राम आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। कुमकुम और आनंद के साथ आप बने हुए इस प्रोग्राम में, और बाकी अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें साझा कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से ऑफिशियल आईडी मिलती है, प्लीज फॉलो कीजिए, वहां पर आके आप बताइए आपको हमारे स्टेशन्स के प्रोग्राम कैसे लगते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। चलिए रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, उसके बाद फिर पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को सुन के वाकई में ही आनंद आ गया और मैं तो फ्लैश बैक में चला गया। आपको पता है कुमकुम, एक समय होता था जब लोग कहते थे अरे भाई चुप कर यार, कितना बोलेगा, और आज की डेट में लोग बोलते हैं अरे भाई कुछ तो बोल यार, चुप क्यों है, क्यों मोबाइल की दुनिया में घुसा रहता है हर टाइम, थोड़ी तो बात कर लिया कर, है ना। एक टाइम होता था जब मम्मी बोलती थी कितनी बकवास करता है, कभी तो शांति से चुप बैठ जाया कर, और आज की डेट वो है जब मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ी बातचीत तो कर लेकर, क्या 24 घंटे फोन में ही लगा रहता है। कुछ कहना चाह रही थी हमारी दोस्त कुमकुम आपसे, और साथियों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो कुमकुम आप कुछ कह रही थी, कुछ बताने की बात कर रही थी।
1: मैं कुछ अपने श्रोताओं को प्रेरणादायक संदेश देना चाहूंगी।
0: प्रेरणादायक संदेश तो मैं भी लेना चाहूंगा।
1: या ऑफकोर्स, जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल हमारे लिए आजकल कितना जरूरी है, हर वर्क में यूज होता है, तो मोबाइल हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए, बच्चों से खुलकर करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा घर में टाइम, एक बार तो टाइम बनाना चाहिए पूरे दिन में जो लिखा हो कि हाँ नो टाइम मोबाइल। याद रखिए रील्स कुछ सेकंड की खुशियां देती हैं, लेकिन आपके अपने लोग पूरी जिंदगी का सहारा बनते हैं।
0: तो क्या क्या बात है। हाँ तो आगे बोलो,
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आगे।
0: देखो कुमकुम, आपने बहुत अच्छी, बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल वाली बातें रख दी हैं, थैंक यू सो मच। और सच में ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे लगता है कि रील सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी तो देती है, लेकिन एक्चुअली खुशी जो हमें मिलती है वो अपनी फैमिली के साथ बात करके, हमें अपने रिलेटिव के साथ बात करके मिलती है। दोस्तों वो कहते हैं ना, आजकल नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन कोई अगर अपना बुलाए तो बस सिंपल सी आवाज निकलती है अभी बिजी हूं बाद में आऊंगा, ये वाली बात तो 100% आपके साथ भी होती होगी। मोबाइल ने भाई सबका टाइम चुरा लिया है कुमकुम, पापा फोन पर, रील्स पर, बच्चे गेम्स में, एक ही घर में रहते हुए भी सब अलग अलग दुनिया में व्यस्त है, है ना। कहीं ना कहीं ये जो व्यस्तता है बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोताओं सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें मोबाइल का भी इस्तेमाल करना है और हमें अपने परिवार को भी पूरा वैल्यूएबल टाइम देना है। उसके लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। सोच बदलने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जब आप अपने घर पर हो तो अपने फोन को थोड़ा साइड में रखें। अगर आपको पता है कि आप बेवजह का समय अपने फोन पर दे रहे हैं तो वही टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने परिवार से बातचीत करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में ना जो रिश्तों में गर्माहट है वो बहुत जरूरी है। और रिश्ते कहीं ना कहीं आजकल इसलिए भी खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बातें तो फोन पे ही हो जाती हैं, थोड़ी सी देर में बात हुई उसके बाद तुरंत डिलीट हो गई, अभी पता चला अभी नाराजगी थी अभी ब्लॉक हो गई चीजें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को ना एकदम से इन्होंने खेल बना के रख दिया है। स्पेशली आजकल तो ये व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सबसे मनहूस मेरे को लगता है स्नैपचैट। भाई सच बता रहा हूँ, इतने तगड़े तगड़े फिल्टर आते हैं ना, समझ में नहीं आता लौंडा लौंडिया कब बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सब चीजें जो है ना मत करो भाई, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज यार एक समय सीमा बना लो हर चीज की। सबसे जरूरी चीज है अपने परिवार को स्पेशल क्वालिटी टाइम देना, क्यों कुमकुम सही कहा मैंने। हाँ तो बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों अब हम दोनों आपसे लेंगे जाने की इजाजत, और इतना ही कहना चाहेंगे जाते जाते, सोच बदलोगे तो इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो बस आप ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, अपना शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये वही शहर है जहाँ की मूंग की दाल बड़ी फेमस है, ये वही शहर है जहाँ का पीतल बहुत पॉपुलर है, और ये वही मुरादाबाद है जहाँ का अपना सामुदायिक रेडियो आज आपके साथ है। तो जुड़े रहिए दिल से दिल तक, और आज रात का खाना अगर परिवार के साथ खा रहे हो तो ध्यान रखिए मोबाइल को थोड़ा सा जो है स्पेस दे दीजिएगा। बाकी मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो अभी चलें फिर कुमकुम।
1: जी हाँ चलते हैं।
0: बिल्कुल, तो कुमकुम भी अपना थैला उठाकर जाने को तैयार है और मैं भी अपना बैग लेकर बाहर निकलने को तैयार हूँ।

0: तो सोच बदलो, क्योंकि अपने लोग ऑनलाइन नहीं आसपास होने चाहिए। याद रखिए, कोई भी चीज अगर होती है नेगेटिव वाली तो ऑनलाइन की दुनिया के लोग नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके करीबी लोग आएंगे। तो इसलिए अपने करीबी लोगों को स्पेशल समय दीजिए। अभी के लिए नमस्कार।
1: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
2: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
3: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
2: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
3: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
0: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
1: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
0: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

गुमा सुबह पे जिस तरह शाम का वो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।